0: पानी का हौज समझा और कपड़ा उठाकर अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, यह ऐसा महल है जिसके नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। वो बोल उठी कि परवरदिगार, मैं अपने आप पर जुल्म करती रही थी और अब मैं सुलेमान के हाथ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ।
1: वलकद औस

0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं।

आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आसमान से नीचे जमीन के ऊपर, घर में घर से बाहर, दुनिया के जिस भी कोने में जहाँ कहीं मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सबको कहेंगे तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम जनाब। दिस इज रेडियो पाकिस्तान FM 101 ट्यून इन वन अबव एंड मी योर आरजे अफसर चौधरी। स्टूडियोज की घड़ी के मुताबिक वक्त हुआ जाता है 7:12 और दिन है आज बुध का, तारीख है 16 सितंबर 2026। जनाब वक्त का जया किए बगैर प्रोग्राम का स्टार्ट लेंगे। Have a go for this wonderful number. We'll be right back right after this track.

ओके जनाब, खुश आमदीद कहते हैं वापस आपका प्रोग्राम में 0515100 and 101 इज द डायलिंग नंबर। कॉल कर सकते हैं मुझे, इसके अलावा एसएमएस कर सकते हैं 4471 पे। तरीका बहुत ही आसान है, गो टू योर राइट मैसेज ऑप्शन, टाइप 101 स्पेस योर नेम योर प्लेस नेम योर मैसेज एंड सेंड दैट 4471। आप जहां कहीं भी हैं, घर में हैं, ऑफिस हैं, क्या ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या आप ट्रैफिक में फंस चुके हैं, मॉर्निंग ड्राइव चल रही है, इंजॉय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बिस्तर में हैं, चाय पी रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखिए, आज का दिन आपका दिन है। हर सुबह सिर्फ आंखें खोलने से नाम नहीं होता, काम नहीं होता, हर सुबह एक नया मौका मिलता है, एक नया मौका लाती है कुछ बेहतर करने का, कुछ नया सीखने का और कल से एक कदम आगे बढ़ने का। पता, कभी कभी हम जिंदगी में सोचते हैं कि चीजें हमारे प्लान के मुताबिक क्यों नहीं हो रही हैं, लेकिन याद रखिए, हर डिले, हर चैलेंज और हर डिफिकल्ट मॉर्निंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हार गए हैं। इट सिंपली मींस योर जर्नी इज स्टिल गोइंग ऑन। तो आज सुबह अपने आप को आपने एक छोटा सा वादा करना है और मैसेज देना है कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर आपने फोकस नहीं करना, जो मुश्किल है उसका सामना करेंगे और जो कल नहीं हो सका उसको आज करने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस रुकना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो तो मैं भूल ही गई बताना, अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से कंपेयर करना बंद कर दें। हर किसी का वक्त अलग होता है, हर किसी का सफर अलग होता है, हर किसी की कहानी अलहदा होती है और हर किसी की मंजिल अलहदा होती है। आपका भी अपना वक्त आएगा अपनी मेहनत से, सो अपनी मेहनत को जारी रखिए, उम्मीद जिंदा रखिए, खुद पर यकीन रखिए, खुदा पर यकीन रखिए, तो एक दिन आपकी जो गाड़ी है वो भी मंजिल तक पहुंच जाएगी। तो एक गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए, इतना नहीं, थोड़ा सा और मुस्कुराइए और कहिए आज का दिन बेहतर होगा और मैं इसे बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा और करूंगी और हिस्सा डालेंगे हम कि आज का दिन हमारा बेहतरीन गुजरे। तो मेरे पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ एक नई और खूबसूरत सुबह के लिए। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एफएम 101, ट्यून इन वन अबव एंड मी योर आरजे अफजा चौधरी। आपकी मॉर्निंग ड्राइव में, आपकी चाय के साथ, आपके काम के दरमियान, सो स्टे विद अस, कीप स्माइलिंग एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। गाना सुनना है या नहीं सुनना, अभी क्या इरादे हैं आप लोगों के,

क्या बात है जनाब, कैन यू इमेजिन मुझे गरम गरम चाय मिल गई। हमारे यहाँ बहुत सीनियर कोऑर्डिनेटर अंकल हैं, तो मेरे लिए चाय लाए हैं।

अल्लाह का घर है, जिस दिल में मोहब्बत है, दिल अल्लाह का घर है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दिल की हिफाजत भी करें और बाकियों के दिल की हिफाजत भी करें। कभी कभी हम कहते हैं कि बस एक दिन और चाहिए हमें हमारी ज़िंदगी में, जिसको हम इंजॉय कर लें और उसके बाद हम कुछ करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम सोचेंगे कि ये वाला काम जो हमने अरसे से एक पेंडिंग रखा हुआ है, इसको हम कल कर लेंगे। हमेशा उस काम को हम कल से कल पे टालते चलते जाते हैं, लेकिन वो एक दिन जो हमने स्टार्ट करना होता है वो कभी नहीं आता है। अगर कोई ड्रीम है, कोई गोल है, कोई डिसीजन है जो कि आपको एक अरसे से पोस्टपोन आप किए जा रहे हो, उसको किए जा रहे हो, लेकिन आपको तंग कर रहा है वो बार बार, तो शायद आज वो दिन है जो आप यकीनन इस्तेमाल करेंगे वो ख्वाब शुरू करने के लिए और अपने दिन को बदल लेंगे। छोटा सा स्टेप सही, लेकिन एक छोटा सा स्टेप लेके इनिशिएट जरूर करें उस चीज़ को, ताकि कल आप उसको कल पे मत छोड़ें। क्योंकि सक्सेस जब भी आती है वो किसी बड़े जंप से नहीं आती है, रोज छोटे छोटे छोटे छोटे स्टेप्स लेने से आती है। तो आज सिर्फ आपने एक काम करना है, अपने गोल की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाना है आज से, अभी से। कॉल कर सकते हैं आप मुझे 0511111001 पे, और मैसेज कर सकते हैं 4471 पे। तरीका बहुत ही आसान है, अपने राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे 101, स्पेस देंगे आपका नाम, आपके शहर का नाम, आपका मोहब्बत भरा पैगाम, जो आप किसी के नाम भी भेजना चाहते हैं वो आप लिख भेजिए 101 पे, या वो बातें जो आपने आज तक किसी से नहीं की हैं लेकिन वो आपको तंग कर रही हैं वो बातें भी आप लिख भेजिए 101 पे। आई एम हियर, मैं वो बातें सुनूंगी आपकी, मैं आपको जवाब दूंगी। रमीज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं हंसी आपकी कोई चुरा ना पाए, कभी कोई आपको रुला ना पाए, खुशियों के ऐसे दीप जलाए जिंदगी कि कोई तूफान भी उसको बुझा ना पाए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत पैगाम।

वेल जनाब, ये वाला ट्रैक हम लगाएंगे लेकिन 8 बजे के उस पर जब आपके कॉल्स होंगी और हम मस्ती कर रहे होंगे. अभी हमें हेल्थ सेगमेंट की जाने भरना है तो यकीनन BGM की जाने पर हमें मुड़ना होगा.

भाई जनाब, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि डायबिटिक लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। उसके अलावा बताया था चाय गरम गरम हमें क्यों नहीं पीनी चाहिए। अगर किसी ने ये दोबारा जानना है तो वो दोबारा से पूछ सकते हैं मेरे से। इसके अलावा हमने कुछ जर्नल से बातें की थी सेहत के हवाले से। आज हम बात करेंगे जनाब वजन कम करने वाली अदवियात जो कि खुदकुशी के ख्यालात का उनसे ताल्लुक है या नहीं। एक नई तहकीक ने यह दावा किया है कि वजन कम करने वाली जितनी भी अदवियात हैं वो डिप्रेशन, खुदकुशी के ख्यालात के बढ़ते हुए खतरे से ताल्लुक रखती हैं। जनूबी कोरिया में ये रिसर्च हुई है। साइंसदानों ने 27,000 बालिग अफराद उनके जहनी सेहत का पूरे तरीके से जायजा लिया और उसके बाद उन्होंने 846 अफराद ऐसे थे उस सारी की सारी तहकीक में जिन पर उन्होंने देखा कि वजन कम करने वाली दवाइयों ने असर किया उनकी दिमागी सेहत पर। तहकीक में सामने आया जनाब ये कि उन अदवियात ने उनकी दिमागी सेहत को क्या किया, मुतासिर किया, लेकिन किस तरीके से। हुआ यूं कि 27,000 की वो जो रिसर्च हुई, 27,000 अफराद उसमें शामिल थे, उसमें से 846 अफराद ऐसे थे जिनमें डिप्रेशन के इम्कानात 93% ज़्यादा हो गए थे। और जो रिपोर्ट्स आई उनमें देखा यह गया कि उनमें खुदकुशी करने वाले जितने भी अफराद थे उनमें 168% लोग जो थे वो ज़्यादा थे। उसके बाद जनाब साइंसदानों ने ये आपको तलकीन की है कि जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे भी हदायत की हैं, आपसे भी हदायत की हैं कि जब भी आपने ऐसी कोई दवाई इस्तेमाल करनी है प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ करनी है, क्योंकि ये अद्वियात बनाई जाती हैं मरीजों के लिए जो कि बिस्तर से हिल नहीं सकते। ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज़ हो चुकी हैं या फिर ऐसे मरीज जिनके हार्मोन्स उनको इजाज़त नहीं देते वज़न कम हो उनका, ये अद्वियात उन लोगों के लिए बनी है, ना कि उन आलसी लोगों के लिए जो कि हिलते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारा वज़न कम नहीं होता और खाना जो है वो उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल नहीं करना है अपनी ज़ुबान पर, अपने मुँह पर। तो सोचें आज आप जिन पैसों का ये खाना मंगा के खा रहे हो, इतना खराब खराब वाला खाना, उसके बाद यही चीज आप अपनी दवाइयों के लिए यही पैसे स्पेंड करेंगे। आज अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो, आप कहते हो कि हम बहुत बिजी हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हो नहीं सकती हैं, हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते। इमेजिन करें कि वही वक्त जो आज आप पैसा कमाने में लगा रहे हो या उन चीज़ों में लगा रहे हो जहां आप बिजी हो, कल अगर आप बीमार हो गए तो क्या आप ये सारे काम कर पाएंगे और वही पैसा दुगना तिगना होकर आपकी उन बीमारियों पर लगेगा या नहीं लगेगा। सो एक छोटी सी सोच है, इसको ज़रा सी तरजीह दीजिए और सोचिए कि आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटे की, ज़्यादा वक्त नहीं लगाएं, सिर्फ 1 घंटे डेली का लगा लें, 10,000 स्टेप्स डेली चल लें, बहुत फर्क आता है। डाइट को थोड़ा सा अच्छा कर लें, ऑयल कम कर दें, प्रोटीन ज्यादा कर दें, अपने कार्ब्स को कंट्रोल कर लें और देखिए आपकी बॉडी को नीड किस चीज की है। हर बॉडी को डिफरेंट नीड होती है, हर बॉडी को डिफरेंट चीज चाहिए होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी डाइट को प्लान कीजिए और फिर देखिए कि क्या चमत्कार होता है। वेल जनाब, सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि तंबाकू नोशी तरक करने की शरह में जमूद है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में कैंसर की सबसे बड़ी वजह के तौर पर सिगरेट नोशी और मुल्क में हर साल तंबाकू को करार दे दिया जाता है। तकरीबन 1,64,000 अमवात जो हैं वो सामने आई हैं सिर्फ और सिर्फ तंबाकू नोशी की वजह से। पाकिस्तान में सेहत आमा पर बोझ कम करने के लिए मौसर जाब्ताकारी और कलीदी हैसियत रखी जाती है और कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तंबाकू नोशी करने वाले जितने भी अफराद हैं वो सख्त किस्म के कोई ढीठ अफराद हैं, उन पे कोई असर नहीं होता है चाहे कैसी भी खबर सामने क्यों ना आ जाए। वो कहते हैं नहीं, बस सिगरेट पीनी है तो पीनी है, अब क्या करें, हम हमसे तो नहीं होता है कंट्रोल। बात फिर वहीं आ जाती है, ना करो कंट्रोल, फिर जब कल आप पे अल्लाह पाक ने कंट्रोल किया या आपकी सेहत ने कंट्रोल किया फिर आपको समझ आएगी। वेल जनाब, 2024 के मुताबिक गुज़िश्ता 12 माह के दौरान सिर्फ और सिर्फ 24.1% तंबाकू नोशी वाले जो अफराद थे उन्होंने सिगरेट नोशी को तरक करने की कोशिश की है, जबकि 2014 और उसके आगे की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो वो 24.7% थी। यानी 24.7 और 24.1 कोई ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता।
पाकिस्तान की आबादी का इस वक्त 14 मिलियन 14 मिलियन बालिग अफराद ऐसे हैं जिनको हम कहेंगे कि वो तंबाकू नोशी का शिकार हो चुके हैं। तो आपके घर में इर्द गिर्द अगर कोई भी सिगरेट पीता है तो उस पर खास ध्यान दें। आपके घर की जो भी औरतें हैं, पहले तो मैं उन औरतों को कहूंगी दाढ़ियां हो जाओ, जो सिगरेट पीते हैं ना रोटी मत दो इनको, इनको बोलो सिगरेट से पेट भर लें। और जो औरतें सिगरेट पीती हैं रख के छितर पड़ने चाहिए इनके। तो जनाब जितनी भी खवातीन मस्नूई पलकों का इस्तेमाल करती हैं, माहिरीन ने उनके लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। आई लैश एक्सटेंशंस आपको माइट्स की एक नाखुशगवार अफजाइश का शिकार बना सकती है, जो पलकों की जड़ों में दाखिल होकर आपकी बिनाई को मुतासर करती हैं। कोशिश कीजिए कि आप जो मस्नूई एक्सटेंशंस लगाते हैं आंखों पर उनको आप अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपकी आंखें जो है वो खराब हो सकती हैं। 7:40 हो गए जनाब, मैसेजेस कर रहे हैं आप 4471 पे, कॉल कर रहे हैं आप 0511111001 पे। 8 बजे के उस पर आपकी कॉल्स ले ली जाएंगी। जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। एक बात हमने हमेशा याद रखनी है अपनी जिंदगी में कि हम किसी दूसरे की रेस नहीं भाग रहे, आप किसी और की रेस नहीं भाग रहे। किसी की लाइफ आपसे आगे नजर आ सकती है, किसी का करियर आपसे बेहतर नजर आ सकता है, किसी की सक्सेस आपसे बेहतर नजर आ सकती है और किसी का लाइफस्टाइल आपसे बेहतर नजर आ सकता है, लेकिन आप नहीं जानते कि उस सफर के पीछे कितनी मेहनत है। इसलिए अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर मत करिए, अपना फोकस सिंपल होना चाहिए। फोकस क्या होना चाहिए? आपका जो कल गुजरा हुआ है उससे आपका आज बेहतर होना चाहिए, और जो आप आज गुजारेंगे उससे आपका कल का दिन बेहतर होना चाहिए। क्या आपने कल गुजरे हुए कल में कुछ सीखा? अगर नहीं सीखा तो आज सीखिए, कुछ इंप्रूव करिए। अगर आज भी नहीं सीख पाए तो कल सीख लीजिए, कुछ तो इंप्रूवमेंट लाइए। तो अपनी स्पीड पर चलिए, बस रुकना नहीं है। इस बात पर ध्यान देना है कि रुकना नहीं है, और एक अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले बंदे ने कितनी मेहनत कर रखी है। मुश्किल वक्त सब पर आते हैं। अगर आज की सुबह किसी वजह से हैवी लग रही है ना आपको, इमेजिन करें कि कल की सुबह अच्छी थी, नहीं थी वो भी हैवी थी, कोई बात नहीं, उससे पिछली सुबह अच्छी होगी। कभी तो ज़िंदगी में सुकून आया होगा ना, आगे भी आ जाएगा। अगर आप किसी टेंशन से गुजर रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं, या किसी मुश्किल वक्त का सामना है आपको, तो एक बात याद रखें, सिर्फ इतनी सी, कि मुश्किल वक्त परमानेंट नहीं होता। हर सिचुएशन बदलती है, हर रात के बाद सुबह आती है। हो सकता है आज आपको अपनी डेस्टिनेशन नज़र ना आ रही हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका सफ़र ख़त्म हो गया है। बस आज का दिन संभालिए, एक दिन एक स्टेप एक एफर्ट, और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रास्ता खुद नज़र आने लगेगा। यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक, सो कीप गोइंग। एंड हियर वी गो फॉर दिस वंडरफुल नंबर इन द वॉइस ऑफ अ लेजेंड, नन अदर देन वन एंड ओनली मुस्तफा ज़ाहिर. And the song is Toh Phir Aao. Have you come for this wonderful number?

खुशामदीद कहते हैं वापस जनाब आपको 0511111001 इज द डायलिंग नंबर। रमीश साहब ने हमें मैसेज किया और मैसेज बड़े खतरनाक है, इसमें मैं हंसू या रोऊं मुझे समझ नहीं आ रही है। रमीश साहब कहते हैं आरजे मेरा गोल जो है जिंदगी का वो ये है कि आपके शो में कॉल करनी है। लास्ट टाइम जब मैं पूरा टाइम कॉल करता रहा हूं, कोशिश करता रहा हूं कि कॉल मिल जाए आपके प्रोग्राम में, उसके बाद आप 9 महीने तक आपने शो ही नहीं किया। खैर बुरा हुआ आपके साथ, मैं इस पर अफसोस भी नहीं कर सकती और खुश भी नहीं हो सकती, लेकिन ये अगर आपकी ज़िंदगी का गोल ये है ना तो मैं आपको क्या बोलूँ, फिर तो आप रुल गए। जनाब साइंस टेक के मैदान में आज कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें और ऐसी खास खबरें नहीं है जो आपके साथ शेयर की जाए, इसलिए हम आज फैक्ट चेक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा था बहुत ज़्यादा कि इस्लामाबाद ने डिफरेंट जो हमारे प्रोविंसेस हैं वहाँ से पुलिस के अहलकार तलब किए हैं, तो वो जो नोटिफिकेशन है वो झूठा है, आपको बताते चले। वो नोटिफिकेशन फेक है, तो जिस जिसके पास भी वो सर्कुलेट करके पहुंचा है तो उसको आप फेक कंसिडर कीजिए।

Well, जनाब अमरीकी वजीर सेहत रॉबर्ट एफ ने ये दावा किया है कि अमेरिका में इस वक्त दुनिया की तारीख के अब इस चीज़ के पीछे हकीकत क्या है, तारीखी अदाद व शुमार के मुताबिक उनके जो वजीर सेहत हैं उन्होंने ये दावा किया है और बताया है कि अमरीकी बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा बीमार बच्चे हैं। इंसानी तारीख अगर उठा के देख ली जाए और जो जो उनकी अमवात के शिकार, मतलब जो जो लोग अमवात जिन्होंने पाई उनके पीछे जो भी वजूहत थी उनका अगर जायज़ा ले लिया जाए तो उनका कहना ये है कि इंटरनली अमेरिका के जो लोग हैं या बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बीमार हैं, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी। इसके अलावा जनाब 6 सितंबर को ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर चांद की तस्वीर शेयर करते हुए कहा था कि चांद हमारा है। उन्होंने शेयर किया था मून इज आर्स, तो इससे साबित ये होता है कि ट्रंप का कहना है कि चांद जो है वो अमेरिका का है। अब इसके पीछे असलियत क्या है, दावा तो कर दिया है। फैक्ट चेक जनाब ये है, फैक्ट चेकिंग के मुताबिक ट्रंप की जो पोस्ट है वो हकीकी है और उसके अल्फाज बजाहर चांद पर अमेरिका की मलकियत का तासुर देते हैं। अमेरिका की जानिब से चांद पर बाजाबता कानूनी दावा करार देना दुरुस्त नहीं है, लेकिन लेकिन लेकिन पोस्ट के साथ कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या ऐसा कोई भी कानूनी ऐलान जारी नहीं किया गया जिससे चांद अमेरिका की मलकियत बन जाए, है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो मिल्कियत बना कैसे, फिर उन्होंने ये कहा।

मैंने ऐसा कहा इसलिए क्योंकि उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चांद के इर्द गिर्द घूमते हैं और उनको लगता है कि वो सारे प्रोजेक्ट्स हम कंप्लीट कर लेंगे और उस कॉन्फिडेंस में उन्होंने वो पोस्ट कर दी जो कि वायरल भी हो गई. तो उसको चांद को अमेरिका की मिल्कियत कहना गलत है, लेकिन जनाब उनके जो तजुर्बात हैं या जो उनके प्लान्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. खबरें मेरे पास और बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को एक गाने की तरफ ले जाता है, उसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक होगी. न्यूज़ ब्रेक के उस पार हम वापस आएंगे, फिर आपके साथ हल्ला गुल्ला मस्ती और बातें. आज के प्रोग्राम की कुछ ज़्यादा मेरे पास चटपटी चीज़ें नहीं थी, इसलिए उस एक घंटे को मैंने कवर तो कर लिया है, लेकिन इससे अगला वाला जो एक घंटा है वो अच्छा गुजरने वाला है क्योंकि उसमें आप लोग मौजूद होंगे, सिर्फ मैं मौजूद नहीं होंगी. आज के दिन की प्रैक्टिस खुद से बात करना, जो कि मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में ही बता दिया कि आपने आज खुद से बात करनी है, पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो अपना बनाना है, प्रिपेयर करना है. आज सुबह एक मिनट अपने लिए निकालिए, फोन साइड पर रख दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए आप अपनी लाइफ में क्या बेहतर कर सकते हैं, किसी और के लिए नहीं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, अपने लिए. शायद आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, शायद अपना करियर जो है उसको बेहतर बनाना चाहिए, शायद अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देना चाहिए. कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसको आप अपनी जात के लिए बेहतर बना सकते हैं, वो चीज़ कौन सी है वो आपने ढूंढनी है और मुझे बताना है 0511111011 पे, और मैसेज करना है 4471 पे, और आपने लिखना है 101 स्पेस योर नेम, योर प्लेस नेम और आपकी वो एक चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर बना सकते हैं. Here we go for this wonderful mashup. We call it Bully Rave Mashup.

जमीर साहब कह रहे हैं, रमीश साहब कह रहे हैं, लिहाजा ट्रम्प को चाहिए कि वो चांद पर जाके रहें, जमीन पे उनका कोई काम नहीं है। ऐसी बातें नहीं करते होते बड़े बड़े शहरों में। फीलिंग कभी कभी मुझे भी ऐसी ही आती है जब रोज रोज वो कुछ नया कर देते हैं और रोज रोज हमारा सिलेबस बढ़ जाता है पढ़ने के लिए, वाइब ऐसी ही आती है।

आज आपको एक ग्लास पानी की कीमत समझाएंगे। एक नौजवान रोजाना ऑफिस जाते हुए एक बुजुर्ग को सड़क किनारे बैठा देखता था। एक दिन शदीद गर्मी थी, नौजवान ने गाड़ी रोकी, दुकान से पानी की बोतल खरीदी और बुजुर्ग को दे दी। बुजुर्ग ने पानी पिया और मुस्कुराकर सिर्फ इतना कह दिया कि बेटा, आज तुमने मुझे पानी नहीं इंसानियत दी है। नौजवान आगे बढ़ गया, लेकिन ये जुमला उसके दिल में बैठ गया। कभी कभी हम समझते हैं कि मौशरे को बदलने के लिए बहुत बड़े बड़े इकदाम करने पड़ते हैं, बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। हकीकत ये है कि एक छोटी सी नेकी भी किसी की जिंदगी का मुश्किल लम्हा आसान कर सकती है, क्योंकि नेकी कभी बड़ी नहीं होती है, नीयत बड़ी होनी चाहिए। किसी की जिंदगी में, किसी दफ्तर में, लंबी कतार, उसकी क्या वैल्यू होती है। एक शख्स बैंक में लंबी कतार देखकर सीधा आगे जाने लगा। पीछे खड़े एक बुजुर्ग ने उसे रोका और कहा, बेटा आप जल्दी में हैं तो हम सब भी जल्दी में हैं। वो शख्स कुछ लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर वापस कतार में आकर खड़ा हो गया। उसने सोचा, अगर मैं अपने वक्त को अहम समझता हूँ तो दूसरों का वक्त भी उतना ही अहम है। मुआशरा सिर्फ कवानीन से नहीं, एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखने से बेहतर होता है। जो एहतराम हम अपने लिए चाहते हैं, वो कभी दूसरों के लिए कंसिडर क्यों नहीं करते। ये छोटा सा सवाल है जो हमें सोचना चाहिए। अमूमन हम हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, हम कोई सिफारिश लगा लेते हैं, हम लाइन तोड़ के आगे चले जाते हैं, हमारी कोशिश होती है हमें पर्ची पहले मिल जाए, हमारा बिल पहले जमा हो जाए। देखो यार, औरतों की कतार छोटी है, मर्दों की कतार लंबी है, औरतों की कतार में जो खड़े हो जाते हैं। चाचा आप बुजुर्ग शहरी है ना, बुजुर्ग शहरी की कतार में कोई नहीं होता, आप प्लीज मुझे पर्ची ले दो। एक लड़के को सड़क पर एक बटवा मिला, यानी पर्स मिला, उसमें काफी पैसे और एक शनाख्ती कार्ड था। उसके दोस्त ने कहा, रख लो, किसी को क्या पता चलेगा। लड़के ने जवाब दिया, शायद किसी को पता ना चले, लेकिन मुझे तो पता होगा कि मैंने क्या किया है। वो शनाख्ती कार्ड की मदद से मालिक तक पहुंचा और उसको उसका पर्स वापस कर दिया। मालिक ने शुक्रिया अदा किया तो लड़के ने कहा, मुझे आपका पर्स वापस नहीं करना था, मुझे अपना किरदार बचाना था। असल ईमानदारी ये नहीं होती, असल ईमानदारी वो है जो उस वक्त भी कायम रहे जब कोई देखने वाला ना हो।

ख्वाब टूटे, वादे झूठे, दिल ये टूटे ना, दो भाई मामूली सी बात पर कई दिन एक दूसरे से नाराज रहे। एक दिन छोटे भाई ने फोन किया और कहा, भाई मुझे नहीं मालूम गलती किसकी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी अना हमारे रिश्ते से बड़ी हो जाए। दूसरी तरफ कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर जवाब आया, मुझे भी यही बात कहनी थी। और दोनों हंस पड़े। बाज़ोकात रिश्ते बचाने के लिए ये साबित करना जरूरी नहीं होता कि गलत कौन था, जरूरी ये होता है कि रिश्ता कौन बचाएगा। माफी कभी कमजोर नहीं करती, रिश्तों की हिफाजत करना हम सबका फर्ज है। जिस दिन हम इन रिश्तों को, इस इखलाक को और हमारे दरमियान के भाईचारे को फर्ज समझ के जीना शुरू कर देंगे ना, उस दिन बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी।

अब ये काम हम और बहुत ज्यादा करते हैं, अफवाह फैलाना। एक शख्स ने अपने दोस्त के बारे में एक बात सुनी और फौरन दूसरों को बताना शुरू कर दिया। एक समझदार बुजुर्ग ने उसे रोक कर कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये बात जो तुम कर रहे हो वो सच है? उसने कहा, नहीं नहीं। बुजुर्ग ने पूछा कि ये बात किसी के फायदे के लिए है जो तुम सबके साथ शेयर कर रहे हो? उसने कहा, शायद नहीं। बुजुर्ग ने कहा, फिर ऐसी बात आगे पहुंचाने की जरूरत क्या है तुम्हें? वो शख्स थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। एक छोटी सी अफवाह किसी की इज्जत, रिश्ता या सुकून बर्बाद कर सकती है, तो हमें ये सोचना चाहिए एक पल के लिए खड़े होकर कि जो बात हमारे तक पहुंची है वो ठीक है, दुरुस्त है, गलत है, क्या मसला है। और फिर अगर कोई मसला है भी, तो फिर भी अगर हम अपनी जुबान को थोड़ा सा बंद रख लें, कौन सी चीज ज्यादा खूबसूरत है? एक शख्स हमेशा कहता था, मैं मुआशरे को बदलना चाहता हूँ। एक दिन उसके बेटे ने उससे पूछा, आपने आगाज कहाँ से किया? वो खामोश हो गया। फिर उसने फैसला किया कि वो दूसरों को बदलने से पहले अपने रवैये बदलेगा। वो कितार की पाबंदी करने लगा, कचरा नहीं फेंकता था, दूसरों की बात सुनता था, गलती पर माजरत कर लेता था और जरूरतमंद की मदद करता था। एक अरसे के बाद उसके बेटे ने कहा, अबू आपने मुआशरा तो नहीं बदला, लेकिन आपकी वजह से हमारा घर जरूर बदल गया। और शायद मुआशरा बदलने का आगाज यही है। दुनिया को बदलने से पहले अपने हिस्से का छोटा सा चिराग जलाएं। उस चिराग की रोशनी जहां तक जाएगी वहां एक नया दिया जल जाएगा, उस नए दिए से अगला चिराग चलेगा। जोक दर जोक सारी चीजें बेहतर होती ही चली जाएंगी।

कल जनाब एक सॉन्ग की फरमाइश आई है. कोई कहते हैं कि 2020 में एक गाना सुनवाया करती थी आप. दो हजार बीस में गाना सुनते थे आप ये मेरे प्रोग्राम में, और अभी तक आपको याद है. बिन तेरे सॉन्ग का टाइटल है, और इन्होंने लिख के भेजा है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियान है. इनको लिरिक्स

0: होगी जना, बहुत सारे कॉलर्स की कॉल। अस्सलाम वालेकुम मरवान।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से?
1: इस्लामाबाद।
0: खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में।
1: लीजिए रहिए।
0: क्या पैगाम लाए?
1: पैगाम तो कुछ भी नहीं है
0: जी। जी
1: बात यह है कि ना नाराज होना है ना उसके शो से निकालना है, ठीक है?
0: नहीं निकालूंगी।
1: हाँ वो ये जो चैनल है ना आपका, यही नहीं बाकी सारे एफएम चैनल मैंने खरीद लिए हैं, आप लोग सारे मेरे मुलाजिम हैं। अब आप और समय सुनने वाले सब मुझे पागल के अलावा क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं ना, इसलिए कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कोई नहीं पूछ रहा। चल हो रहा है।
0: क्या हुआ? क्या हुआ?
1: जीती रहिए।
0: क्या हुआ?
1: नहीं नहीं ट्रम्प कहता चांद दे रहा है।
0: अच्छा समझ गई। अस्सलाम वालेकुम अनुमान।
2: अस्सलाम वालेकुम
0: जी।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
0: जिंदाबाद।
2: कहते हैं कि शेर दिल बाप की शेर बेटी पहाड़ों को सर करते हुए बर्फ से खेलते हुए 101 के स्टूडियो आ पहुंची और एक मजबूत आदमी से चाय का एक किलो का कप पीकर। अस्सलाम वालेकुम
0: जी। जी मैं सुन रही हूँ आपको, सुन रही हूँ।
2: मैं बड़े अंदाज से कर रहा था तो आपने जब ये रिसीवर रखा तो मेरा अंदाज 101 के स्टूडियो आ पहुंची और एक मजबूत आदमी से चाय का एक किलो का कप पीकर। अस्सलाम वालेकुम
0: जी। जी मैं सुन रही हूँ आपको, सुन रही हूँ।

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने तिजारत को मुतनव्वे बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शोबों और सनतों को बरामदी सरगर्मियों में शामिल करने की हिदायत की है। नायब वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म की फ्यूल रिलीफ स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान और काबिले रसाई रखने की जरूरत पर जोर दिया है। मारूफ उर्दू अफसाना निगार अबुल फजल सदीकी की 39वीं बरसी आज मनाई जा रही है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

वेल जनाब, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम अजीज सामीन, क्या हाल चाल हैं जनाब? ठीक ठाक खुशबाश, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत ही मज़े में होंगे, बखैर वाफियत होंगे और बिल्कुल हमारे साथ साथ होंगे। वेल जनाब, हमें कहते हैं एफएम 101 चैनल वीडियो पाकिस्तान लाहौर, एंड यस दिस इज योर होस्ट, योर दोस्त, योर वेरी ओन आरजे, योर वेरी ओन मुंडा इज इन द हाउस ऑफ एफएम 101 लाहौर। फिर से आप तमाम सुनने वालों को, तमाम चाहने, तमाम सराहने वालों को इस हस्ती मुस्कुराती चेहचेहाती सुबह में खुश आमदीद कहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम सुनने वालों ने आज के दिन का आगाज भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार अंदाज के साथ किया होगा, और इस दुआ के साथ कि आपको आपका आज का सारे का सारा दिन भी बहुत ही अच्छा, खुशियों भरा, बखैर वाफियत वाला दिन देखना और गुजारना नसीब हो। जनाब शो लाइव है सिटी वाइब्स, और मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं। जनाब आपको क्या कहते हैं ये बताने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एफ एम 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज। 9:21 डूबे चाहते हैं पाकिस्तान का मायारी वक्त, और मेरा आपके साथ रहने का भी। तारीख की बात कर लें तो आज जनाब ताखिर तो हो गई है, तारीख की बात कर लेते हैं। आज जनाब सितंबर की 16 है, जबकि 21वीं सदी का 26वां साल 2026 का भी। तारीख की बात कर लें तो आज जनाब ताखिर तो हो गई है, तारीख की बात कर लेते हैं। आज जनाब सितंबर की 16 है, जबकि 21वीं सदी

है उनको बुध का दिन ना सख्त नापसंद है। मेरे एक दोस्त हैं, अब वो कहती हैं कि मेरे साथ जो अनहोनी होनी होती है, जो कोई बुरा मामला, कोई बुरा काम होना होता है ना, वो बुध के दिन होता है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ बुध के दिन बड़े बड़े अच्छे वाकयात होते हैं और बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि जिनको देख कर, जिनके बारे में मुझे जान के ना अच्छा अच्छा फील होता है कि चलो कुछ तो अच्छा और है लाइफ में। ये तो तमाम दखलअंदाज़ी बातें हैं कि दिनों के साथ और बहुत सारे मामलात, बहुत सारे अपने जो कारनामे नुमाया होते हैं, कारनामे होते हैं, करतूत होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इनकॉम्पिटेंसी होती है आपकी, कोई भी ऐसी कह लीजिए कि इग्नोरेंस हो सकती है। हम क्या करते हैं कि हम फलां इलाके में, फलां जगह पर फलां बंदे के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो डाल देता है कि आसमां के पार, आसमां के उस पार यानी के खला में मौजूद जो सितारे हैं वो उसकी किस्मत के साथ जो है ना वो छेड़छाड़ कर रहे हैं। बातें हम मानते हैं, पढ़ते हैं, फैक्ट्स हैं या नहीं है, लेकिन बहुत सारी बताने का, बात करने का मकसद यह है कि चीज़ों को ना हम ऐसे ही उन मामलात पर डाल देते हैं, जैसे कि दिनों की बात है कि ये दिन की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। हम ये नहीं देखते कि हमने अपने साथ क्या किया है, क्या कर लिया है। जनाब बातें चलती रहेंगी, आपको मोटिवेट करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे और बहुत कुछ होगा सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, हंसने को, हंसाने को, बोलने को, बुलवाने को, महसूस करने और करवाने को, और सबसे बढ़ के सीखने को, सिखाने को। तो बताएं जनाब कैसे हैं आपके जज्बात, एहसास, ख्यालात और सबसे बढ़ के हालात। आई डू होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, कूल होंगे, फैंटास्टिक होंगे और बहुत ही शानदार मज़ेदार अंदाज के साथ आप तमाम सुनने वाले अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे, करने वाले होंगे, अपने अपने कामों में मगन होंगे या अभी भी अपनी नींद जो है ना उसके मज़े लूट रहे होंगे। मैं आज बहुत सोया हूँ और जिस तरह से सोया ना कि मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, क्यों पड़ा हुआ हूँ। और नींद के बाद जो वो अचानक सा आपको ट्रामा आता है ना, वो क्या कहते हैं कि आपको यकीन नहीं आता कि आप उठ गए हैं कि अभी भी सो रहे हैं, और आपको लगता है कि आप शायद अभी सो रहे हैं और आप अच्छे खासे उठ चुके होते हैं, लेकिन आप सो जाते हैं ना उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ हुआ क्या है। वो कहते हैं ना कि जो सोता है वो खोता है, खोता है, खोने वाला। 25:09 AM बातें चलती रहेंगी। अभी आप को एक ट्रैक सुनाना चाहूँगा, शो का बाकायदा आगाज करना चाहता हूँ एक बहुत ही मज़ेदार से गाने के साथ, आतिफ असलम की आवाज़ में, कहते हैं चार यार। सो हम सब यार दोस्त जो हैं मिलके FM को सुन रहे हैं, आप तमाम समातों का बहुत शुक्रिया, हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं और जनाब हम आपसे बातें करेंगे और अच्छा अच्छा म्यूज़िक जो है वो भी आपको सुनाते रहेंगे। सो मैं आपके फीडबैक का मुंतजर रहूँगा। FM 101 लाहौर का फेसबुक फ़ैन पेज, यहाँ पर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे और उनके जवाब आपने देने हैं, कुछ मौजूदात के हवाले से बात की जाएगी, लेकिन इस ट्रैक उस पार आतिफ असलम की आवाज़ में, कहते हैं चार यार, मिलते हैं इस ट्रैक उस पार।

0: ਹਾਏ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਪਿਆਰ
1: ਨਹੀਂ।
0: ओके जनाब वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं फिर 101 चैनल वीडियो पाकिस्तान लाहौर और मुझे मुस्तफा कहते हैं शो लाइव है सिटी वाइब्स। और जनाब 9:30 हुए जाते हैं, तकरीबन डेढ़ घंटे तक के लिए मेरा आपके साथ ये साथ बाकी है। और इस साथ में हम कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि थोड़ी मुश्किल लग रही है मुझे आज। वेल बात कर लेते हैं आज के दिन के मौसम के हवाले से, क्या कहते हैं आज का मौसम और क्या हालात वाकयात हैं आज के मौसम के लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में। सो आपके गिरदोनवा का, आपके इलाकों का, आपके सबसे बढ़ के आपके दिल का, आपके अंदर का, आपके मन का मौसम कैसे है ये आप मुझे बता सकते हैं, मुझे जान के अच्छा लगेगा। वेल मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर ली जाए जो आज रिकॉर्ड किया जाएगा वो है 34 और मिनिमम की बात कर ली जाए 22। इसके अलावा जो अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है वो है 31। और जनाब आज की अच्छी बात यह है कि आज शाम के औकात में तकरीबन शाम के पहर में 7-8 के बाद जो है ना आज उम्मीद है, बल्कि बहुत अच्छी खासी बारिश की तवक्का आज मौजूद है। सो तैयार हो जाइए, कपड़े शपड़े ला लो, ते मंजियां शंजियां जेड़ियां ने ना अंदर नू कर लो। तो कोशिश करनी है आपने बाहर नहीं सोना आज, ठीक है। इसके अलावा अगर बात कर लें आज ठंडी अखबस्ता हवाएं चलने के इम्कान में मौजूद हैं। और सितंबर की अच्छी बात ये होती है कि ना इस मौसम में हमें जो एक खुनकी का एहसास होना शुरू हो जाता है, पता चलता है कि वाकई मौसम ना बदर है, मौसम अंगड़ाई ले रहा है, एक अच्छी वाली जो है ना हमें वाइब आती है, फीलिंग्स आती हैं। बिल्कुल मुझे लग रहा था कि पिछले दिनों शाम के औकात में, दोपहर के औकात में भी छाओं में जो आपको सुकून मैसर आता है ना, जो आपको हवा महसूस होती है, वो ऐसे ही लगता है कि जैसे ना वो बसंत वाला जो सीज़न आ जाता है फेब का, मार्च का, तो बिल्कुल वैसी वाइब आती है, वैसी आपको एक फीलिंग आती है। सो आजकल ऐसा मौसम है, लेकिन इसके साथ साथ जो अंदरों में वो घुट लगा हुआ है ना, जो हब्स है कमरों में, तो वो उसने आजकल तंग किया होता है। तो ये मामला भी हैं, लेकिन आपने मौसम के हवाले से अपने आप को आगाह रखना है, तैयार रखना है। नमकियात का इस्तेमाल जो है वो आपने ज़्यादा करना है। अभी भी जो है ये भादों का महीना है, तो ये चार है, सोन पादू कहते हैं क्या कहते हैं। तो इस मौसम के हवाले से भी आपने जो है ना अलर्ट रहना है, बारिशों के भी इम्कानात मौजूद हैं, बारिशें आने वाला एक नया स्पेल भी जो है इसके हवाले से पेशेंगोयां की जा रही हैं। तो आपने बिला वजह जो है वो बिजली की तनसीबात के पास से नहीं गुजरना है, बच्चों को आपने बचा के रखना है, इनका ख्याल रखना है, बूढ़ों को भी आपने जो है ना आपने उनकी मदद करनी है, हेल्प करनी है। कहीं देखते हैं ना कोई बड़ा बुजुर्ग जो है कहीं फंस गया है तो उसको आपने निकालना है, मतलब उनको कोई किसी तरह की हेल्प दे देनी है। मैं अक्सर देखता हूँ कि बारिश में ना जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे ही वो खड़े होते हैं, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कोई बंदा आए, कोई नौजवान आए, उनको सड़क पार करवा दे, या उनको जो है किसी भी तरह से ना उनकी मदद करते। सो हमें ये जो चीज़ें हैं ना, हमें आस पास अपने अराउंड में ये मुशाहिदात, अपने तजुर्बा जो है ना, इनके लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो नेकी का सबसे बढ़ के जो एक अच्छाई का मौका है ना, वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। वाज़ो नसीहत की बातें नहीं है, ये वो चीज़ें हैं, वो मामलात हैं जो कि आपके मूड को बहुत अच्छा बनाते हैं। आपसे बहुत अच्छे अच्छे जब काम होते हैं ना, तो आप अपने आप से बहुत खुश होते हैं। जब आप अपने आप से खुश होते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी वो काम करते हैं जो कि सबको खुशी देता है, आपको खुशी देते हैं। तो जब हर पास से हर तरफ खुशियाँ हो जाती हैं, क्या आई बात है। मौसम भी बहुत खुशगवार है, और मूड की हम बात कर रहे थे, वो मैं कहता भी हूँ ना कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, क्योंकि मौसम तो इंसान के अंदर होता है। तो अंदर के मौसम का आपने ख्याल रखना है, और इस मौसम को मज़ीद खुशगवार मज़ेदार बनाने के लिए हम रहते हैं हम वक्त आपके साथ, यानी कि FM 101 लाहौर, यानी कि 101 चैनल वीडियो पाकिस्तान। आज भी आपके साथ इसी सिलसिले की कड़ी मेरा आपके साथ ये साथ मौजूद है, शो कॉल्ड सिटी वाइब्स। अब एक ट्रैक शामिल करना चाहूँगा। आजकल बहुत बात हो रही है इस ट्रैक पे, बहुत सुना जा रहा है। अगर आपने नहीं सुना ना तो आपको पता चलेगा कि क्यों सुना जा रहा है। जब ज़ैन ज़ुहैब की आवाज़ें आती हैं और इनके साथ ज़ैन ज़ुहैब, आजकल के आर्टिस्ट जो है ना, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनकी अच्छी बात यह है कि यंगस्टर्स के साथ बहुत मज़े के कोलैब्स कर रहे हैं। यंगस्टर्स के साथ अपनी जो एक वाइब है, जैन ज़ी के साथ जो अपनी एक वाइब है, मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैन ज़ी की भी अच्छी बात यह है कि जो क्लासिक म्यूज़िक है, जो पुराना एक पॉप कल्चर था, उसके साथ भी अपने आप को जो है ना इंगेज कर रहे हैं, उसके साथ इंगेजिंग म्यूज़िक जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। सो एक ऐसा ही ट्रैक अल्फाज बाय हमजा मलिक एंड ज़ैन ज़ुहैब, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार। सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड एंड यस, डोंट गो एनीवेयर।

हाय जी, या तो तू है या तो कोई भी नहीं कि जनाब वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमें कहते हैं एफ एम 101 चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर, और मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं। 9:41 हुए चाहते हैं, बात कर लेते हैं आज के दिन के मज़ीद मौजूद के हवाले से। और अभी बहुत ही चट मौजूद थे और कुछ और सामीन भी थे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। और जनाब आपसे सवाल मैं एक करना चाह रहा था, उससे पहले हम आज के दिन के हवाले से बात कर लेते हैं। जनाब आज है 16 सितंबर, और 16 सितंबर को एक बहुत अहम दिन मनाया जाता है जिसको ओजोन लेयर डे के हवाले से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। सो ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन या ओजोन कहा जाता है, इसका ये क्या होती है, इसके बारे में अगर आपने मैट्रिक साइंस में किया है या आर्ट्स में किया है, आपने कम से कम 5 या 8 जमातें भी पढ़ी हैं ना, तो आपको इसके हवाले से पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो इसके हवाले से आप लाजमी सर्च कीजिए, पता कीजिए ओजोन लेयर क्या होती है और ये किस तरह से हमारे माहौल को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को हमारे लिए महफूज बनाती है। सो जनाब आज इसका आलमी दिन जो है ना वो मनाया जा रहा है। सो इस दिन को मनाने का मकसद क्या है और ये ओजोन लेयर क्या होती है, अगर खुदा ना खास्ता इसको कोई इशू, कोई मसला पेश आता है तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। सो इसकी आगही, इसकी अवेयरनेस के हवाले से आज के दिन बात की जाती है, और इस हवाले से जो है ना आगही जो प्रोग्राम्स हैं वो नशर किए जाते हैं, पोस्टें की जाती हैं, एक्टिविज़म होता है और बहुत कुछ होता है। सो हम भी बात करने की और इस हवाले से एक जो तफसीली तो नहीं, एक हल्का सा जो जायज़ा है ना वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जनाब उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम समातों के लिए, मेरे जैसे जो कि सुन रहे होते हैं, आप तमाम बच्चों को बताता चलूं कि ज़मीन जो होती है ना, ज़मीन के माहौल जो होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, इस माहौल में ना गैस की एक कह लीजिए कि जो कुदरती एक हिफाजती ढाल होती है, एक लेयर होती है, कवच होता है, जो ज़मीन की सतह से ना तकरीबन कहा जाता है कि 15 से 35 किलोमीटर की बुलंदी पर पाई जाती है। जो लेयर होती है, जो ढाल होती है, जो एक कह लीजिए कि एक झल्ली नुमा सी चीज़ बनी होती है ना, ये 15 से 35 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद होती है। और ये जो तय होती है, ये सूरज से आने वाली, अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये सूरज से आने वाली जो शदीद किस्म की जो शुआएँ होती हैं, जो इनको कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं, जो शुआएँ होती हैं, इनको क्या करती है कि इनको ये जज़ब करती है, अब्ज़ॉर्ब करती है, और इस तरह से क्या होता है कि ज़मीन पर मौजूद तमाम तरह के जो जानदार होते हैं, चाहे वो इंसान हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, इवन के पौधे भी जो है ना वो सूरज की शदीद शुआओं से महफूज रहते हैं। और मुझे याद है कि जब हम छोटे थे, केमिस्ट्री का एक चैप्टर होता था, उसमें हम पढ़ते थे कि जिन जगहों पर ओजोन लेयर को नुकसान हो चुका है ना, वहाँ पे लोगों को स्किन कैंसर इतना ज़्यादा होता है, उन लोगों की आप स्किन देखिए, उनकी बल्कि गोश्त की हद तक जो उनकी स्किन है ना वो ख़राब हो चुकी है, स्किन की लेयर्स ख़राब हो चुकी है। और बहुत सारे ऐसे पेचीदा मामलात हैं, पेचीदा इशूज़ हैं, फसलें ख़राब हो जाती हैं, आपकी इमारतों को नुकसान होता है, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, इशूज़ हैं जिनके हवाले से अगर हम बात करने लगे तो बहुत सारे मामला जो है ना वो खुल के सामने आएंगे। सो ये हल्का सा एक पस मंज़र था, जायज़ा था, और इसकी अहमियत ये है कि ये जो मुजरे सेहत अल्ट्रा वाइल्ड शुआएँ होती हैं ना, उनको 97% से 99% तक जो है एक मोहतात अंदाज़ा है, जायज़ा है, इनको ज़मीन पर पहुँचने से रोकती है। और अगर वो शुआएँ ज़मीन पर पहुँचती हैं, उसका नुकसान मैंने आपको बताया है कि जिल्द के कैंसर होते हैं, इसके अलावा फसलें ख़राब हो जाती हैं, इमारतों को नुकसान होता है। लेकिन इस हवाले से हम बात ये तो करते हैं कि ओजोन लेयर क्या नुकसान करती है, लेकिन हम इस पर बात भी करना चाहेंगे कि ओजोन का नुकसान कैसे होता है। ये जो लेयर होती है, ये जो एक हिफाजती सतह होती है, कवर होता है, शील्ड होती है, ये कैसे ख़राब होती है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे माहौल के ऊपर हमें महफूज रखती है सूरज के ख़तरनाक शुआओं से। सो जनाब ओजोन की जो तह होती है, ये किस तरह से तबाह होती है, इसकी जो बुनियादी वजह होती है ना वो हम सबको पता है, जिनको नहीं पता मेरे जैसे बच्चों को उनको बताता चलूँ कि जो CFCs के नाम से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के नाम से जो मोज़र मादे होते हैं, जो गैसेस होती हैं, इनको कहा जाता है CFCs।
ये कहाँ से निकलते हैं, ये जो आपकी फ्रिज होती है, इसके अलावा एयर कंडीशन होते हैं, एसी होते हैं, इसके अलावा जो स्प्रे कैंस होते हैं, इसके अलावा ये जो फ्यूल्स होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का ईंधन है, अगर वो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ता है, जैसे स्मोक के हवाले से बात की जाती है, स्मोक का भी मिलता जुलता सा मामला है इसके साथ साथ. ये तमाम तर जितनी भी हम फ़ज़ाई आलूदगी फैलाएंगे ना, उतनी ही ज़्यादा ओज़ोन लेयर के ख़राब होने के जो इसके ख़तरात के बढ़ने के इम्कानात हैं ना, ये बढ़ जाते हैं. और इसकी वजह से भी कहा जाता है कि दुनिया में जो टम्परेचर है, जो दर्जा हरारत है, वो इतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है ना कि अंटार्कटिका के एक मुकाम पर ओज़ोन की जो तह है ना, यहाँ पर एक बड़ा सुराख हुआ, बड़ा शगाफ हुआ, और उसकी वजह से कहा जाता है कि ज़मीन का जो टम्परेचर है वो इतना बढ़ना शुरू हो गया है ना कि जो इसकी वजह से ग्लेशियर्स हैं, जो पहाड़ हैं, जो बर्फ़ के बने हुए जो बड़े बड़े जो तोदे होते हैं वो पिघलने लगे हैं. और उसके पिघलने के नुकसानात क्या हैं, वो क्या मनाजिर हैं, वो नेपाल में आने वाले हालिया वाक़े की सूरत में हम देख चुके हैं, भुगत चुके हैं. पाकिस्तान में जो सैलाब के वाक़ात आते हैं, अचानक सैलाब आता है, अचानक से कोई मिट्टी का बर्फ़ का तोदा गिरता है और इतनी बड़ी मिकदार में पानी जो है ना वो सैलाब की सूरत में हमारी आबादियों को बहा कर ले जाता है. तो सुबह के इस पैर में मौसू को, शो के थीम को बहुत टेंस करना, मुश्किल करना मकसद नहीं था. आपके साथ ये अहम मौसू के वाले से बात करनी थी और ये मौसू पर बात करने का आज के दिन के हवाले से मनाए जाने वाला ये जो ओज़ोन लेयर डे का आज का थीम था, ये एक बहाना था. जनाब ये बातें चलती रहेंगी और अपने प्रोग्राम को हम नॉर्मल टेम्पो पर लाएंगे, आपके साथ बातें चलती रहेंगी और अच्छा अच्छा म्यूज़िक जो है वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपके साथ बातें भी करेंगे और आपकी बातों को हम सुनेंगे भी. आपसे सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि कभी कोई आपके पीछे हाथ धो के पड़ा है या पड़ी है? ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इस हवाले से मैं आपके साथ बात करूँगा और आपके साथ एक इंटरैक्टिव सेशन जो है ना वो हम करेंगे कि कभी कभी ज़िंदगी में ना ऐसा होता है कि हम किसी को हाथ पकड़ाते हैं ना वो आपकी बांह खींच लेता है. किसी को आप पलकों पर बिठाते हैं ना वो आपके सर पर चढ़ जाता है या चढ़ जाती हैं. तो ये मामलात क्यों होते हैं और इस हवाले से मुझे वो बात भी याद आती है कि जिस पर आप एहसान करें उसके शर से बचें भी. पिछले हालिया दिनों में मेरे साथ कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं, कुछ ऐसे मामलात हुए हैं कि ना मैं कुछ अच्छा काम करके ना फंस जाता हूँ, इतना फंस जाता हूँ कि बस फिर मैं आपको क्या ही बताऊँ. बल्कि इसमें हम बात करेंगे. आपसे सवाल ये मैं कर रहा हूँ कि कभी कोई आपके पीछे हाथ धो के पड़ा है, किस बात पर पड़ा है, पैसे पुसे ले लिए? वेल जोक्स अपार्ट ये बातें चलती रहेंगी. इसके अलावा हम बात करेंगे जनाब आज कुछ चीट कोड्स हैं ज़िंदगी में ना अच्छा अच्छा करने के लिए हमें कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसी चीज़ें अपनानी पड़ती हैं, इख्तियार करनी पड़ती हैं कि जिनका जो एक राज होता है, जो सीक्रेट होता है ना वो हमें पता होता है. जैसे मैं अपना बताऊँ ना कि मैं सुबह थोड़ा सा बल्कि अच्छा खासा एक्टिव होता हूँ, वो ये है कि मैं ना कॉफ़ी पीता हूँ और साथ में केले खाता हूँ. कैसी बातें कर रहे हैं? इसके अलावा बहुत सारे मामलात हो सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आपका कोई ऐसा शॉर्टकट हो सकता है, कोई ऐसा तरीकाकार हो सकता है कि जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में ना कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन उस एक आदत की वजह से. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं सुबह रनिंग करते हैं, सुबह जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हैं और उसके बाद हम उनके बारे में नोटिस करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो थोड़े से ना एक अमूमी सतह से हट के उनके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं. उनका जो फोकस है, उनकी जो बात करने का तरीका है, जो सोचने समझने का तरीका है, वो आम लोगों से डिफरेंट है. वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपने आप को अपनी ज़िंदगी में कहीं ना किसी ऐसे सीक्रेट मामले के साथ ना इंगेज रखते हैं. वो पढ़ना हो सकता है, वो लिखना हो सकता है, वो सोना हो सकता है, कुछ ऐसा खाना हो सकता है, कुछ पीना हो सकता है. तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि ये चीट कोड्स क्या होते हैं और किस तरह से आपके लिए फ़ायदा मंद होते हैं. वेल और बातें चलती रहेंगी, कुछ न्यूज़ अपडेट्स हैं, ये बातें सोन आपके साथ हम करते रहेंगे, लेकिन हम अभी आगे बढ़ना चाहेंगे. सजनी एक ट्रैक शामिल करना चाहूँगा, पुरानी यादें, वो मुलाकातें, वो बातें सब हमें याद आ जाता है. स्ट्रिंग्स बैंड की आवाज़ में फैसल कबाड़ी हैं, साथ में बिलाल मकसूद हैं. ये बैंड जब टूटा था ना
तो मुझे बड़ा एक वो ब्रेकअप वाला जो धचका होता है ना वो लगा था। सो इसे बैंड की आवाज़ में ये गाना है सजनी। इस ट्रैक को मिलकर सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, वापस आते हैं इस ट्रैक के उस पार। आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहिएगा।

ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमें कहते हैं एफएम 101 चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर, और मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं। 10:05 पर चाहते हैं, मेरा आपके साथ ये साथ बाकी है तकरीबन 11 बजे तक के लिए। शो कॉल्ड सिटी वाइब्स। वेल जनाब, अभी हम बात करेंगे पेट्रोल के हवाले से। पेट्रोल बिल्कुल महंगा हुआ है, और इसके साथ साथ जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, इनकी जानिब से ख़ासूसी रिलीफ जो है वो दिया गया है। सो इस पे बात करने को कहा गया था। सो हम बिल्कुल आपको गाइड कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपने पेट्रोल अगर आपने 100 रुपये सस्ता लेना है ना, तो ये कैसे लेना है। सबसे पहले इसको इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो 800 cc से तक की या इससे छोटी गाड़ियाँ हैं ना, सो इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत की तरफ से मोटरसाइकिल रक्षा और 800 cc या इससे कम की जो गाड़ियां हैं इनके लिए एक सब्सिडी का जो है वो आगाज़ किया गया है, जिसमें 100 रुपये सब्सिडी जो है वो पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं इनकी ख़रीदारी पर आपको मिल सकती है। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इस पेट्रोल रिलीफ जो स्कीम है, इसके लिए आपने 9771 यानी कि 9771 पर एक आपने टेक्स्ट करना है, मैसेज करना है। सो इस पे जो इमदाद की रकम के हवाले से, यानी कि मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान के लिए जो है ना, हफ्तावार या माहाना बुनियादों पर ये देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फ़ी लीटर 100 रुपये तक की जो है ना वो छूट दी जा रही है। तो इस हवाले से आप भी बिल्कुल फ़ायदा उठाइए गवर्नमेंट की तरफ से, रियासत की तरफ से, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, कोई भी एक सूबा हो आपकी, चाहे मुकामी गवर्नमेंट हो, अगर आपको कोई सहूलत मैसर आती है, आपको कोई ऐसी सब्सिडी दी जाती है, उसे अवेल करना चाहिए। ये नखरे नहीं करने चाहिए। मैं अपनी बात करूँ, मैं बड़े नखरे करता था ये लोकल सवारी करने से, और हमेशा मैं तरजीह देता था ये जो चिंची रक्षी होती है ना, मेरी आदत है, और अभी तक ये आदत अल्लाह का शुक्र है कि कायम है। और वो आदत ये है कि मैं लोकल सफ़र को ज़्यादा तरजीह देता हूँ बनिस्बत के ज़ाती बाइक या गाड़ी पे सफ़र करने के। सो मुझे अब इतनी आदत लग चुकी है ना लोकल सवारियों पे सफ़र करने की, बल्कि अब चिंची के बजाय ना मैं अब सफ़र करता हूँ ये स्पीडो पे, ऑरेंज लाइन पे, मेट्रो बस पे। सो इतना अच्छा सफ़र हो जाता है, अगर सीट मिल जाती है तो वारे नज़ारे हो जाते हैं, अगर नहीं मिलती तो फिर भी कोई मसला नहीं है, खैरियत से पहुँच जाते हैं, AC में पहुँच जाते हैं, और 20-25 रुपये में मैं कहाँ से कहाँ चले जाता हूँ। और मुझे याद पड़ता है कि जब इस्लामाबाद में मुकीम था तो वहाँ पर मेरे ऐसे ही इतने अच्छे खासे पैसे लग जाते थे। लाहौर की अच्छी बात यह है कि तकरीबन मैं 250-300 में ना तकरीबन पूरा लाहौर घूम सकता हूँ। ये आप भी घूम सकते हैं, आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो बताने का मकसद ये है कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी सहूलतें मैसर होती हैं जिनको हम अवेल नहीं करते हैं, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमें तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। बिल्कुल बहरान है, बहुत सारे मामलात हैं, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, लेकिन इनके बावजूद जो जो हमसे हो सकता है ना, हमारे लिए अच्छा हो सकता है, हमने उसको अख़्ज़ ज़रूर करना है, उसको हमने अचीव लाजमी करना है। वे जनाब, मोटरसाइकिल रिक्शा मालिकान के लिए हफ्तावार या माहाना बुनियादों पर फ़ी लीटर 100 रुपये तक की जो है सब्सिडी है, जो छूट है वो दी जा रही है। सो इसके लिए जो तरीक़ाकार है वो ये है कि मोटरसाइकिल के लिए हफ्तावार 5 लीटर और कारों के लिए मखसूस दिनों का जो फ्यूल टोकन है वो जारी किया जाता है। सो इसके लिए एक आसान सा सादा सा तरीका, बग़ैर इसको पेचीदा किए आपको बताना चाहूँगा कि आपने क्या करना है कि आप तो अपने मोबाइल से 9771 यानी कि 9771 पर आपने SMS भेजना है अपनी गाड़ी और शिनाख्ती कार्ड की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ठीक है। सो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने टाइप करना है, अगर आप पंजाब से हैं या किसी भी सूबे से हैं, जैसे पंजाब है ना, तो आपने इसका P लिखना है, P इस्तेमाल करना है। सो बाय कोड के हवाले से आपने इसको इस्तेमाल करना है, ID कार्ड नंबर लिखना है, गाड़ी का नंबर लिखना है, और तस्दीक के लिए आपने जो है ना अपना जो सब्सिडी वाला सस्ता पेट्रोल हासिल करने के लिए जो टोकन है वो हासिल करने के लिए आपने इस मैसेज को 9771 पे भेज देना, ठीक है। वेल, ये बातें जो हैं वो चलती रहेंगी, और इन मामलात के हवाले से भी हम मज़ीद बात करेंगे। अभी उस्मान मुगल साहब भी मौजूद थे और एक गाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो गाना मुझे अभी मिला नहीं है,
और गाने का नाम भी कहीं आगे पीछे हो गया। अभी एक ट्रैक शामिल करना चाहूँगा, आपसे बातें चलती रहेंगी। सवाल मैंने आपसे ये किया है कि कभी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं और ऐसा होता है, इसमें कभी वाली बात क्या आ गई, वो बात ये है कि हमारी ज़िंदगी में ना कई लोग होते हैं हमारे पीछे ना हाथ धो के पड़ जाते हैं और जिन्हों पंजाबी जी कहते ना खिते ही पै गई है। सो ये मामलात होते हैं, क्यों होते हैं, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो किस बात पर हुआ है, कोई आपके पीछे कभी कोई पड़ा है या पड़ी है हाथ धो के वो भी। सो ये आपने मुझे बताना है, फिर मैं आपको बताऊंगा और इस हवाले से हम बात करेंगे, मज़ीद मौजूदात के हवाले से भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा आपकी लाइव कॉल्स को भी गाने के बाद इंटरटेन किया जाएगा 04-2111-0011 पर। अभी एक ट्रैक शामिल करना चाहूँगा, उस्मान मुगल साहब मौजूद थे और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं जावेद बशीर की आवाज़ में, मुझे गाना मिला है और मेरा पसंदीदा भी है, ये आपने बहुत कम सुन रखा होगा, FM 101 के प्लेटफॉर्म पे बहुत कम सुन रखा होगा। बिल्कुल जनाब, ये तूने क्या किया बाय नन अदर देन जावेद बशीर, ये डेडिकेटेड है उस्मान मुगल साहब के मौजूद की तरफ से आज ये डॉग्स को, और आप तमाम समातों के नाम मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

ओके जना, वेलकम बैक वंस अगेन। आई डू होप कि आपने इस ट्रैक को एंजॉय किया होगा और गाना अच्छा लगा होगा सुबह के इस पेयर में। जावेद बशीर की आवाज़ में ये तूने क्या किया, क्या किया। सो जिंदगी में होता ऐसा होता है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। वो मैं अपना एक शेर भी लिखता होता था, अपना तो नहीं, मैंने कहीं फेसबुक पे पोस्ट किया था ना कि उम्मीद बनकर लोग ज़िंदगी में आते हैं, फिर पता नहीं क्या बनकर आंखों में छा जाते हैं। पहले यकीन दिलाते हैं कि वो हमारे हैं, फिर उसके बाद न जाने कहाँ छोड़ के चले जाते हैं। क्या किया मैंने, ये क्या कह दिया। सो मफहूम आपके साथ शेयर किया है कि ज़िंदगी में ना कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी ऐसी यादें होती हैं, वो मुलाकातें वाबस्ता होती हैं हमारी मेमोरीज के साथ, हमारे माजी के साथ। उनको हम ना याद कर सकते हैं, ऐसा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अच्छी मेमोरीज हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी यादें हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके बारे में अपने आप को जो है ना एक नॉस्टैल्जिक वे में, एक अच्छी अच्छी वाइब के साथ, अच्छी फीलिंग्स के साथ रखना चाहिए। जो मार कुटाई हुई, जो लड़ाई झगड़ा होया ना, उन्हें जान दे, इग्नोर करो, ठीक है। सो जो अच्छे लम्हात आपने बिताए हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, उनको आपने याद रखना है, अच्छी तरीके से याद रखना है।

0: जनाब एफ एम 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज, यहाँ पर आने के बाद आप पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर मुझ तक अपने रसाई को यकीनी बना सकते हैं और कह सकते हैं जो भी आप कहना चाहते हैं, सुन सकते हैं जो भी आप सुनना चाहते हैं। इसके अलावा 04211000101 पर आपकी लाइव कॉल्स को भी ठीक एक मिनट के बाद इंटरटेन किया जाएगा।
1: मेरे दिल की रेत पे आंखों की जो बड़े पर छाई तेरी।
0: वेल अभी जिया भाई की सेहत के हवाले से बात हो रही थी। जी जिया अंशुम एफ एम 101 की बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत प्यारा इंसान, बहुत बिबा आदमी है ये। अल्लाह पाक इसको सलामत रखे अपने बच्चों के सर पे, और इसकी आवाज़ हम हमेशा ऐसे ही सुनते रहें एफ एम 101 के माइक से। आजकल बीमार हैं और बस आपके दुआओं की, आपसे दुआओं की अपील है, इनके लिए दुआ कीजिए। जितनी दुआएं आप हो सकती है कीजिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि मेरा भी रब्ता हुआ और इंशाल्लाह कोशिश है कि मेरी आज इनसे मुलाकात भी होगी। सो आपसे भी गुजारिश है कि वो बस ये कह रहे हैं कि दुआओं में याद रखें। सो उम्मीद है अल्लाह की जनाब में, अल्लाह के हाँ बिल्कुल देर है, लेकिन बस दुआ कीजिए उनकी सेहतयाबी के लिए कि वो खैरियत से जल्द अज जल्द जो है ना सेहतयाब हो जाएं, ठीक हो जाएं।
1: तो
0: काफ़ी बीमार हैं, क्रिटिकल हैं, हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। सो बस दुआओं में याद रखिएगा इन। अभी जनाब कुछ कॉलर्स मौजूद थे, न्यासा मौजूद थे, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। इनके अलावा तमाम लिसनर्स को सलाम कह रहे थे, वालेकुम अस्सलाम। इनके अलावा अभी एक और भाई मौजूद थे। अब तमाम समातों का बहुत शुक्रिया एफ एम 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज, यहाँ पर कुछ ही देर के बाद आपके जो लाइव जो कमेंट्स हैं, जो मैसेजेस हैं, वो शामिल किए जाएंगे। सवाल मैंने आपसे ये किया है कि कभी कोई आपके पीछे पड़ा है, हाथ धो के पड़ा है ये पड़ी है, तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें करनी है, कोई बुरी बात नहीं करनी, ठीक है। वेल देखते हैं कौन है कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी सर, क्या हाल चाल है।
2: अल्लाह का शुक्र मुस्तफा भाई, क्या हाल है आपका, ठीक हो
0: सर। अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। मैं ठीक हूँ,
2: आपकी दुआएं, अल्लाह ताला का करम, शुक्र मालिक का।
0: क्या बात है सर, क्या बात।
2: तो हमारी तो दुआएं जिया अंजुम के लिए, उनकी आवाज सुने काफी अच्छा हो गया, अल्लाह ताला उनको शफाए कुल्ली अता फरमाए,
0: आमीन इलाही आमीन।
2: हमारी तो दुआएं, उसकी आवाज बड़ी अच्छी सुनते थे, बड़ा मजा आता।
0: हाँ जी नहीं, इंशाल्लाह आप आइंदा भी सुनेंगे और बार बार सुनेंगे, ठीक हो गया।
2: हम तो दुआ ही कर सकते हैं
0: जी, बस दुआ करनी है,
2: दुआ कुल्ली अता फरमाए,
0: आमीन इलाही आमीन।
2: आपका ये टॉपिक है ना
0: जी जी,
2: हाथ धो के किसी के पीछे, मैं तो हाथ धो के बोधी जाट के पीछे पड़ गए
0: आप बढ़ गए हैं क्यों
2: मेरे साथ उसकी मुलाकात नहीं हो रही।
0: अच्छा, मुलाकात नहीं हो रही, और अभी तो कंडे बैठे होंगे जो पहुंच जो तुसी
2: मैं लियाकत अली जट बोल रहा बागड़िया तो।
0: हाँ जी हाँ जी, ठीक है।
2: हाँ जी,
0: अच्छा
2: मेरा पूरी टीम सलाम।
0: वालेकुम सलाम।
2: जीरा जी ना, मेरी भैन शमीम आपी।
0: हाँ जी।
2: ते अनीला आपी, अनीला नू मेरी रिक्वेस्ट है ते जरूर आए, उन्हें बिना रौनक नहीं लगदिया, बड़ी रौनक लाते ने, बड़ा मजा आंदा। अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली जिंदगी,
0: आमीन,
2: बरकत वाली जिंदगी अता फरमाए, उन्होंने बच्चों से अल्लाह खैर करे,
0: आमीन।
2: ते शमीम आपी नू भी अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, बाकी जिन्हें भी शमसी रेडियो वाले ने, अमीद भाई, सारे मतलब ना लेंदे लेंदे काफी।
0: हाँ जी बिल्कुल है सर, सब नु सलाम जी, सब नु सलाम।
2: मुफ्त सर जी, सारे रजा चौधरी नु मेरा सलाम।
0: चलो चलो सर, चलो बड़ी बड़ी मेहरबानी, अपना ख्याल रखना।
2: ओके अल्लाह हाफिज़।

0: जी ये तूने क्या किया. वेल FM 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज आपके पैगाम में वेट कर रहा हूँ कि जो सवाल आपसे किया उसके हवाले से आप अपनी राय का इजहार भी करेंगे. आप मैसेज भी कर सकते हैं 0042111001 पर. आपकी लाइव कॉल्स को इंटरटेन किया जा रहा है जी. अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी कौन बात कर रही है, कहाँ से? रिमशा, रिमशा बात कर रही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आपकी आवाज कट रही है रिमशा, आपकी आवाज
1: कैसे आ रही है?
0: हाँ अब ठीक है, अब ठीक है. हाँ जी रिमशा बताओ क्या कहना. रिमशा, रिमशा बात कर रही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आपकी आवाज कट रही है रिमशा.

0: मैं क्लास में पढ़ाना ही पढ़ाना है।
1: ठीक हो गया।
0: मैं दुआवा मंगती सी कोई और टीचर आ जाए, कोई और टीचर आ जाए, इन चार टीचर और ही बनती सी। जान ही नहीं छटती थी। मतलब कहते थे,
1: अच्छा रिमशा आप पढ़ी हो कभी किसी के पीछे हाथ धो के पढ़ी हो?
0: मैं किसी के पीछे?
1: हाँ
0: मैं, अब मैं तो सिर्फ खाने के पीछे पहनती हूँ जब तो मेरे भूख लगती
1: है। अच्छा अच्छा सही है, सही है।
0: और जिया भैया के लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जल्दी से वो ठीक हो जाए और उनकी आवाज़ फिर से हम सुनना स्टार्ट कर दें। और मुझे बहुत इंतजार रहेगा उनकी आवाज़ सुनने के लिए। अल्लाह पाक उनको जल्दी से बस सेहत हो और मन कर दे बिल्कुल।
1: आमीन आमीन आमीन इलाही आमीन। ठीक हो गया रिमशा?
0: मेरे लिए भी दुआ करना, मुझे भी बुखार और नज़ला जुकाम खांसी।
1: अच्छा कम खाया करो ना, अच्छा अच्छा खाया करो। चलो चलो ठीक है ठीक है, अल्लाह आपको भी सेहत दे।
0: मैं भी देखो सुखी सी हूँ।
1: अच्छा
0: मैं भी स्मार्ट हूँ, मुझे सारे कहते खाया करो।
1: हाँ सही है, चलो अच्छी बात है, खाया करो।
0: मोटे होते तो फिर मैंने किधर से होता?
1: नहीं नहीं मैं, मुझे लग रहा है मैं हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा हो रहा हूँ।
0: वाह माशाल्लाह, चलो फिर आप हो रहे ना फिर मैं भी हो जाऊंगी।
1: हाँ हाँ हाँ हो जाओगी हो जाओगी। चलो ठीक है रिमशा,
0: और सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।
1: ओके जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।

0: जिंदाबाद
1: पाक फौज जिंदाबाद सर, जिंदाबाद सर,
0: ओके जी सर, जिंदाबाद जी। ओके जनाब, 10:28 पर आते हैं, बातों का सिलसिला सो ऑन चलता रहेगा। अभी एक ट्रैक शामिल करना चाहूँगा और इन द मीनवाइल आपकी ऑफ एयर कॉल्स को एंटरटेन किया जाएगा। सो अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, ऑनर बात करना चाहते हैं, तो गाने के बाद कीजिएगा। वेल, जिशान अली की आवाज़ में ट्रैक शामिल करना चाहूँगा, आप तमाम समातों के नाम कहते हैं आपसे मिलके। ये बेसिकली रीमेक किया गया है खान साहब के एक ट्रैक को और बहुत अच्छे अंदाज के साथ एक कोलैब किया गया है ल्यू ट्विंस के साथ। इस ट्रैक को मिलकर सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, वापस आते हैं इस ट्रैक। इस बार आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ मौजूद रहेगा। मैं कहते हैं FM 101 चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर, मुझे मुस्तफा कहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड एंड यस, डोंट गो एनीवेयर।

0: अब तो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहां से?
1: जी वालेकुम अस्सलाम मुस्तफा भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत
0: से? सर अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? ओहो हाँ जी जी सर, पानी शानी पियाइए तानू
1: नहीं पानी लगन वाला होया है,
0: पानी लगन वाला? अच्छा कोई तरौंका ला दें आ अच्छा जी सर,
1: वो कोई फील्ड इस तरह की ना, वो ज्यादा बोल बोल के पढ़ पढ़ के और उसकी वजह से गला थोड़ा सा ना खुश्क जा रहा है।
0: कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जी सर क्या कहना चाहेंगे?
1: अभी मैंने माइक भी ऑफ ही कर दिया था, फिर भी आपके पास आवाज चली गई है मेरी।
0: हाँ जी हाँ जी, कोई मसला नहीं।
1: बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले आपने वो जो मैंने कहा था ना, वो था अब भी आ जाओ।
0: अच्छा ठीक है,
1: हाँ बहरहाल ये भी अच्छा है। तो सबसे पहले तो जिया भाई को जब आप जाएंगे ना उनके पास,
0: जी जी,
1: उनके पास कहना, उनको जाकर कि आप परेशान ना हो, परेशान लेने की, टेंशन लेने की,
0: यार वो बंदा परेशान है ही नहीं है। ग्रुप हमारा आज का ग्रुप है, उसमें ना वो एक्टिविटी कर रहा है, वॉइस नोट भेज रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अभी ना तबीयत काफी नासाज है।
1: वो तबीयत की वजह से कह रहा हूँ,
0: मुझे
1: उनका पता है कि वो चुलबुले से हैं,
0: कार्टी
1: से हैं,
0: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे।
1: जब इनका जो कंबाइन शो होता है ना, सर रहमान का और सर डॉग्स का और इनका जिया भाई का,
0: बड़ा शुगर लगाते हैं।
1: तो शुगर वो जो कहता है ना कि मुझे नींद आ रही है, वो इन तीनों का कंबाइन शो सुन रहे हैं।
0: ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे।
1: मेरा ख्याल है कि वो दो तीन दिन पे वो फिर हंसता ही रहेगा।
0: हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
1: वो जैसे वो कहते नहीं थे इसको जुलून बूटी लगा दो, वो बूटी होती थी स्कूल पढ़ते थे।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: फिर हंसता ही रहेगा,
0: हंसता ही रहेगा। ठीक हो गया सर जी। सर
1: तो बाकी जो आपका टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: मेरे पीछे दो लोग पड़े हुए हैं अभी इस टाइम पे, एट अ टाइम।
0: अच्छा,
1: एक मुल्तान का, एक शेखपुरे का।
0: अच्छा, कि पहले पूरे देने ने?
1: नहीं नहीं।
0: अच्छा,
1: वो कह रहे हमें मिले।
0: अच्छा मिले, ठीक है।
1: टाइम नहीं है, टाइम नहीं, वो जब वो जो टाइम वो देते हैं वो मेरे पास नहीं होता, जो मैं कहता हूँ उनके पास नहीं होता।
0: हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। ओके सर जी।
1: हाँ एक मेरे टीचर है और एक यानी के दोस्त है।
0: तो मिल लेना, कोई मसला नहीं है, मिलने में क्या है?
1: मिलने में मसला कोई नहीं है, टाइम नहीं ना बन रहा।
0: अच्छा टाइम नहीं बन रहा। अच्छा,
1: संडे को उनके पास टाइम नहीं होता, फ्राइडे को मेरे पास टाइम नहीं होता।
0: सही है सही है सही है,
1: ये सीन चल रहा है।
0: ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले सर, चले बहुत शुक्रिया
1: सर। डॉग्स जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद और जिया भाई खुश रहे, बात रहे,
0: उनको
1: खुश और गरम रखे, हमेशा सलामत रहे।
0: ओके सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। मुस्कुराने लगे आपसे मिलके हम। ओके जनाब, 04-111-000-111 कुछ मजीद कॉल्स लेते हैं, देन उसके बाद हम आएंगे अपने मौजूद की तरफ भी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: माला खेल आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है?
2: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त किशन सुन रहे, बहुत अच्छा।
0: अरे मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपने कॉल की है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहना चाहोगे?
2: बस भी माशाल्लाह, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, उस जगह मत जाओ जहाँ लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हो, वहाँ जाओ जो लोग तुम्हारी इंतजार करते हो।
0: हाँ बर्दाश्त करते रहो, इंतजार करते हैं, बस मुझे यही समझ। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माला के।
2: ठीक है, बहुत ज्यादा प्यारा खिलाफ।
0: आमीन, अल्लाह आपको भी खुश रखे। मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब दे। जनाब कुछ ही देर के बाद आपके जो लाइव ऑनर पैगाम हैं, जो आपके कमेंट्स मौजूद हैं, इनको शामिल किया जाएगा और आपके नाम लिए जाएंगे। अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो बिल्कुल इनको भी इंटरटेन किया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? अरे फरी चुबुलची लाहौर से आ गई है। मोहतरमा क्या हाल है, खैरियत से हैं?
3: अल्लाह ताला का सबसे पहले तो
0: हुदैफा
3: के पापा के लिए बहुत सारी दुआएं हैं,
0: ध्यान
3: दूंगी हमारी,
0: बहुत सारी नेक दुआएं
3: अल्लाह ताला इनको सेजा भी दे देगा, जल्दी शफा हो जाएगी
0: जी इंशाल्लाह।
3: अगर आप इनके पास जाएंगे ना, तो इनको इतना के थोड़ा सा सदका या नजर वगैरह उतार ले, कोई अंडे की सूरत में, कोई वो मुर्गी की सूरत में ना सदका दे दे, اللہ تعالیٰ جلدی شفا دے دے گا.
0: ہم
3: سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نو دوبارہ پیر والے شو میں نو دوبارہ ان تینوں کو لے کے آئیں گے
0: انشاءاللہ. ہاں جی
3: بہت دل چین ہے.
0: ہاں جی ہاں جی بالکل ایسے ہی بالکل ایسے.
3: ان کو سلام بھی کہنا ہے اور میری طرف سے دعا بھی کہنی ہے کہ وہ ہم سب دعا مانگ رہے ہیں.
0: ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. اوکے بہت شکریہ.
3: اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ.

0: लगे।
1: बोल जनाब, हमदुल्ला मलाखिल मौजूद हैं, मोहम्मद हफीजुर रहमान, सज्जाद अली लाडला। सज्जाद बहुत शुक्रिया, आज आई नहीं हो, गाना शाना नहीं आपने सुनाया। हाँ, कहाँ पियो, सो गए दोबारा। एम नईम टेलर मौजूद हैं, शहराज अली मौजूद हैं। आप जी शहराज, मेरा बहुत ही प्यारा भाई, शुक्रिया शहराज। रेहाना खान बक्कर से हैं, बरकत रमजानी हैं, दैन इनके अलावा कुछ पैगामात हैं। नईम साहब कह रहे हैं कि सबसे पहले आज तैयब उस्मान रंधावा को क्यों नहीं आ रहे। तैयब भाई जो है ना, वो आजकल काफ़ी बिजी हैं। अब्दुल्ला मलाखिल हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल्ला मलाखिल फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू द शो। अरे वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। हमदुल्ला कह रहे हैं, हमदुल्ला कहते हैं कि छोटे दिमाग बड़ी बड़ी बातों से मुतासिर होते हैं और बड़े दिमाग छोटी छोटी बातों से।
2: हमने जब आपकी,
1: अच्छा वैसे हमदुल्ला छोटी बातों में भी बड़ी बड़ी हिकमतें होती हैं। वैसे थोड़ा सा एक वसत के साथ आपको सोचना पड़ता है, एक कुशादगी के साथ आपको अपना नुक्ता नज़र को जो है ना वो बदलना पड़ता है। इसके अलावा हमदुल्ला कह रहे हैं, इस कायनात में अल्लाह के सिवा कोई भी आपको हमेशा हर वक्त और हर हाल में एक जैसा मैसर नहीं हो सकता। ठीक हो गया। सज्जाद अली लाडलाएँ कह रहे हैं, किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो, अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो इसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं बल्कि वो ज़रूरत का पुजारी है। ऐसे ही है, शार भेजे हैं सज्जाद, मैं रात को पढ़ता हूँ अकेला बैठ के, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग, बहुत ही प्यारी स्माइल, मुस्कुराहट वाले आज है मुस्तफ़ा, आप रोज सदा सलामत रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। यहाँ पर बहुत शुक्रिया सज्जाद, आपका हुस्न नज़र है, सलामत हो आप भी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। कह रहे हैं कि तमाम सुनती समातों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, पाकिस्तान पंजाब एंड पाक आर्मी को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। इनके अलावा कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और वेलकम टू द शो, सत बिस्मिल्लाह जियानु सलाम, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, काफ़ी दिन के बाद आपको सुन रहा हूँ और आपको सुन के अच्छा लग रहा है। अरे सज्जाद, आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है, आपको सुन के और ज़्यादा अच्छा लगेगा, आओ ना ज़रा, दो कानों को अजियत। हफीजुर रहमान बक्कर मौजूद हैं, कुछ दोस्तों के नाम लिए हैं और कुछ बातें की जा रही हैं। नईम साहब मौजूद हैं, कह रहे हैं सदा सलामत में हैं, आज वसीम को मोहब्बत भरा सलाम, वालेकुम सलाम। स्वीट आज कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग। अरे सर, आपको भी गुड मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें?
3: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
3: जी, खुश आमदीद सर, कैसी हैं आप?
1: सर मैं अच्छा हूँ, आप बताएं कैसी हैं?
3: मैं भी आपकी तरह अच्छा हूँ, लेकिन काफी नहीं करता आपकी, अच्छा हूँ।
1: अच्छा, चले माशाल्लाह। अरे सर क्या बात है, चौधरी साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं?
3: सर अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी पोस्ट क्यों नहीं आ रही?
1: सर पोस्ट आ रही है, पोस्ट आ रही है, अला आपकी साइड पे लगता है काफी अंधेरी आ रही है,
3: वहाँ पीछे काफी इशू काफी ज्यादा है। तो सबसे पहले जिया भाई के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली अच्छी जिंदगी दे, जो भी मसला मसाइल जिंदगी के साथ होते हैं, इंशाल्लाह ताला जिया भाई जरूर ठीक होंगे और हमारे बीच होंगे
1: इंशाल्लाह।
3: तो सर मौजू की तरफ चलते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लिसनर आए हैं, जिनमें फरी आपकी भी आई है, तो भाई की ये तो जहीन बंदे हैं ना, इन जैसे तो बात नहीं कर सकता मैं। तो मैं ये कहता हूँ, मैंने कभी किसी की कॉपी नहीं की, कभी किसी के पीछे नहीं गया, क्योंकि मैं अपनी ही चीज मार्केट में लेके आता हूँ, जो बोलना है अपना ही बोलना है।
1: अच्छा ठीक है।
3: वो एक मुहावरा है ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये ना हो कि हम किसी की कॉपी करते करते हम अपनी जो चीज है वो।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक हो गया। हाँ जी, ओके। अच्छा, आपकी कॉल जो है ना वो कट हो गई है और ये मैंने नहीं काटी है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
4: जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, ठीक ठाक है आप?
1: वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं?
4: आपकी दुआएं, मैं कह हम भी आज ही लगवा ले को केले छेले खवा ले।
1: अरे क्या बात है सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मैं वैसे सुबह खा के आया हूँ।
4: अच्छा, मिल्क शेक नहीं बनाया फिर आप?
1: नहीं नहीं, शेक का टाइम नहीं मिलता, कॉफी मसा मसा बन दिया हो।
4: माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका शो, आपके लिए बहुत बहुत दुआएं और जिया भाई के लिए भी बहुत बहुत दुआएं और जितने भी आज प्यारे हमारे सबके लिए दुआएं करते, अल्लाह ताला सबको अपने मान में रखे और जिया भाई को अल्लाह ताला छेती छेती तंदुरुस्ती दे راتی بھی میں جاگتا رہا ہوں, میں کہ پروگرام سنیں گے لیکن وہ نہیں آئے. چلو اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے,
1: ہاسپٹل میں بہت بہت دعائیں کیجیے گا. ٹھیک,
4: واہ بہت بہت دعائیں جی, بہت اچھا پروگرام, اللہ تعالیٰ آپ کی
1: بہت شکریہ.
4: ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی,
1: بڑی مہربانی. وعلیکم السلام. ابھی ساجدہ موجود تھی اور ایک گانے کی فرمائش کی تھی, ہوپ فلی یہی گانا ہوگا. ویل مجھے گانا ملتا ہے تو میں چلا لیتا ہوں, نہیں ملتا تو ہم نہیں چلاتے, اس میں کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ گانا ہم تھوڑا سا سنتے ہیں اور ان مین وائل ہم آپ سے بات کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہوئیے گا.

0: ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमें कहते हैं फ़िल्म 101 चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर, और मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं। अदील रज़ा की आवाज़ में आपने इस ट्रैक को सुना, और आई डू होप कि आपने इस ट्रैक को इन्जॉय किया होगा। 10:56 हुए चाहते हैं, और कुछ ही लम्हा तक के लिए मेरा आपके साथ ये साथ बाकी है, और आपकी लाइव कॉल्स को भी हम शामिल कर रहे हैं। कुछ मौजूदात हैं उनके हवाले से हम चलें फिर बात कर लेंगे। अभी सलमान साहब मौजूद थे, ज़िया भाई के लिए दुआएं कर रहे थे, और भी तमाम समातें जिन्होंने हमारा आज के दिन साथ दिया या नहीं दे सके, सबका बहुत शुक्रिया। बल्कि एक और कॉलर मौजूद है, ले लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अरे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी देर की मेहरबान आते आते।
1: हाँ जी, हमेशा देर कर देता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, चलो चलो। क्या हाल चाल है, खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? सजाद अली लाडला,
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ कैसे हो? अच्छा सजाद, जल्दी से बात, बिल्कुल इख्तितामी लम्हात है, कोई बात करो, कुछ सुनाओ कुछ जल्दी से।
1: बस मैं आपसे बात करनी थी, आपकी आवाज़ सुननी थी कॉल पे, बस इतना ही मैं करना था।
0: अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहो।
1: जी इसलिए मैं ऑफ एयर ही मिला रहा था, मैंने कहा चलो आपसे बात हो जाए मेरी।
0: नहीं नहीं, आप ऑन एयर हो। अपना क्या रखना, बहुत शुक्रिया सजाद, अल्लाह हाफिज। ओके जनाब, 10:57 बजे आते हैं, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल। जिंदगी ने साथ दिया सांस ने वफा की, तो आपसे मुलाकात होगी अगले बुध को सुबह 9 से 11 सिटी वाइज में। कुछ मौजूदात हैं, कुछ बातें हैं रह गई हैं, और कुछ ऐसी बातें भी हमने कह दी हैं जो कि नहीं थी कहने की, फिर भी अगर कोई कुछ कहा सुना अगर आपको बुरा लगा है तो उसके लिए माजरत खाएं हम। कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे मौजूदात के साथ, अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ हम आपके साथ गाहे बगाहे आपका साथ देते रहें। आपके फीडबैक का मुंतजर होंगे। FM 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज, वहाँ पर पोस्ट अपडेटेड है, और शो के बाद भी मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ अपने फेसबुक फैन पेज के जरिए से। MUSTAFAA लिखेंगे, मुस्तफ़ा के नाम से मेरा एक फेसबुक फैन पेज है, वो आपको मिल जाएगा। जनाब वही पैगाम के तमाम तर आलम इंसानियत का ख्याल रखिएगा, बिला तफरीक से रंग नस्ल और मजहब के। ज़िंदगी ने साथ दिया सांस और वफा की, तो आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज के लिए इजाज़त। यस, अल्लाह ने के बानो मेहरबान।

तमाम धड़कते दिलों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका दिन बहुत बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, और अगर नहीं भी अच्छा गुजर रहा तो मैं हाजिर हूँ विद द सुपर डुपर शो लेडीज लाउंज। आपका मेरा साथ रहने वाला है ठीक 11 बजे से 1 बजे तक। इस दौरान प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपके फोन कॉल्स, मैसेजेस, कमेंट्स, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। तो जी सबसे पहले तो आज इनकी बर्थडे है, उन्हें मेरी तरफ से एफएम 101 की पूरी टीम की तरफ से मेनी मेनी बेस्ट विशेस ऑफ द डे। और जो लोग बीमार हैं उनके लिए ढेरों ढेरों दुआएं, क्योंकि जहां है तो जहां है।

जी कैसा गुजर रहा है आपका दिन? बहुत से लोग इस वक्त जो है ना अपने काम को पहुंच चुके होंगे, कुछ लोग रास्ते में होंगे, हम निभाते हैं आपका साथ। एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे पहुंचने के लिए हम होते हैं आपके साथ हर पल हर लम्हा। ये दिन, ये वक्त, ये ज़िंदगी कैसे गुजर जाता है इतनी जल्दी जल्दी पता ही नहीं चलता। ये बात आप सिर्फ तब कह सकते हैं जब आपके दिन वाकई में अच्छे गुजर रहे हों। जब बुरा वक्त गुजर रहा हो ना, तब तो एक एक पल का पता चल रहा होता है। लेकिन नो डाउट वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है और आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप वक्त की कदर नहीं करते। तो एक एक दिन, एक एक लम्हा ऐसे गुजारिए कि यही आखिरी है। अभी आपकी इस बातों की नज़र करने जा रही हूँ एक ज़बरदस्त सा ट्रैक, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए FM 101। जाने जा

वेलकम बैक, दिस इज़ योर दोस्त योर होस्ट आरजे वजीहा आसिम। आज के प्रोग्राम की जो पोस्ट है हमारे FM 101 के ऑफिशियल पेज पे अपलोड कर दी गई है, सो डू लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, किसी से अपनी कुछ दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, किसी को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं दिलों को दिलों से मिलाने के लिए। तो जी, साथ ही बात होगी आज आपके किचन में क्या बन रहा है। क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, कॉलेजेस खुल चुके हैं, तो जो माओं की ना सबसे पहले सुबह उठते साथ यही कोशिश होती है कि बच्चों के आने तक ना ज़बरदस्त अच्छा सा खाना तैयार रखें। और साथ ही मैं बात करना चाहूँगी कुछ ऐसी रियलिटी के बारे में कि अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारी जो माएँ हैं या जो हमारे घर में हमारी बड़ी बहन या नानी दादी, जो भी जो बड़ी खवातीन घर में होती है ना, उनको हमेशा ये लगता है या वो एक लड़कियों के जहन में जो ये बात बैठा दी जाती है ना कि जी कोई प्रिंस आएगा और घोड़े पे सवार और उसके बाद आपकी जो है ना असल ज़िंदगी शुरू होगी, तुमने अपने सारे शौक़ उसके बाद पूरे करने हैं, तो उनको ना एक रियलिटी चेक देना साथ साथ बहुत ज़रूरी है। उनको हमेशा ख्वाबों की दुनिया में नहीं रखना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि हमेशा उनको एक फैंटेसी वर्ल्ड में रखना कि शादी के बाद तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी और शादी के बाद ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और बस ये इसी चीज़ के जो है ना बस सपने दिखाना कि तुम्हारा हस्बैंड या ससुराल वाले बहुत बहुत अच्छे ही होंगे। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि आपका हस्बैंड अच्छा होता है तो ससुराल वाले अच्छे नहीं होते हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमारा कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, ठीक है, आप अकेले इंडिपेंडेंट घर पे नहीं रहते, अक्सर ऐसा ही होता है कि आप अपने सास ससुर के साथ रह रहे होते हो, तो वो आपकी ज़िंदगी में उनका जो रोल है अमल दखल बहुत बहुत ज़्यादा होता है। कि अक्सर मैंने देखा है जो जो मर्द हजरात होते हैं वो अपनी बीवियों के साथ भी फंक्शंस में नहीं बैठते, थोड़ा सा तो दूर दो तीन सीटें छोड़ के बैठते हैं, हाय मैं इसके साथ बैठ जाऊंगा तो लोग ये ना समझ लें ये वो ना समझ लें। और एक जो जो है ना जो मर्दों के जहन में बहुत एक बात होती है कि मैं अगर कोई अपनी बीवी की बात मान लूँगा तो लोग ये सोचेंगे कि ये तो ना बस ये तो बस ना जो अब मैं वो क्या डायलॉग बोलना नहीं चाह रही, ये लोग ये ना समझे कि जी मैं बहुत ही बीवी का फरमा बरदार हूँ। कि ये भी एक कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत एक है एक सबके दिमाग में, किसी को ये ना लग जाए कि मैं बीवी की बात मानता हूँ। तो ये जो है जो हस्बैंड होता है उसे भी बैलेंस करना पड़ता है और वो जो उसके लिए भी बहुत मुश्किल है और बीवी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि आके एडजस्ट करना। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक रियलिटी चेक जो है ना अपनी बेटियों को बहनों को देना बहुत ज़रूरी है, उन्हें हमेशा ख्वाबों की दुनिया में नहीं रखना चाहिए कि शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपकी मैरिज में डिफ़िकल्टीज आएँ कुछ हो, तो फिर आप कोप अप नहीं कर पाते क्योंकि आपने इतने सालों से जो ख्वाब बुने होते हैं बहनों को देना बहुत ज़रूरी है, उन्हें हमेशा ख्वाबों की दुनिया में नहीं रखना चाहिए कि शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपकी मैरिज में डिफ़िकल्टीज

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

वेलकम बैक, दिस इज योर दोस्त योर होस्ट आरजे वजीहा आसिम। प्रोग्राम है लेडीज लाउंज। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो अपनी बेटियों को बहनों को थोड़ा सा ना हकीकत पसंद रखें, उन्हें बहुत ज़्यादा सुहाने ख्वाब ना दिखाएं और उन्हें ये ना कहें कि जी शादी के बाद बहुत ये होने वाला है या बहुत हमें दुनिया भर की आसाइशें मिलने वाली हैं। अल्लाह करे सबके, अल्लाह ताला किस्मत अच्छी करे, नसीब अच्छे करे सब लड़के लड़कियों के। लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहना चाहिए। और साथ ही किचन गार्डन के लिए ना मैं आपको जल्दी जल्दी से कुछ छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहूँगी। अगर आप अपने किचन में इस्तेमाल की चीज़ों के लिए कुछ भी उगाना शुरू करना चाहते हैं ना, तो आप धनिए पुदीने से हरी मिर्चों से शुरू करें। आप थोड़ा सा भी लगाते हैं तो बहुत इजीली ग्रो कर जाता है और बहुत जल्दी से फैल जाता है, बहुत ज़्यादा सा हो जाता है। ठीक है, सूखा धनिया आप मिट्टी में ऐसे भी फेंक देना, मतलब ज़्यादा मेहनत ना भी करें, उसे थोड़ा बहुत पानी देते रहें तो धनिया बहुत ज़्यादा सा लग जाता है। पुदीना भी, हरी मिर्चें, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत आसानी से ग्रो कर जाती हैं। लीमू जो है वो ज़रूर ज़रूर सब अपने घर में ज़रूर लगाएं, वो भी इजीली ग्रो कर जाता है, उसका एक छोटा सा पौधा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना बहुत महंगी नहीं होती हैं। आप छोटा सा भी लीमू का पौधा लें 200-300 रुपये का, वो आप अपने घर में रखें। एलोवेरा ज़रूर सबके घर में होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं आपके घर में पॉजिटिविटी रहे तो जेड प्लांट जो है अपने घर में ज़रूर ज़रूर रखें और कोशिश करें एंट्रेंस पर रखें। इसके साथ जो रबर प्लांट है वो अपने घर में ज़रूर रखें। स्नेक प्लांट जो है वो फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ज़रूर ज़रूर अपने लाउंज के अंदर रखें। ये वो प्लांट है स्नेक प्लांट जो कि इनडोर प्लांट्स के तौर पे यूज़ हो सकता है। जो रबर प्लांट है ना वो जो है वो भी एक अच्छी लक का, ठीक है, गुड लक का साइन है, तो ज़रूर ज़रूर उसे भी अपने घर में ज़रूर लगाइए। जब आप थोड़ी सी गार्डनिंग करते हैं ना, जब पौधों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं ना, जब तो क्योंकि ये सब चीज़ें हैं क्लोज़ टू नेचर, ठीक है, तो आप बहुत बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो इसलिए जैसे आप पहले बहुत, अब तो लोगों में जिम का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन जिनको आदत है वो अभी भी सुबह में या रात में वॉक ज़रूर करते हैं, तो इसलिए आप वॉक करके अपने आप को ताज़ा, हालाँकि आप वॉक कर रहे होते हैं आपकी सांस फूल रही होती है, लेकिन आप अपने आप को तरोताज़ा इसलिए फील कर रहे होते हैं क्योंकि आप क्लोज़ टू नेचर होते हैं। ग्रीन देख के, घास, पौधों, दरख्त, इन सब चीजों के इर्द गिर्द जब आप रहते हैं ना तो फ्रेश फील करते हैं। जी, हमें रज़ा चौधरी का मैसेज आ चुका है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? इजाज़ अली ने मैसेज किया है हमें शरकपुर से, हमदुल्ला मलाखेल हैं हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमदुल्ला मलाखेल फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू द शो, थैंक यू। और इजाज़ अली कहते हैं क्या हाल है आपका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आतिफ अली ने मैसेज किया है मुल्तान से हमें, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। और साइम तबस्सुम ने हमें मैसेज किया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। पेरिस फ्रांस से नवाजिश अली तबस्सुम, वजी आसिम खूबसूरत प्रोग्राम मोहब्बत और शौक़ से सुन रहा हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें पहले से ज्वाइन किया। और आसिम, वजी आसिम साहिबा, आपकी खूबसूरत आवाज़, अंदाज़ गुफ्तगू और प्रोग्राम पेश करने का सलीका दिल को बहुत भाता है, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह आपकी आवाज़ और अल्फाज में हमेशा मिठास और बरकत अता फरमाए। और तमाम प्यारे आरजेज़ और पूरी टीम के लिए ढेरों दुआएँ और नेक तमन्नाएँ। दुनिया भर में प्रोग्राम सुनने वाले तमाम सामईन को भी पेरिस से मोहब्बत बड़ा सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और कहते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दी हुई इस अजीम नेमत, हमारे प्यारे पाकिस्तान को अल्लाह हमेशा सलामत, खुशहाल और सरबुलंद रखे। पेरिस से पाकिस्तान की मोहब्बत के साथ जी आसिम, पूरी टीम के लिए बहुत सारा प्यार, पाकिस्तान जिंदाबाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज भट्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बेहतरीन शो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमदुल्ला मलाखिल ने हमें कहा है ज़िंदगी में गम है, खुशियाँ भी हैं और यही ज़िंदगी है, लेकिन खुशियाँ तलाश करनी पड़ती हैं और गम बिन बुलाए ही आ जाते हैं। बिल्कुल, और पता है अगर ज़िंदगी में गम ना होना तो हमें खुशियाँ क्या होती हैं उनका एहसास ना हो। आतिफ अली ने हमें मैसेज किया है, कहते हैं इस वक्त आपको गोल्डन एरा फूल नगर मुल्तान रोड से सुन रहे हैं। चलें जी, आपने मुल्तान से ज्वाइन किया, थैंक यू। और मंजर महमूद मंजर ने कहा है
खामोशी से अपना काम करती हैं, जितनी खामोशी से अपना काम करती हैं दरख्त उतना ही एतमाद से तूफ़ान का सामना करता है। आपकी तालीम तरबियत और असूल भी वही पोशीदा जड़ें हैं जो मुश्किल वक्त में आपको गिरने नहीं देते। बिल्कुल, और हमेशा आप नोटिस करें कि जो दरख्त जो होता है जो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है ना, वो आंधी जो या तूफ़ान जब आता है ना वो जल्दी गिर जाता है, और जो थोड़े झुके हुए दरख्त होते हैं ना वो आंधी तूफ़ान जितना मर्जी तूफ़ान हो उसका आराम से मुकाबला कर जाते हैं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में अपनी आप में अपनी ज़ात में थोड़ा सा झुकाव पैदा करो ताकि तुम किसी भी तूफान से किसी भी वक्त लड़ सको।

एक सांप जो होता है ना, जब वो रात को किसी जुगनू को देखता है ना, तो उसके पीछे पीछे ना चलने लगता है। तो जब जुगनू को एहसास हुआ कि ना मेरे पीछे कोई चल रहा है या मेरा कोई पीछा कर रहा है, तो वो मुड़ के देखता है और वो उसे कहता है कि ना कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, कि मैं क्या तुम्हारी खुराक का हिस्सा हूँ। तो उसने कहा नहीं। उसने कहा क्या मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाया है? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा कि बस मैं तुम्हें चमकता हुआ देखना नहीं चाहता, सिर्फ मैं तुम्हें जो है ना, तुम्हारी जो चमक है ना वो मुझे तंग कर रही है, तो मैं तो इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो उसको बहुत हैरानगी हुई कि मेरा तो काम ही है चमकना। उसने कहा कि तुम्हें क्या मसला है, तो मुझे क्यों चमकता हुआ देखना नहीं चाहते? तो वो जो सांप है ना, वो एक मिनट के लिए रुका ज़रूर, उसने सोचा ज़रा, तो फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें शिकस्त देना चाहता हूँ, तुम्हारी ये चमक, तुम्हारी ये जो है ना, तुम्हारा यूँ अपनी एक जो है ना, अपने आप को, अपनी जगह थे ना, अपनी ज़ात को यूँ आगे ले कर बढ़ना मुझे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पर जुगनू ने पता है उसे क्या कहा? उसने कहा कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। तो सांप को और गुस्सा आ गया, तो जुगनू ने उसे समझाया कि देखो मैं तुम्हारे खिलाफ ना इस जंग में, इस मुकाबले में हूं ही नहीं। उसने कहा कि तुम्हारा और मेरा तो कोई मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि तुम हो लोगों को डसने वाले, लोगों को मारने वाले, और मेरा काम है लोगों को रोशनी दिखाना, रोशनी बिखेरना, चाहे इर्द गिर्द अंधेरा भी हो। और रोशनी जो है ना, वो मुझे मेरे रब ने दी है, और कोई चाह कभी ये मुझसे नहीं छीन सकता। तो बेसिकली ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको डसने के लिए ना तैयार बैठे होते हैं, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बस उनको ये, आप बहुत दफ़ा सोचते हैं मैंने उनका क्या बिगाड़ा था, मैंने क्या किया था, मेरा क्या कसूर था। तो आपका कसूर सिर्फ यही होता है कि आप जो है ना, अपनी ज़ात को लेके, अपनी अपनी सिफ्त में, अपने आप में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, और बस इतनी सी बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती। तो यहाँ पे ना, आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है कि आपका काम जो है ना, सांपों से लड़ना नहीं है, अपनी रोशनी को मज़ीद बढ़ाना है। तो कभी भी ना, ऐसे लोग जो आपको डसने के लिए तैयार बैठे होते हैं ना, उनके साथ बात भी करके ना अपना वक्त ज़ाया ना करें, वक्त, एनर्जी, अपना मेंटल पीस जो है ना ज़ाया ना करें। हियर इज़ अ ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग योर वे, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।

Welcome back. This is your dost, your host, RJ Vijay Hasim. Program hai Ladies Lounge. So after the news break, I'll be taking your on-air calls. आप हमें 4471 पे भी मैसेज कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो कॉमेंट एट ऑफिशियल पेज FM 101 के पेज पे भी आप कॉमेंट कर सकते हैं. हमारे साथ रابطے का नंबर है 111-000101.

तो जी खाने का टाइम भी होने वाला है, और अगर आपके जहन में कोई अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ हैं तो आपने ज़रूर शेयर करनी है। सितंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और सितंबर के महीने में आप फ़िश जो है ना खा सकते हैं, और फ़िश जो है वाइट मीट, वाइट चिकन को आपको जो भी वाइट मीट आप जिस भी फॉर्म में लें, ठीक है, प्रॉन्स फिश और जैसे बटेरे होते हैं वो भी बहुत बहुत अच्छे होते हैं, तो वो बहुत बहुत आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और साथ ही कुछ हेल्दी आपकी स्किन के लिए टिप शेयर करना चाहूँगी कि जो गुड़ है ना उसे आप पानी में थोड़ी देर भिगो के रखें और उसमें थोड़ा सा लेमन और कॉफ़ी ऐड करके अपनी स्किन पे लगाएं, बहुत बहुत अच्छा अफेक्ट आता है, एक ब्राइटनिंग सा अफेक्ट जो है वो मिल जाता है। साथ ही आपकी पौधों की ब्राइटनिंग के लिए भी बता दूँ कि आप एक बाउल ले लें या कोई बड़ा सा पॉट ले लें, ठीक है, तो उसके अंदर आपने पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा चावल डालना है, थोड़ी सी हल्दी एलोवेरा एक काट के डालना है, उसे 2-3 घंटे पड़ा रहने दें, और उस पानी को ना स्प्रे बॉटल में डाल के अपने प्लांट्स में, अपने जो गार्डन में है ना वहाँ पे आप उनको स्प्रे करें, उनकी रूट्स में भी थोड़ा सा डाल दें, तो जो उनको जो बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है वो भी नहीं होता, उनकी जो रूट्स हैं वो भी थोड़ी सी फर्म रहती हैं, और आपके जो पौधे हैं ना जल्दी जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: Welcome back. This is your dose, your host, RJ Wajih Hasim. Program hai Ladies Lounge. And it's 12:05 p.m. in the studio. आपका मेरा साथ रहने वाला है ठीक एक बजे तक. हम निभाते हैं आपका साथ. तो जी कॉलर्स भी बहुत से हैं हमारे साथ. सबसे पहले कॉलर कौन है आज? अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम वालों. कैसा जी सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम कराता हूं. अस्सलाम वालेकुम वजह आसिम, कैसी हैं?
0: वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसी हैं? वेलकम टू द शो.
1: अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूं. आपका शो सुन रही हूं मैं.
0: शुक्रिया.
1: जो आपने पौधे के नाम लिए ना, मैंने थोड़े पौधे का मैं नाम आपको बता दूं. मैंने एलोवेरा लगाई हुई है, मनी प्लांट लगाई है घर में.
0: अच्छा.
1: के पौधे लगाए हैं और गुलाब के फूल के पौधे हैं. चमेली नहीं, मोतिया जिसको कहते हैं वो.
0: हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी
1: तो
0: बात है.
1: ये काफी सारे एक पौधा ऐसा, उसका नाम है फुहारा पौधा.
0: अच्छा अच्छा अच्छा.
1: तो फुहारे की तरह उसके पत्ते जो ना बिल्कुल फुहारे की शक्ल में.
0: अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है.
1: तो और काफी है, और गुले दोपहर जो जिसके फूल नहीं दोपहर को खिलते हैं. सुबह जब सुबह होती है तो वो खिलने शुरू होते हैं, जब
0: अच्छा
1: शाम होती है तो वो बंद हो जाते हैं.
0: अच्छा अच्छा अच्छा.
1: वाह, गुले दोपहर वो भी लगाई हुई है, बहुत प्यारे उसके फूल लगते हैं.
0: अच्छा अच्छा अच्छा. इस पौधे का मैंने वैसे पहली दफा सुना है. दोपहर को खिलना शुरू होते हैं और
1: सुबह को खिलना शुरू होते हैं तकरीबन 7-8 बजे.
0: अच्छा,
1: और जैसे जैसे शाम होती है तो वो बंद हो जाते हैं.
0: अच्छा अच्छा अच्छा. वाह,
1: उसका नाम है गुले दोपहर.
0: अच्छा अच्छा, सही हो गया सही.
1: बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी. ये तो अक्सर यहाँ में बाहर लगी होती है.
0: अच्छा अच्छा.
1: अच्छा
0: अच्छा, सही है सही है सही है सही है.
1: जो आप कह रहे थे कि मियां साहब, देखो बजे जी आने वाला वक्त का किसी को कुछ पता
0: नहीं होता.
1: बिल्कुल भी किसी को कुछ पता नहीं. हर माँ बाप जो है ना अच्छा ही देख के करते हैं. रिश्ते की बात कर रही हूँ, लेकिन आगे इंसान के कुछ नसीब होते हैं, कुछ अल्लाह की तरफ से होता है.
0: होता
1: तो
0: है.
1: कह रही थी ना कि मियाँ साहब दो तीन कुर्सियाँ छोड़ के पीछे होते.
0: नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब है कि ना मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही थी कि उनको होता है कि बस किसी तरह ये शो ना हो जाए कि जी मैं बीवी की बात मानता हूँ या उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से रहता हूँ. कि उनको होता है कि बस ये लगना चाहिए कि मेरा बीवी पे बहुत रोब है, लोगों में ये इम्पैक्ट आना चाहिए कि
1: यही मैं कहने वाली.
0: हाँ,
1: तो ये है कि वो और तो कोई नहीं, वालदा साहब कहना शुरू कर देते हैं ये तो बीवी के.
0: हाँ,
1: लेकिन मैं कह रही हूँ तो कह देते ये तो रन मरीज है, अपनी बीवी के मरीज होकर रह गया. जैसे बीवी कहती वैसे
0: मानते हैं.
1: मुझे माननी पड़ती है वालदा वालदा साहबा की भी, वालदेन की भी माननी पड़ती है, बीवी.
0: मेन पॉइंट जो है ना वो हमारा ये है जो मैं डिस्कस करना चाहती थी जाती हूँ कि जो लड़कियां हैं उनको एक रियलिटी चेक देना चाहिए. उन्हें बहुत ज़्यादा ना ख्वाबों की दुनिया में नहीं रखना चाहिए कि शादी के बाद ये बस. सिर्फ इतनी सी बात है कि उनको ना हकीकत पसंद बनाना चाहिए कि ये ना हो कि वो सोचती नहीं कि अगली दुनिया पता नहीं कैसी होने वाली है.
1: बच्चियों को ना हर काम जो सिखाना चाहिए माँ बाप को.
0: जी जी.
1: आगे जा के दूसरे घर में वो किसी की बात ना सुने.
0: बिल्कुल.
1: कुछ सिखाया ही नहीं इसको तो बच्चियों को सब कुछ हर काम आना चाहिए. बहुत अच्छा शो हमेशा की तरह.
0: शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
1: जी, अगर वो गाना जहाँ जेब का तेरा मेरा प्यार हो अमर.
0: जहाँ जेब का.
1: जी जी,
0: ठीक हो गया.
1: कर दोगी तो ठीक है.
0: ठीक है
1: बाकी. हाँ,
0: बिल्कुल.
1: हनी भाई को और फरी भी कोशिश कर रही होंगी हमारा.
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल. चले जी, बाकी लोगों को भी चांस दे देते.
1: दिन के नाम रह गए सबको. मैं तरह से बोल बहुत. अस्सलाम वालेकुम,
0: अल्लाह हाफिज़. जी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़. जी दी, ये दी शमीम, आप ही हमारी बहुत प्यारी सी कॉलर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जी आरजे वसीम अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया कहते हैं. वेलकम. रज़ा चौधरी हैं हमारे साथ, मंजूर सुल्तान है और सजाद अली लाडला हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. सद बिस्मिल्लाह जी आयानूस और सलाम, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हैं. जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. काफ़ी दिन बाद आपका शो सुन रहा हूँ, आपको सुन के अच्छा लग रहा है, सलामत रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और साइम तबस्सुम के मैसेजेस मैंने पहले भी शामिल किए थे. अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप?
2: अल्लाह ताला का आपके ٹھیک
0: ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی جی
2: ان شاء اللہ.
0: اچھا جی جی بالکل بالکل بالکل بالکل بہت ساری دعائیں ان کے لیے. اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اچھا صحیح ہو گیا.
2: ریسیپی بتا دو.
0: ہاں ہاں جلدی جلدی جلدی سے بتا دے. میں بھی فش کے بارے میں ہی بات کر دی کہ وائٹ میٹ جو ہے نا آپ کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنا چاہیے.
2: وائٹ میٹ سیزن شروع ہو گیا نا.
0: بالکل بالکل ایسا ہی ہے جی ایسا ہی ہے.
2: دو پہلے ایک وہ لہسن کی لے تو ساتھ ایک ٹماٹر لے چھوٹا
0: ٹھیک ہو گیا.
2: ایک چمچ اجوائن ڈال دے ایک چمچ پاؤڈر ڈالنا تو ذائقہ جتنی آپ نے ایک چمچ تھوڑا چائنیز نمک کا بھی ڈال زیادہ مزے کی ہو جائے گی.
0: صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا.
2: تھوڑا سا گھی ڈال کے مکس کر کے نا ذرا دھو کے نمک لگا کے ہو جائے تو یہ مسالہ جو ہے نا وہ اس کو لگا دیں. تھوڑا سا مسالہ ہم نے وہ کٹر کا کاٹ گے
0: بیسن والی فش بنا رہی ہیں ٹھیک ہو گیا. بالکل بالکل
2: پانی بھی ڈالے اور تھوڑا سا نا
0: صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا.
2: مسالے والی نا وہ
0: ٹھیک ہے
2: آلو کے کٹلز ہے وہ ساگ روٹی بنا لیں. میٹھے میں آج نا ساگو دانا بنا رہے ہیں دودھ والا ساگو دانا.
0: اچھا اچھا کیا بات ہے کیا بات ہے. یہ تو اکثر ہماری ماں نا چھوٹے بچوں کو دے دیتی ہیں ساگو دانا.
2: آج کل بڑے بھی کھا رہے ہیں وہ مزے کا لگتا ہے. ایک پاؤ نا ساگو دانا لے جو اس کو نا ابال لیں پانی میں
0: ٹھیک ہو گیا.
2: ڈال کے نا ابل جائے گا نا اچھی طرح وہ دانے تھوڑے موٹے موٹے پھول جائیں گے. تو ایک کلو دودھ لے کے نا تو یہ ابلا والے ساگو دانا نا اس کے اندر ڈال دیں. دو تین چمچ لائیں گے جب پتلا پتلا ہوگا نا تو اس کے اندر تھوڑی سی چینی ڈال دیں ایک الائچی ڈال دیں تھوڑا سا پینچ ڈال دیں چوڑے کا. یہ ٹھنڈا کر کے نا تو بول میں ڈال کے فریج میں رکھ دیں. جب بچے آئیں گے نا تو آرام سے کھا لیں گے. بڑی لائن لگی ہوئی ہے سب نا یاد کر رہے ہیں کہ فریج بند کرے تو ہم لوگ آئے.
0: چلے جی شکریہ.
2: وہ تو ہے وسیم بھائی کے لیے نا وسیم آر جے بھائی کے لیے بہت ساری دعائیں آر جے ڈوب کے لیے. تو دوبارہ پھر میں جاجم کے لیے بہت ساری دعائیں مانگی ہوئی ہے. ہمارے پیر ہیں ببر پیر ہیں
0: بالکل
2: شو کرنے کے لیے نا ادھر آئیں گے وان ون پہ آئیں گے
0: آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ.
2: اللہ حافظ ایمان اللہ
0: وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ جی. فیروز عالم جان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. کہتے ہیں نمبر ون آر جے وجیہ آزم نمبر ون شو نمبر ون ریڈیو اسٹیشن تھینک یو ویری ویری مچ. ریاض بھٹی ہیں ہمارے ساتھ کہتے ہیں بہترین ریڈیو شو آپ کا بہت شکریہ. محمد حفیظ ہم نے بکر سے جوائن کیا ہے. مصباح ملک کہتے ہیں بہت ہی کمال شو ہے آپ کا بہت شکریہ. اعجاز ارمان نے ہمیں بہت پیارے سے ایموجیز بھیجے ہیں ہارٹس بھیجے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ. فیروز عالم نے ہمیں جو ہے نا بہت پیارے سے پھول بھیجے ہیں. السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ؟
3: جی وعلیکم السلام. اپی میں نا جڑا کا ڈیر لگی پتھر امیر اپی فروکا بات
0: اپی ویلکم ٹو دی شو.
3: ارے نکاح سنی ہے کیا بات ہے مان داری گل دوبارہ بھوک لگ جاندی جو ہے ارے ہندی ہے نا.
0: اور نا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نا فری آپی کی کال کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ پہلے بتائیں گے پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے آج کیا بنانا ہے.
3: فری آپی کی کال آوے سن کے تو پھر ابھی کال کر لوں
0: کرنی ہے. بالکل بالکل
3: بہت اچھی ہے اللہ پاک کی بیٹی.
0: نہیں نہیں کبھی کبھی مجھے تو ہوتا ہے کہ ان کی کال سن کے نا پھر کھانا ڈیسائیڈ کریں گے بنانا کیا ہے.
3: ہاں بالکل بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کی بہت ساری دعا دھنیہ واد پروگرام ہے تو ون ون دے نال رہی دا. ایک میری ریکویسٹ ہے کہ سارے جان جم بھائی جن بھی کالر آدھے وہ خوشی دعا منگا اللہ سونا انہوں نے صحت دے.
0: بالکل آمین آمین اللہ تعالی نے جان سے تندرستی دے.
3: ہاں روپیہ شفیق نے کل دسیا ہے بھی جا بھائی طبیعت
0: بالکل
3: ان شاء اللہ سن رہے ہو گے
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ ਮਾਨ ਦੇ ਰੱਖੇ।
3: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼।
0: ਚਲੇ ਜੀ, ਹਮ
3: ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਹਿਸਨ ਖਾਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ।
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੇ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼,
3: ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼,
0: ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹਾਂਜੀ, तो जी सबने अब तक अपना खाना डिसाइड कर लिया होगा कि आज घर में क्या बनने वाला है। अच्छा, तो अब जैसे कि वेदर चेंज हो रहा है ना, तो मैं जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि बहुत से कॉलर्स भी जो हैं लाइंड अप हैं। आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो है ना ट्रेंड्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स, क्योंकि जब वेदर चेंज होता है यू हैव टू चेंज योर वार्डरोब अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो। तो क्योंकि गर्मियों में जो है, मैंने पहले बात की थी आपको थोड़े से लाइट कलर्स पहनने हैं, तो अब मैं बात करना चाहूँगी उन कलर्स पे जो कि इस मौसम के लिहाज से आपको पहनने चाहिए, ठीक है। और कुछ कलर्स ऐसे हैं कभी कभार होते हैं ना, आप अपनी बीवी के साथ थोड़ी सी आप उनके साथ मैचिंग करके पहनना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं आप एग्जैक्ट मैचिंग करें हमेशा। जो एक पिस्टैशियो ग्रीन कलर है वो आजकल बहुत बहुत इन है, उसके साथ ऑफ वाइट बहुत अच्छा जाता है। अगर आपकी वाइफ ने अगर पिस्टैशियो ग्रीन पहना है तो आप वाइट पैंट्स के साथ या वाइट शर्ट के साथ आप वो उसे कैरी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने पिस्टैशियो ग्रीन ही शर्ट या पैंट पहननी है। और जो कॉम्बिनेशंस मैं कह रही हूँ कि अगर आप शलवार आपके ट्राउज़र शर्ट में और ख़वातीन के ट्राउज़र शलवार कमीज़ में या आप पजामा सलाती हैं जो भी उसमें क्या होने चाहिए, स्किन कलर गोज़ वेरी वेरी वेल विद एमरल्ड ग्रीन और लाइट ग्रीन। ये सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ बदलते हुए मौसम के लिहाज से आजकल के जो टॉप कलर कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। ऑफ वाइट विद बेज, ग्रे विद ब्लैक, और वो जो ग्रे है वो चारकोल ग्रे होना चाहिए, इसके साथ जो है थोड़ा सा डीप ग्रीन जो कि ब्लैक के करीब ग्रीन होता है, नॉट एडमिरल ग्रीन, उसे कहते हैं ऑलिव ग्रीन, ठीक है। उसके साथ स्किन ब्राउन कलर जो है, स्किन ब्राउन कलर चॉकलेट ब्राउन कलर के साथ इट गिव्स अ वेरी वेरी रिच लुक। और ये ऐसे शेड्स हैं, देखें लाइट ब्राउन एंड चॉकलेट ब्राउन का कॉम्बिनेशन हमेशा हमेशा बहुत बहुत अच्छा लगता है, कभी आप ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि उसमें आपका जो ऑरा है ना वो ही चेंज हो जाता है। चलिए जी, ये कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई है जी, तो अभी कॉल आती है तो मैं लेती हूँ दोबारा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
4: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो।
4: मैं लाहौर से साजिदा बात कर रही हूँ।
0: हाँ हाँ साजिदा, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हो?
4: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक, जबरदस्त शो, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है।
0: थैंक यू।
4: मैं सबसे पहले इजाज़ भाई के लिए दुआ करना चाहूंगी, अगर सुन रहे हैं तो उनको अल्लाह तआला दे, उनको हमारे में दोबारा यानी कि वो शो करने आए, सेहत वाली जिंदगी दे अल्लाह तआला, और शो करने आए दोबारा।
0: आमीन आमीन आमीन, अल्लाह तआला उन्हें जल्द मुकम्मल सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, हम सबकी दुआएं उनके साथ।
4: जी जी बिल्कुल। और आप बेटियों के बारे में बात कर रही थी, पौधों के बारे में, तो मैं कहना चाहूंगी बाकी बेटियों को बताना चाहिए, मैं ना वो माओं को ना सिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, ख्वाब नहीं दिखाना चाहिए, जैसे पल पल पे उसको ये बताना चाहिए, हो सकता है वो इधर ज्यादा खुश होती है, आगे अल्लाह ताला उनकी किस्मत अच्छी करे, उनको ज्यादा दुख मिले, तो वो यानी कि उनको ना इतनी समझ होनी चाहिए वो कर ले जो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल
4: तो जहाँ तक मेरी और आपकी आवाज आ रही, मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूंगी।
0: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम,
4: आपके लिए बहुत दुआएं,
0: अल्लाह हाफिज। जी, तो एक होता है नाइस होना और एक होता है काइंड होना। तो देखिए काइंड हर इंसान एक दूसरे के लिए एक कहते हैं ना अच्छी नीयत रखता है, उसका भला करना चाहता है, लेकिन कभी कभार होता है ना आप जितना भला कर रहे होते हैं ना वो समझ लेते हैं लोग कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, तो इसलिए ना अपने आप को प्रूव करना छोड़ दें, कोई आपको बुरा समझता है तो समझने दें। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
5: वालेकुम सलाम
0: जी, वेलकम टू द शो। जी जी जी, कैसे हैं आप?
5: अल्लाह ताला शुक्र है बाजी, पहले ताला सारे दिन वन वन से चल रहे थे, पता नहीं की वजह हुई, तू ही नहीं आ रही है, साडी कोई गलत फहमी,
0: क्या क्या क्या हो गया? अब
5: पहले सारे दिन वन वन पे चलते थे हम कानों पे,
0: अच्छा
5: अब कुछ ना रुकावट हो गई, पता नहीं
0: अच्छा, चले जी इसको भी चेक कर लेते हैं। लेकिन देखिए हम तो जो है ना, मैं तो आ रही हूँ और हमारे जो रेगुलर आरजेज हैं सब लोग जो है ना अपने शो पे पहुँच रहे हैं, तो फिर भी आपकी जो रिक्वेस्ट है हम फॉरवर्ड कर देंगे आगे। और क्या कहना चाहेंगे आप?
5: बहुत अच्छा शो सर, ये खाने खुने के बारे में तो बाजी नसरी ने बताया ना हमको, तो एक लफ्ज़ याद नहीं रहा क्या चमचा डालना कैसे
0: हम। अच्छा, सही है।
5: ये तो और तो काम बाजी मैं फरमाइश कर रहा हूँ, अब्दुल हमीद आए थे उनके नाम लगाना है, आवाज मसूद राणा रोना लेना, भीगी भीगी ठंडी हवा, मौसम है दीवाना और मौसम बदल रहा है, सुना दो तुम।
0: अच्छा, अब्दुल हमीद को डेडिकेट करना है।
5: अब्दुल हमीद को
0: कौन सा गाना दोबारा बताए?
5: भीगी भीगी ठंडी हवा, मसूद राणा रोना लेना।
0: अच्छा, ठीक है जी,
5: दीवाना दीवाना।
0: ठीक हो गया जी, ठीक हो गया,
5: डग पता जाएगा बाजी, फिर मैं तेनों रुपया ने ढेर ला देंगा।
0: अच्छा जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज जी। ये थे हमारे बहुत प्यारे से कॉलर, तो मज़ीद आपके जो कमेंट्स हैं मैं साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करती रहूँगी। अभी बहुत सी कॉल्स ले ली है, अब मुझे लगता है बनता है कि मैं एक छोटा सा जो है ना एक ट्रैक प्ले करूँ। ओके, तो आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए FM 101।

0: जी वेलकम बैक, मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे वजीहा आसिम। हमारे साथ है एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मलाखेल बात कर रहा हूँ लाहौर से।
0: जी जी वेलकम टू द शो, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: थैंक यू वजीहा।
0: जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच।
1: और आज आपको टॉपिक क्या है थी?
0: आज हम बात कर रहे हैं, एक तो हमने कुछ पौधों के बारे में भी बात की, लेकिन बेसिकली मैं ये बात कर रही हूँ कि लड़कियों को ना थोड़ा सा हकीकत पसंद बनाना चाहिए। उनको बहुत ज़्यादा ऐसा ही नहीं रखना चाहिए कि जी आप शादी के बाद ये हो जाएगा, कोई बहुत शहजादा आएगा और तुम्हें घोड़े पे बैठा के लेके जाएगा। तो मतलब थोड़ा सा हकीकत पसंद रखना चाहिए कि लाइफ जो है वो टफ भी हो सकती है, अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: अगर आप उसी में शहजादा ये होएगा फलाना होएगा, इसी अंदर एक खौफ होएगा, जब वो शादी हो जाएगी फिर उसके साथ बहुत ज्यादा खौफ वगैरह होएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: गलत बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है।
1: हमें उसको समझा देना है, फिर उसको दिल बड़ा कर देना है, जिसको कोई टेंशन नहीं है बड़ा है, आप जब उसकी शादी हो जाए आप ताजमहल में देख जाओ, जब इसकी तरह बातें सुनाए ताकि उसको फिर दिल लगेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, सही है, सही है। चलिए जी आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया।
1: और शो भी माशाल्लाह जबरदस्त है और बहुत ज्यादा प्यारा करते हैं,
0: ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मलाखेल जो है ना बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और हमेशा बहुत अच्छी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें कहाँ से?
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम,
2: खान बाबा बोल रहा हूँ।
0: जी जी वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप?
2: थैंक यू वेरी मच। मैं तो स्वागत को आज हूँ, आपकी ट्रांसमिशन नहीं आ रही है, टॉपिक क्या?
0: अच्छा अच्छा, कहाँ से आप कहाँ से सुन रहे हैं जो आपको ट्रांसमिशन नहीं आ रही?
2: कोहाट।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है।
2: पहले लाहौर डिफेंस में था ना।
0: अच्छा अच्छा, अब आप शिफ्ट हो गए?
2: नहीं बस एक डेढ़ दो महीने के लिए मैं आता हूँ ना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: वहाँ तो आग बरस रही है ना, इधर तो कंबल में सो रात को।
0: अच्छा अच्छा। सही हो गया सही हो गया।
2: बेटा क्या टॉपिक है?
0: अच्छा आज हम बात कर रहे हैं कि जो जो आपकी बेटियां बहनें जो भी हैं उनको थोड़ा सा ना हकीकत पसंद रखना चाहिए, जैसे उन्हें बहुत तो है ना जैसे उतने भी सुहाने ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए कि शादी के बाद जो है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा कि कोई बड़ा शहजादा।
2: वो बात आपकी बिल्कुल बजा है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ये बेटियां बेटे देखें, ये जो बड़े होते हैं घर में वालदैन किस लिए होते हैं? ये इसीलिए होते हैं कि अपने से छोटों को ऐसी तरबियत दें ताकि जब ये हमारे स्टेज पे आ जाएं तो वो अपने बच्चों को ऐसी तरबियत।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: सबसे बड़ी बात यह तरबियत, एक झूठ नहीं बोलना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: बच्चों को बीच में बिठा कर वो आपकी बातें सुने कि मेरे वालदैन मेरे बड़े क्या बोल रहे हैं,
0: बिल्कुल
2: आगे
0: बिल्कुल,
2: क्या एडवाइस कर रहे हैं,
0: बिल्कुल
2: वो
0: बिल्कुल।
2: फैमिली जाकर कामयाब
0: होती है बिल्कुल,
2: वरना आजकल तो बस मैं आपको क्या बताऊं, जो लाहौर के हालात मैंने देखे हैं हर तरफ ये है, एक लाहौर में नहीं कहता हूँ, एक लाहौर में नहीं कहता हूँ, हर तरफ हालात ऐसे हैं, लेकिन ये वालदेन का फर्ज
0: है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
2: बेटा, आपको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान करे, मेरी दुआएं आपके साथ।
0: चले जी शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत,
2: अल्लाह।

0: लाफिज। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये नो डाउट पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है ना बच्चों को समझाएं करें और उनके साथ एक दोस्ती का जो माहौल है ना वो बना के रखें। ये बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स तभी ही जो है जो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं ना वो तभी जन्म लेती हैं जब आपको पता ही नहीं होता कि आपका बच्चा या बच्ची किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको आजकल उनके जहन में क्या कशमकश चल रही है, वो किसी से कह नहीं पाते। तो आजकल के बच्चे ना वो कह नहीं पाते हैं और बस वो या उनको होता है कि मैं अम्मी को कहूँगा या अब्बू को कहूँगा तो वो डांट देंगी या उनको बुरा लगेगा या उनको होगा कि नहीं नहीं ऐसा ही नहीं करना। तो इसलिए एक दोस्ती का माहौल बनाए रखना ना उनके साथ बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें जब वो आपसे एक दोस्त बन के रहेंगे ना तो वो आपको बताएंगे जी मैंने ऐसे करना है ऐसे ही नहीं करना, मैं ज़िंदगी में ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो एक दोस्ती का बॉन्ड जो है ना आपको एक दूसरे से करीब रखने के साथ साथ बहुत से मसले भी हल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको शर्म आ रही है, आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते या आपको आपके मिजाज के ख़िलाफ़ है, उन्हें पता है जी आप कह देंगे कुछ होता ना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता हमारे घर। तो ऐसी बाउंड्रीज़ जो है ना अपने बच्चों पर लागू मत करें, उनको थोड़ी सी फ्रीडम दें। और फ्रीडम इसलिए भी एट टाइम्स नहीं देते कि हम उन पर इत्तबार नहीं करते, उन पर हम ट्रस्ट नहीं करते। तो कोई बात नहीं, कोई गलत काम कर लेंगे, कुछ गलत हो जाएगा, तो आज का गलत किया हुआ ना जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो बेहतर है कि कल के गलत काम से, जहां वो आगे जाके बहुत बड़ा कदम उठा लें जहां जाके। तो अभी आप उनके करीब रहें, उनको थोड़ा सा आप, बात ये है करीब रहने के लिए जो मैं कर रही हूँ करीब रहना क्यों ज़रूरी है, उनको एक कम्फर्ट जोन देना ज़्यादा ज़रूरी है, उनको एक कम्फर्टेबल जगह है, कम्फर्टेबल पीस ऑफ माइंड देना ज़रूरी है कि उन्हें पता हो कि जी कोई हमारी बात सुनने वाला है, कोई हमें समझने वाला है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो।
1: खुशामदीद मोहतरम आरजे जिया हसन साहबा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं
0: जी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
1: अल्लाह पाक करें, बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके लिए। बहुत मौसम से वास्तव में गुलशन रेडियो पाकिस्तान FM 101 लाहौर, और आप रेडियो पाकिस्तान FM 101 की सुपरस्टार हैं, विनर हैं, कामयाब हैं और VIP आरजे हैं।
0: थैंक
1: यू। लाहौर के लिस्टनर हैं रियाज भट्टी साहब, रमजान भट्टी साहब, उसको उनको और सबको मलिक सीमान मुंडा सियालकोटी की तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके लिए, सबके लिए माशाल्लाह।
0: चले जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: और आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, यकीन करके जाने आपको सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता है और मेरी हाथ भी लगाए सियालकोटी की तरफ से।
0: चले जी ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी, लगा ली पक्की पक्की लगा ली।
1: और हमारे जो है ना अपना लिस्टनर क्लब के ओनर हैं लियाकत अली साहब, उनको उनसे मैंने बात की थी आपके बारे में, वो कहते हैं कि वजीह हसन साहब के साहबा के बारे में कुछ वजात कर। मैंने उनको बताया कि वजीह हसन साहबा जो है ना उनकी जो आवाज़ है बहुत खूबसूरत है और उनकी कारकर्दगी शानदार है, खुश अहलात और खुश मिजाज है माशाल्लाह।
0: अच्छा अच्छा।
1: और जब उनको मैंने पहली दफा सुना और मैंने काफी अरसे बाद जो है ना अपने कजन को कॉलिंग की थी और मैंने इतना खुश हुआ कि मैंने सबको कॉलिंग की और सबसे मिला और मेरी दावतें हुई आपकी बदौलत।
0: चले
1: और जो चीज मुझे मिली आपको सुनकर, अल्लाह पाक आपको आपकी फैमिली को, जो लोग आपको सुनते हैं उनको उनकी फैमिली को वो खुशियां नसीब फरमाए, बहुत सही दुआएं।
0: आमीन आमीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इतने खलूस का, इतनी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी जी, एक हफ्ते में एक दिन होता है प्रोग्राम, मैं तो ये कहता हूँ कि आप दो तीन दफा प्रोग्राम किया करें, आप अपनी मैनेजमेंट से बात करें कि हमारे लिसनर को कहते हैं कि आपका प्रोग्राम अच्छा होता है और आप कोशिश करें कि दो दफा हफ्ते में लाजमी आए माशाल्लाह,
0: क्योंकि
1: आप जी जी जो
0: मैनेजमेंट ने सुन लिया होगा तो मेरा ख्याल है इस पे कुछ अमल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमें साथ ही आतिफ अली का हमें मैसेज आया है, कहते हैं जी आसिम जी वो कौन सा मोबाइल है जिससे कॉल लग जाती है? जी देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबकी बैक टू बैक कॉल ले रही हूँ, इंशाल्लाह आपकी मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वेलकम टू द शो।
2: बहुत शुक्रिया।
0: हाँ जी एहसन खान, कैसे हैं आप?
2: बिल्कुल पहचान लिया आपने, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपने मुझे एक दफा वादा किया था कि आप तरह की के अल्फाज लिख के भेजे, मैं बोलूँगी।
0: हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
2: मैंने आपको सुना है, एक दफा ना आपने सॉन्ग लगाया, आज भी लगाया, चढ़ के मुसल्ले साथ माना दे चले, जरा इसको गुनगुना के आप
0: चलिए ठीक है जी, अगली दफा थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आऊंगी ताकि जरा अच्छे तरीके से आपको सुना सकूं, ठीक है ना?
2: नहीं तो फिर आप उस दिन तो गुनगुना रही थी ना साथ में।
0: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
2: आज भी आपने प्ले किया है, बहुत प्यारा सॉन्ग।
0: हाँ ये मुझे बहुत बहुत पसंद है, बिल्कुल इसका जो मतलब है ना मुझे बहुत पसंद है।
2: अच्छा तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई आरजी आके इस तरह गुनगुनाता है तो फिर हमारी सह की लैंग्वेज को बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ कि जो हमारी सराइकी ज़बान है, जो हमारी जितनी भी जो सूफियाना कलाम है इसको आगे बढ़ाया जाए ताकि लोगों को पता चले इसके बारे में।
2: इस सॉन्ग की जो रूह है ना वो भी एक मियां बीवी की शक्ल में है कि मैं बिल्कुल आपको इतबार देती हूँ और इस तरह
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
2: एक दूसरे के साथ अहद इकरार हो रहा है कि आप हमारा साथ देंगे, मैं आपका साथ,
0: जी जी जी,
2: मुश्किल में हर तूफान में टकराने के लिए हम तैयार हैं, अगर आपस में एक प्यार मोहब्बत हो जी सब कुछ है
0: जी,
2: और फिर कसम क्या खा रहे हैं कि चढ़ के मुसल्ले, मुसल्लस रहे की जबान का लफ्ज़ है ये, जा नमाज जो होती है
0: जा नमाज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो फिर आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे, तो बहुत ही एक समझने अच्छा सॉन्ग है
0: बिल्कुल।
2: तो पौधे जो है, पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी है, और अभी भी मैं पौधों की छाओं के नीचे
0: बैठा हूँ, क्या बात है क्या बात है, फ्रेश ऑक्सीजन जो है ना, देखे ये जो लाहौर में तो देखे हम लोग भी बहुत,
2: आपको ये सरप्राइज ये दे रहा हूँ कि मैं लाहौर में एक छत के ऊपर बैठा हूँ, साथ में पौधे लगाए हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
2: नीचे एलोवेरा मेरे बिल्कुल करीब है, काफी लगी हुई, अगर बाइक में जाइए हो तो
0: क्या बात है, तो आप लाहौर आ गए खैर से। हाँ
2: मोतिया लगा हुआ है,
0: वाह मोती की खुशबू भी बहुत खूबसूरत होती है,
2: ग्रीन चिली या सब्ज मरच
0: खुशगवार होती है,
2: और इसके साथ वो न्याजबू लगी हुई है, इसके साथ गुलाब लगा हुआ है,
0: और न्याजबू वाकई न्याजबू बहुत अच्छा पौधा है, न्याजबू अगर आप अपने घर में बाग में लगाते हैं तो उसे जो मच्छर है ना, जो मच्छर या इस टाइप के जो भी आपको जो काटने वाले जानवर है वो भी कम आते हैं उस जगह पे जहाँ पे ना हो न्याजबू का पौधा लगा।
2: मैं पत्ते तोड़ के ना ऐसी जब छत पे आता हूं तो एक दो तोड़ के फिर उसको धो के फिर वो चबाना शुरू कर देते हैं, बड़ा मजा आता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
2: पुदीना लगा हुआ है, इसी तरह हमने काफी सारी इनके वैरायटी,
0: क्या बात है क्या बात है, तो आपके पास तो काफी चीजें घर में ही मौजूद है।
2: हां छत के ऊपर हम लगाई हुई है, ऊपर साया भी कुछ बनाया हुआ है, कुछ ओपन है तो वो
0: सही है।
2: काल में लंबी हो रही, लेकिन टॉपिक में मैं यही कहता हूँ कि बिल्कुल हमें अपने बच्चों के साथ, अपनी बहनों के साथ ये चीज़ पहले ही समझानी चाहिए होती है कि आगे जाके मुश्किलात भी आनी है और अच्छे माहौल भी होते हैं, बाद अच्छे घर होते हैं और फिर उसके बाद वो मुश्किलात में चले जाते हैं, तो हर फेस इंसान को फेस करना आना चाहिए,
0: आना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल।
2: और एक बार मैं ये कहूँगा कि अगर आपको दो शो भी मिल जाए ना हफ्ते में,
0: जी जी जी,
2: तो रजा भाई की कॉल फिर भी नहीं मिलनी
0: नहीं मैंने आज
2: किस तरह मिला जाते हैं जब भाई की कॉल को इग्नोर किए जाते हैं।
0: नहीं नहीं देखिए हमें तो देखिए यहाँ पे किसी का नंबर शो नहीं हो रहा, कौन से नंबर से आ रही है क्या आ रही है हमें तो कुछ भी पता नहीं चल रहा, ठीक है, बस जो जो कॉल्स आ रही है साथ साथ हम लेते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं बल्कि मेरे से एट टाइम्स बहुत एतराज़ भी होता है कि साथ साथ जो है ना मैं कॉल्स ज़्यादा भी ले लेती हूँ इसीलिए कि सबको मौका मिल सके।
2: नहीं अब ज्यादा तो नहीं लेती, ये तो बात अब छोड़े, गुलाम भी यार जी हमारे बहुत ही काबिल इज्जत और रिस्पेक्टेड हैं, वो जब आधे घंटे में यकीन कीजिए 20-25 साले ले जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
2: ये बात आप ना
0: करें। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए ठीक
2: है, बहुत रिस्पेक्टेड हैं, काबिल इज्जत हैं, अच्छे आते हैं, वन ऑन वन है, लेकिन कॉल लेने के सिलसिले में हिसाब से आगे गुलाम।
0: अच्छा चलिए ठीक है जी, चलिए अब हम भी ना ज्यादा से ज्यादा जो है ना,
2: मेरा सलाम,
0: चलिए जी,
2: और मेरी भी दुआ है कि किसी जादू की तरह रजा भाई की कॉल मिल जाए,
0: मिल जाए, आमीन आमीन आमीन।
2: तो मेरा था कि आज मैं खरगोश पे बात करता लेकिन टाइम बहुत कम है,
0: आज क्या करता मैं
2: वो खरगोश के बारे में।
0: अच्छा अच्छा नहीं नहीं चलिए ठीक है, अब कॉल बहुत लंबी हो रही है, टाइम भी शो का कम है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। हाँ जी बिल्कुल, और आरजे वसीम अहमद ने कहा है सुपर शो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिसबा मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, और लिसनर क्लब साहिवाल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं प्ले करने जा रही हूँ एक ज़बरदस्त सा ट्रैक, और चलिए जाते जाते जल्दी से एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम बेटा, आपको तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
3: मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ लाहौर से।
0: जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे?
3: बड़ा कुछ कहना है, फोन ही। अच्छा, एक तो ज़िया साहब की अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता करे, जल्दी जल्दी आके प्रोग्राम करें अपना।
0: आमीन आमीन। अपना नाम बताएं दोबारा, अपना नाम बताएं।
3: जिया, क्या नाम है उनका, जिया अंजुम साहब?
0: नहीं, अपना नाम, मैंने कहा अपना नाम दोबारा बताएं।
3: मेरा नाम मोहम्मद सलमान भट्ट है, लाहौर से। मेरी पहले भी आपसे एक दो प्रोग्राम में बात।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। जिया के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से तंदुरुस्ती अता फरमाए।
3: आप लोग यकीन करें, आप जितने भी आ जाए ना, आते हैं ना, तो सुस्ती दूर हो जाती है, सब चीज एक्टिव हो जाते हैं। आप अल्लाह पाक आपको इसी तरह हिम्मत ताकत दे ही रखे।
0: आमीन आमीन।
3: लोगों को एक्टिव कर देती हैं, एक्टिव।
0: चले जी, आई फील ऑनर्ड, आई फील ब्लेस्ड, आपका बहुत शुक्रिया।
3: मैं ऑफर?
0: नहीं नहीं नहीं, ऑन एयर कॉल है आपकी, ऑन एयर,
3: क्योंकि मैं अब तैयार हो गया हूं, ज्यादा मेरी ऑफर ही मिलती है।
0: ठीक है जी, ठीक है।
3: मैं तो अब ये समझता हूँ शायद टायर बंदों की ऑफर मिलती है, जब गाना लगा अपना फिर मेरा फोन मिलते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं नहीं, अभी आप ऑन एयर है।
3: चलो मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। चले जी, यहाँ पे एक जबरदस्त ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए, और आपने कहीं नहीं जाना, संतरी FM 101।

0: जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। कौन है हमारे साथ?
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो। कौन है हमारे साथ?
1: जी,
0: क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं कुछ नहीं कहूँगा, फिर वही कालो जिला करते हैं।
0: नहीं देखिए, अब आपको मौका मिल ही गया है तो देखिए मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और देखिए एक इंसान ने जो इतनी एफर्ट की होती है कि मैं जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी ना, हर लम्हा हर वक्त जो है ना आपको उसकी कदर करनी चाहिए। तो जो लम्हे आपको मैसर हो गए हैं उसका फ़ायदा उठाइए। तो अपने इतने लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
1: मैंने तो आपको पहले कह दिया कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाद में भाई मेरे बहन भाई आते हैं, वो कहते हैं जाल बात गलत करके गए।
0: नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जी। लोगों से डरना छोड़ दें, लोगों ने कभी खुश नहीं होना, ठीक है ना?
1: बात ये देखो, आपने खुद बात की लोगों ने खुश नहीं होना।
0: हाँ,
1: ये लोग भी तो हमी है, कोई और तो नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: अगर मैं नहीं खुश हूँ तो बात हमेशा अपनी करनी चाहिए, अपने से आपसे बुनियाद रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: ठीक है, मैं प्रोग्राम तो नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन वक्त क्योंकि मैं इधर लाहौर ही आया हुआ था, काला सही मोड़ पे खड़ा हूँ।
0: अच्छा,
1: मैंने कहा चलो भाई आज करीब हो के सुनते हैं आवाज कैसी लगती है।
0: तो कैसी लगी आपको आवाज?
1: तो सही आवाज आ रही है, उधर तो नेट पे सुनता हूँ ना।
0: अच्छा,
1: खुद ही ट्यून किया हुआ है।
0: अच्छा, चले ठीक है।
1: 3-4 दिन उस दिन मेरी बात की थी उनको, भाई सलाम है मेरी तरफ से, सलूट है छोटी बहन हमारी।
0: बिल्कुल।
1: आप तो बड़ी है ना, मैं आपको तो बड़े बड़े लोग हैं।
0: ठीक हो गया,
1: सुनने वालों को मेरी सलाम, बहुत अच्छा प्रोग्राम।
0: वालेकुम अस्सलाम। चले जी, आपको लाहौर कैसा लग रहा है? आपको लाहौर कैसा लग रहा है? आपको
1: लाहौर अच्छा लगा, तकरीबन आता तो लाहौर हूँ, लेकिन रोजाना ही आते हैं 1-2 दिन के बाद ना, रोजाना अच्छा लगता है बदामी बाग का।
0: अच्छा, सही है।
1: आज थोड़ा टाइम मिल गया, कुछ काम था इधर।
0: अच्छा, चले सही है।
1: जो आपका शो भी शुरू हो गया, मैंने कहा चलो अभी आज लड़की ने इधर ही पकड़ लिया।
0: चलिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
1: बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा लगा आपसे, सब सुनने वालों को मेरा सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी। और साथ ही हमें ना अब्दुल हमीद ने हमें फरमाइश की थी भीगी ठंडी हवा गाने की, तो आपकी फरमाइश जो है हम पूरी करने जा रहे हैं। तो हियर्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, भीगी ठंडी हवा कमिंग योर वे।

0: जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है, मैंने कहा प्रोग्राम का टाइम बहुत कम रह गया, तो साथ साथ आप लोगों की कॉल्स का सिलसिला भी जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी जी जी, अपना नाम बताइए। अच्छा, रजा चौधरी, वेलकम टू द शो।
1: शुक्रिया,
0: लग ही गई, बिल्कुल बिल्कुल, आखिरकार देखिए जी, तो क्या बात है। चलिए जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं शो में।
1: जी जी, के आप लोगों की सब आगे की मोहब्बत है कि अपने मोटिवेट करते हैं। सबसे पहले जिया भाई के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह पाक उनको दे दे अच्छी, जो जो भी मतलब चल अल्लाह पाक उनकी परेशानियां जो बीमारियां दूर करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो आपके लिए और आपकी पूरी मेंबर के लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको फिर कामयाबियां दे और मेरी कार मिल जाएगी,
0: ये भी मैं क्या ही बात है, क्या ही बात है, ऐसा भी होता है,
1: होता है, लोग होता तो नहीं है लेकिन जो आज का माहौल ना मानते हैं ऐसा हो जाता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: वो कहते हैं ना कि सबका ख्याल है काला ही बकरा और भी कलर का ही चलता है, काला क्यों चलता है।
0: अच्छा अच्छा, चले जी रजा चौधरी, अभी बहुत कम टाइम है, ठीक है, 6 मिनट रह गए शो में और आपका बिल्कुल सही टाइम पे कॉल लगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल,
1: अगर वो क्योंकि आजकल वो बड़ा तेज दौर है कि अगर हम जबरदस्ती कोई काम भी करेंगे ना उसका जो रिजल्ट है वो गलत निकलेगा।
0: बिल्कुल, सही बात है, सही बात है। देखिए, और जब कोई इंसान ना अपनी खुशी से कुछ करता है ना, ठीक है, अपनी खुशी से कुछ करता है ना, तो वो उसको निभाने की पूरी कोशिश भी करता है, ये भी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल,
1: में क्या लिखा चीज पता, एक कोशिश करना चाहिए कि ऐसे ही करें। बाकी ये ऐसा भाई की अब्दुल्ला पीरबर्ती वाले की और फरी अली की काबिश कोशिश जो हौसले देते रहे आज शो में, कभी तो आपकी कार मिलेगी
0: मिलेगी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखें और बहुत से कॉलर्स हैं ना, वो हमेशा खुद भी कोशिश करते हैं कि जल्दी से जो है ना अपनी कॉल ख़त्म कर दें ताकि बाकी लोगों को जो है ना मौका मिल सके।
1: अल्लाह माफ़ी दे, कुछ बात इधर का नाम लेना चाहते नहीं है, वो 5 मिनट में तो आपका तारम करते जाते, गाड़ी में वो पक्की बेचने वाले आ जाते हैं ना, वो पहले आपकी चीज की तरीफ करेंगे, 3-4 मिनट वो ऐड चलाएंगे, ऐसे कुछ कॉल रहते थे ऐड करें, मैं इसलिए आज कॉल कभी कर रहा हूँ कि मेरी 6 महीने कॉल नहीं बनता है।
0: सही है सही है सही है। अच्छा, तो वो जो असल में ना हर इंसान जो है ना अपने हिसाब से सही ऐसे ही कर रहा होता है, जैसे अब अपनी हर एक इंसान जिस जगह पे खड़ा है ना,
1: जो बंदा वो करता है जो ऐसे तरीके करता है, मैं उनको दिल से जानता हूँ।
0: अच्छा,
1: मैं अगर मित्र मैं हूँ, अगर मैं जो मर्जी बात करता हूँ, जो सामने वाला मुझे जानता है वो कहीं कहीं झूठ बोल रहा है, मुझे तो पता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: अगर मेरी किसी को बात अच्छी ना लगे तो हाथ जोड़ के मार रहे, अगर मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी कोई गाल का काल का चला का मेरे पाल लो।
0: सही बात है, बहुत खूबसूरत बात की आपने कि फड़ लो। हाँ, तो अच्छा जी, ये थे हमारे बहुत अच्छे लिसनर, बहुत अच्छे कॉलर, और आपके जो हमारे सारे जो सब लिसनर्स हैं ना, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमारे शो में 4 चांद लगा देता है। अकबर हयात का हमें मैसेज आया है, उन्होंने कहा है जिंदा दलाने लाहौर की आवाज़। जी हाँ मैम, थैंक यू वेरी वेरी मच। और रजा चौधरी ने हमें बहुत से मैसेज भेजे हैं, इफ्तिखार अहमद ने भी हमें मैसेज भेजे हैं, कहते हैं ब्यूटीफुल वॉइस, और उन्होंने हमें बहावल नगर से ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी जो है ना आगे बढ़ती रहती है और हम ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ऐसे जब तक निपटने का तरीका सीखते हैं ना तब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ज़िंदगी में कुछ टाइम अपने लिए अपने प्यारों के लिए ज़रूर निकालें, और ज़रूर जो हम ये समझते हैं ना कि घूमने फिरने जाना जो है ये बहुत पैसे लग जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए कुछ अरसे बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि कितने पैसे लगे थे, लेकिन जो यादें खूबसूरत बनेंगी ना। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करें, कहाँ से?
1: नुमान बात कर रहा हूँ, लाहौर से।
0: जी नुमान, क्या कहना चाहेंगे?
1: आपके शो में जिंदगी में पहली दफा कॉल कर रहा हूँ, एफएम सुन रहा था तो
0: अच्छा
1: मेरा भी दिल किया कॉल करने में। 86 कॉल की हैं, 87 भी कॉल आपकी अभी।
0: अच्छा जी, चले जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका मिल गया। नुमान आपका नाम है, आपको दोबारा से वेलकम करते हैं और आपके हार्ड वर्क को सलूट। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को मेरी माशाल्लाह दो बेटी हैं।
0: अच्छा ठीक
1: है, पढ़ाए लगाए अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का रोशन बनाए। और मेरी ना 39 साल से सैलरी है,
0: अच्छा,
1: मैं अपने बच्चों को भी चला रहा हूँ,
0: अच्छा,
1: घर वालों को भी खुश रखता हूँ, सबको खुश रखता हूँ, कोशिश करता हूँ सबको खुश
0: खुश रखूँ,
1: लेकिन मुझे कोई नहीं खुश रखता।
0: तो आप बस FM 101 सुना करें, ठीक है ना? हाँ, आवाज़ एफ एम 101 सुना करें। और देखें, लेकिन आप देखें जितना लोगों को देते हैं ना, जितना आप खुशी और जो भी आप लोगों को देंगे ना, यकीन जानिए मेरी बात याद रखिएगा, लौट के आपके पास आएगी ज़रूर वो खुशी, वो मसरत, जो आप पीस जो लोगों को देते हैं ना, यू गेट व्हाट यू गिव। अगर आप इज्जत देते हैं तो आपको इज्जत ज़रूर मिलेगी, और अगर आपके पास अगर आप नहीं देते ना तो आप दे के देखिए वो चीज़ लौट के वापस ज़रूर आती है आपके पास।
1: आपके डॉक्टर बसरा साहब हैं कोई?
0: जी जी जी,
1: एफएम 101 के।
0: जी जी।
1: तो जब जंग लगी हुई थी ना 2023 में मेरे ख्याल से,
0: अच्छा अच्छा,
1: तो सुबह 6 बजे के टाइम पे ना उनकी गुफ्तगु सुन रहा था, तो मुझे बड़ा फोन हुआ, मेरी ख्वाहिश है कि किसी दिन मैं उनसे मुलाकात करूं।
0: ठीक हो गया जी, ठीक हो गया,
1: अल्लाह ताला ने चाहा तो शायद मुलाकात हो ही जाए,
0: हो ही जाए।
1: एफएम 101 पाकिस्तान, एफएम 101 के बाहर जिनसा ना पाकिस्तान रेडियो चैनल के बाहर घूमता रहता हूं, फिरता रहता हूं, शायद
0: नहीं आप ज़रूर हमको रखेंगे अपने लिसनर्स के साथ भी। अच्छा नुमान, आप प्रोग्राम का टाइम जो है ना ख़त्म होने को है, ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में, सेम टाइम सेम शो, तब तक अपना बहुत ख़ास ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि अगर आप खुशियाँ बांटेंगे तो आपके पास वापस वो लौट के ज़रूर आएंगी। अल्लाह हाफिज़।
2: सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हैज़ कंडेम्ड द हिनेस अटैक्स कैरिड आउट बाय द हूती ग्रुप अगेंस्ट द सिटी ऑफ मक्का एंड द मदीना रीजन। Pakistan and China have agreed to enhance cooperation in police training exchange programs and in modern technology and equipment. China has called for a fresher, more equal approach to resolving international tension.
3: This is FM
4: 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: nuestro.
1: Big Radio, Big Style. FM 101.

0: Hi, this is FM 101.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर, तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
3: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
4: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
5: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
6: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
7: कुंबे की तश्कील में बच्चों
8: के साथ डिजिटल परफेक्शन 28 इयर्स ऑफ प्योर साउंड लोकल स्टोरीज एंड नॉनस्टॉप म्यूजिक एफएम 101 द वॉइस यू ट्रस्ट।
9: दिस इज 101% प्योर। यू आर ट्यून्ड इनटू द वन अबव 101

0: जुलूस इज वेलकम बैक सुन रहे हैं आप स्माइल एंड डायल विद सदफ रानी. मेरे प्रोग्राम का एक ही असूल है, मुस्कुराते हुए आपने मेरे प्रोग्राम में कॉल करनी है, कोई गिले शिकवे नहीं.
1: Big Style Music. Please, FM 101.

0: Big radio, big style. Please, please. FM 101.
1: Metil.

क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन कौन हमारा अपना है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, उसने लिख कर भेजा है वक्त मिला तो सोचेंगे। और मौसम खुशबू बादे सबा, चांद शफक और तारों में, मौसम खुशबू बादे सबा, चांद शफक और तारों में, कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला सोचेंगे। और या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे।

Big radio, big style. Music. Please, FM 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines.
1: सुपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी को छोटे और दरमियाने दर्जे की सनअतों के लिए माली मुआवनत की जामे हिकमत अमली वज़ा करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमत के दिफा के लिए उसके शाना बशाना खड़ा है। इस्लामी ताउन तंजीम ने हौसी ग्रुप की जानिब से मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के इलाके पर किए गए घिनौने हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान और चीन ने पुलिस की तरबियत के तबादले के प्रोग्रामों और जदीद टेक्नोलॉजी और आलात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर ने मसनूई जहानत समेत उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। और चीन ने बैन अल-अक़वामी कशीदगी के हल के लिए नए और मुसावियाना तर्ज अमल अपनाने पर जोर दिया है।

0: high school kids.
1: This is FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: क्या कह रहे थे तुम, एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर, एक दिन एक घंटा।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। देखे तो जो इधर

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी, सोचो कि

धक सा गया और चुप हो गया, मैं धक सा गया और चुप हो गया, मैं धक सा गया और चुप हो गया, मैं धक सा।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: और अब वक्त है कमर्शियल ब्रेक का।
2: तमाम सुनने वालों की खिदमत में तौसीक हैदर का सलाम। प्रोग्राम है पैदा करो नई सोच, जिसमें हम पूरे पंजाब के मुख्तलिफ रेडियो स्टेशंस पे आपके लिए ये नशिस्त, ये महफिल सजाते हैं और बात करते हैं कि अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को कैसे प्लान किया जाए, कैसे मंसूबा साजी की जाए, ताकि हमारी माएँ, हमारी बहनें जो हैं वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, हमारे इस दुनिया में आने वाले प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं उनके अंदर नौमौलूद जो शरह अमवात है उसमें हम कमी ला सकें और एक बेहतर खुशहाल पंजाब, एक बेहतर खुशहाल पाकिस्तान हम देख सकें। हर प्रोग्राम में आपकी किसी न किसी माहिर से मुलाकात में करवाता हूं। आज डॉक्टर फरवा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर राहत फरवा बलोच। और डॉक्टर साहबा जो हैं वो झंग में मुकीम हैं और साउथ पंजाब के अंदर बहुत ही ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कर रही हैं और बहुत सी माओं की जिंदगियां इनके हाथों में जाकर बची हैं जिनका शायद बचना मुमकिन ना था। और इनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च है कि हम ख़ासतौर पे साउथ पंजाब में, लेकिन पूरे पंजाब में किस तरह से ज़िंदगी के छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं ताकि हम जचगी के दौरान, हमल के दौरान माओ की ज़िंदगियां बचाएं और नौमौलूद बच्चों की ज़िंदगियां बचाएं। डॉक्टर साहबा, डॉक्टर राहत फरवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का जूम के ज़रिए इस प्रोग्राम में, हमारे इस रेडियो प्रोग्राम में। आप एक माहिर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो आज के प्रोग्राम में डॉक्टर साहब हम बात करना चाहेंगे कि क्या गलत फहमियाँ हैं फैमिली प्लानिंग के हवाले से। लोग मुख्तलिफ तशवीश का शिकार हो जाते हैं, एक बहन दूसरी बहन को कोई बात कहती है, वह चौथी को बताती है, तो वो क्या गलत फहमियाँ हैं, क्या मिसकंसेप्शंस हैं जिनकी आप निशानदेही करना चाहेंगे, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं और किसी भी तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ करने से ऐसा कोई मसला नहीं होता।
3: ये बहुत शुक्रिया तौसीक साहब, आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे एक जनरल अवेयरनेस या आगाही देने का, और हम इन बातों को बहुत सादा लफ्जों में करेंगे ताकि ये बातें हमारा आम खास हर किस्म का इंसान इस बात को समझ सके। तो बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस लोगों में पाई जाती हैं कि हमारी कम्युनिटी में जब हम किसी को वक्फे की बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि शायद हमें डॉक्टर्स या हमारी हुकूमत हमें ये कह रही है कि हम बच्चे पैदा ही ना करें। तो देखिए, अगर हम किसी से माने हमल के तरीकों या वक्फे की बातों के बारे में बात करते हैं, उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आपने बच्चे पैदा ही नहीं करने। उसका मकसद ये होता है कि आप अपनी फैमिली को प्लान करें, आप अपने बच्चों के दरमियान एक स्पेसिंग देखें कि क्या मेरी सेहत, मेरे हालात मुझे ये इजाज़त दे रहे हैं क्या कि मैं बच्चा पैदा करने की तरफ जाऊँ। अब लोगों के दरमियान जो सबसे बड़े मिसकंसेप्शन हैं, हमें खवातीन अक्सर आके कहती हैं कि तुझे मेरे नाल यह तरीका करना है फिर तो मैं कभी बच्चे पैदा ही नहीं कर सकांगी, फिर तो मेरी बच्चेदानी खराब हो जाएगी, मेरा मियाँ के अंदर मैनू इन्फेक्शन हो जाएगी। ये इस तरह की मिसकंसेप्शन हैं जो लोगों को इस तरह के तरीके इस्तेमाल करने से रोकती हैं।
2: तो ये बताइए कि इस वक्त हुकूमत पंजाब का जो फैमिली प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, वो बहुत ग्रास रूट लेवल के ऊपर बड़ी मुफ्त फैसिलिटीज दे रहा है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि मैंने सुना है बिल्कुल मॉडर्न ये फैसिलिटीज हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त दी जा रही हैं ख्वातीन को पूरे पंजाब में।
3: जी बिल्कुल ऐसा ही है। पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बहुत वास्ट और एक्सटेंसिव तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे हर मोहल्ले, हर गली, हर लेवल पे हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं या हमारी जो फीमेल हेल्थ वर्कर्स होती हैं, वो लोगों को डोर टू डोर विजिट कर रही हैं, वो उनको हर तरह की आगाही मुहैया कर रही हैं, क्योंकि फैमिली प्लानिंग के जितने भी तरीके होते हैं वो हर आमो खास को समझ नहीं होते, क्योंकि हर औरत की सेहत, उसकी प्रेफरेंसेस, वो कितने अरसे का वक्फा करना चाह रही है, आप एक किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के मशवरे के बगैर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारी जितनी भी कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं वो लोगों को घरों में विजिट कर रही हैं और वो ये सारी सहूलियात लोगों को घरों में पहुंचा रही है विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब मशवरा भी मुफ्त और आपकी जो तरीकेकार है वो भी मुफ्त।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो अभी हम बात कर रहे हैं कि गलत फहमियां होती हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, तो ऐसे में जो यंग कपल्स हैं, नए नवेले

0: दूल्हा दुल्हन जो है नई नई जिंदगी का उन्होंने साथ गुजारने का फैसला किया है और आगाज किया है, उनको आप क्या मशवरा देंगी कि वो बजाय इसके कि इधर उधर से कोई बात सुने और गलत फहमियों का शिकार हों, वो क्या पंजाब फैमिली प्लानिंग के जो मराकज हैं वहाँ पे जाएं, क्या वहाँ पे यू नो मर्द खवातीन दोनों को काउंसलिंग भी दी जाती है?
1: जी बिल्कुल, ऐसे ही है। आपको हमेशा अपनी फैमिली स्टार्ट करने से पहले एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर मिलना चाहिए, और हमें पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये मौके दे रहा है। हमें आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स है वो आपको घरों में विजिट कर रही हैं। आपका अगर एक बच्चा पैदा हुआ है, आपकी न्यू बॉर्न की केयर के बारे में वो आपको बता रही हैं, आपने अपने उस बच्चे इसके बाद अपनी हेल्थ को कैसे रिकवर करना है वो उसके बारे में आपको आगाही दे रही हैं। आपको अपने इस बच्चे और अगले बच्चे में कितना गैप करना है और उस गैप के लिए आप क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब आगाही आपको वो प्रोवाइड कर रही हैं।
0: अच्छा, आपने बताया था कि एक सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन या गलत फहमी ये है कि जी फिर मैं दोबारा माँ नहीं बन सकूँगी, तो ये तो आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा क्या ऐसे गलत फहमियाँ हैं जो कि ख्वातीन के जहन में डाल दी जाती हैं?
1: जी बिल्कुल, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। जैसे कि खवातीन को ये लगता है कि अगर हम ये तरीके इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा। देखिए, जब भी हम किसी भी मेथड को लोगों को बताते हैं तो हमारा आगे यही पॉइंट होता है कि कुछ छोटे मोटे मसाइल आपको इनके साथ डेवलप हो सकते हैं, लेकिन आप उन मसाइल की वजह से इनको एकदम से इस्तेमाल करना बंद ना करें। अगर आपको उससे कोई थोड़ा बहुत वक्फा करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप हमेशा एक आपके जो नियरेस्ट सेंटर्स बने हुए हैं, जो पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ने सेंटर्स बनाए हैं, जो हेल्थ इंस्पेक्टर्स आपके घरों में आ रही है, आप उनसे मशवरा करें, आप एक माहिर डॉक्टर से मशवरा करें, उस तरीके को छोड़ने से पहले उसको असेस करवाएं कि क्या वो तरीका वाकई आपको नुकसान दे रहा है या नहीं दे रहा। इसी तरह खवातीन ये कहती हैं, जी हमने वक्फे का तरीका इस्तेमाल किया, हमने टीका लगवाया और मेरा वजन बढ़ना शुरू हो गया, और हम ये नहीं देख रहे कि ऐसी वो खवातीन पिज्जे कितने खा रही हैं या हम कोल्ड ड्रिंक्स कितनी पी रही हैं, कि हमारा वजन बढ़ने में हमारी खुराक भी एक फैक्टर हो सकती है। तो हम सिर्फ अपने उस माने हमल के तरीके को जो है ना कसूरवार नहीं ठहरा सकते। बाज़ूकात लोगों को लगता है कि हमें उससे इन्फेक्शन होती हैं, जबकि ये तरीके वो होते हैं जो आपके इन्फेक्शन को बचा रहे होते हैं, आपको इन्फेक्शन की तरफ खींच नहीं रहे होते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर बलोच, आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सरायकी बोलती हैं, और तो मैं चाहूँगा कि इस वक्त पूरे मुख्तलिफ रेडियो स्टेशंस पे हमारी बहनें हमारे भाई आपको सुन रहे हैं, तो ये सारी आज की गुफ्तगू का एक वो कहते हैं लुब्बे लबाब, एक इसका हासिल वसूल जरा अपनी खूबसूरत सी सरायकी में तो बयान कीजिए।
1: जी बिल्कुल, ऐसे ही है। मैं यही आखना चाहता कि बच्चे वक्फे दे नाल ते एक तहमुल नाल पैदा करन दा तुहानूं ढेर फायदा है, ओहदे विच मावां भी सेहतमंद रहसन, बच्चे भी सेहतमंद रहसन। जदों माँ एक बच्चे तो दूए बच्चे के दरम्यान एक प्रॉपर वक्फा करेंदी है, 2 साल 3 साल का जो वक्फा लैके अगला बच्चा पैदा कर सी, वो माँ आप भी सेहतमंद रह सी, वो बच्चा भी सेहतमंद पैदा करे सी, तो असं अपने इस मुआशरे को सेहतमंद लोग दिसें, ना कि माँ भी बीमार तो बच्चे भी बीमार। जो बच्चे उन्होंने कमजोरिया पैदा हो सकते तो उस बाद बच्चे जो अस्पताल के चक्कर रहन, वो भी थोड़े उत्ते भी फैमिली के उत्ते भी एक बोझ है, तो खुदा ना खास्ता वो साड़ी कम्यूनिटी तो साड़ी पूरी हुकूमत के उत्ते भी एक प्रेशर है अस्पतालों के चक्कर से अखराजात का।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम तासुर ये कि अच्छा जी ये तो खवातीन का मसला है, ये तो यू नो माँ जो ही एक औरत प्रेग्नेंट होती है वो कहते हैं अच्छा भाई अब तो ये जनानिया का मसला है जी, ये सस जाने थे ननान जाने थे भाभी जाने थे, लेकिन कितना ज़रूरी है। आप मॉडर्न रिसर्च ये कह रही है कि वो घराने जहाँ पे जो खामंद है वो भी पूरा ओनरशिप लेता है उस पूरे प्रोसेस की और साथ खड़ा होता है मशवरा लेने मशवरा देने में, वहाँ पे माँ भी सेहतमंद होती है और बच्चा भी। इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि कितना जरूरी है कि मियाँ बीवी दोनों मिलके फैसले करें।
1: जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। देखिए, प्रेगनेंसी जब एक औरत को हमल ठहरता है तो वो बच्चा सिर्फ उस माँ का नहीं होता, उसके हस्बैंड का भी पूरा किरदार है उसका, उस औरत का ख्याल रखने में, उसकी एक प्रॉपर जो उसके एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं वो अपनी बीवी को चेकअप्स के लिए लेके जाए, वो उसकी मेडिकेशन का ख्याल रखे। उसके बाद एक औरत को हमल के दौरान बहुत सारा एक रेस्ट चाहिए होता है। अगर सारा घर का बोझ आपका सोशल इकोनॉमिकल बोझ सारा अगर एक औरत पे होगा तो जाहिर है वो कमजोरी का शिकार होगी। अगर वो दवाइयाँ टाइम पे उसका शौहर उसको प्रोवाइड नहीं करेगा, वो खून की कमी का शिकार होगी। जब माँ खून की कमी का शिकार होगी तो जाहिर है जो पैदा होने वाला बच्चा है वो भी खून की कमी का शिकार होगा, तो हम एक सुस्त जनरेशन पैदा करेंगे। तो उसके लिए मियाँ का भी उतना ही किरदार है कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखे, उसके बाद आने वाले बच्चे का ख्याल रखे, और अगला बच्चा पैदा करने से पहले वो दोनों मियाँ बीवी बैठ के एक लम्हे के लिए सोचें कि क्या हम अगले बच्चे के लिए कब तैयार होंगे, कब हम फिजिकली भी तैयार हैं और कब हम सोशली और हम इकोनॉमिकली भी तैयार हैं कि हम अगला बच्चा प्लान करें और हम उसको पैदा करें।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे पता चला है कि झंगोची आप बोलती हैं, भी बड़ी खूबसूरत जबान है जो कि सराइकी का एक डायलेक्ट है, ऐसा कह सकते हैं हम, या बिल्कुल अलग से जबान है?
1: नहीं सर, ये एक सराइकी की ही किस्म कहते हैं इसको, कि जंग वाले भी सराइकी बोलते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक नॉर्मल सराइकी जो हमारी डेरा गाजी खान या मुल्तान में बोली जाती है उससे थोड़ी डिफरेंट है हमारी।
0: तो डीजी खान और मुल्तान में तो इस वक्त हमारी बहुत सी बहनें आपकी आवाज़ सुन रही हैं, और जिनको झंगोची आती है वो सुन के तो फौरन कह रही हैं कि अब डॉक्टर बलोच जल्दी से हमारी झंगोची में कुछ हमसे बात करें, तो उनको क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि सानू सब तो पहले अपनी ते अपने फैमिली दी सेहत दे बारे सोचना। अगर असी माँ हो के अपने बच्चे दे बारे नहीं सोचना तो फिर किसी तीसरे बंदे साडे बच्चे दे बारे नहीं सोचना। तो इस वास्ते हमेशा एक प्लानिंग नाल चलो। तुहानू जेले पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मुफ्त वक्फे दे तरीके फराहम करदा पे है, उन्हां तरीकों नू जरूर इस्तेमाल करो। किसे चाची पुप्पी मामी दी गल्लां नू ना सुनो कि हुण भिरा दा भिरा जा दियो या बहन दी बहन जा के दियो, जोड़ा रह लाओ धीयां दा, जोड़ा रह लाओ पुत्रां दा, क्योंकि ये फैसला आपका और आपके मियाँ का है। अगर तुसां दो मियाँ बीवी चाहते हो कि असीं अजे 3 साल बच्चा पैदा नहीं करना, ये तुहाडा बुनियादी हक है। तुसीं अपने डॉक्टर जिहड़ा करीबी सेंटर है तुसीं उत्थे विजिट करो, तुसीं बेहतरीन तरीका इस्तेमाल करो डॉक्टर दे मशवरे नाल, वो तुहानू या तुहाडे बच्चे नू फायदा देसी, वो तो उन्होंने नुकसान नहीं देना इंशाल्लाह।
0: अच्छा डॉक्टर बलोच, हमें ज़रा बताइए कि हमारी सराइकी समझने बोलने वाली बहनों को, भाइयों को, कि पंजाब गवर्नमेंट की इस वक्त क्या-क्या फैसिलिटीज़
1: जी
0: हैं
1: जी
0: और उनको इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है?
1: जी बिल्कुल, हमारी पंजाब फैमिली प्लानिंग वाले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बाजू में
0: डॉक्टर
1: जो
0: साहब, अगर
1: कैप्सूल्स
0: प्यारी
1: हम
0: सी
1: रखते हैं
0: सराइकी
1: उनको हम
0: में, अगर
1: इम्प्लांट्स
0: आप प्यारी सी सराइकी में बताएं ना, तो फिर बहुत ही अच्छा लगेगा।
1: देखो ना जी, अगर एक सहूलत तुहाडे घर आके मिलदी पई है ते तुसीं अगर उन्हें मुड़ भी इस्तेमाल ना करो ते ये साडे वास्ते मेरे ख्याल च अकलमंदी ते नहीं है। अकलमंदी इसी चीज च है कि तुसीं उन्हें सारियां सहूलतां नूं इस्तेमाल करो। जिहड़ी मरियम नवाज साहिबां ने पंजाब च साडी खवातीन लेडी हेल्थ इंस्पेक्टर्स लॉन्च कीतियां ने, वो तुहाडे घरां दे विच आ के तुहाडी सेहत दे सारे मसाइल सुणदियां ने। तुहाडा घर च ब्लड प्रेशर शुगर चेक होंदा है, मुफ्त चेक होंदियां ने सारियां चीज़ां। तुहानूं इम्प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट रखदे ने, जिन्हां दी कॉस्ट तकरीबन तुसीं अगर प्राइवेट रखवाओ तो 5 तो 10 हज़ार रुपया तुहाडा तकरीबन खर्चा हो जाता है, लेकिन अगर वो चीज़ां तुहानूं मुफ्त मिलदियां पईआं तो उन्हां नूं जरूर इस्तेमाल करो, ताकि तुहाडियां आवण वालियां जिहड़ियां नस्लां हैं, तुहाडियां जनरेशन हैं, वो सेहतमंद पैदा होवन। तुसीं अपने आप नूं एक मजबूत फैमिली बना के दियो, ना कि तुसीं बच्चे तो बच्चा पैदा करके उन्हां बच्चिआं नूं भी कमज़ोर पैदा करो ते अपने आप नूं भी कमजोर करदे जाओ।
0: डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राहत वरवा बलोच आज हमारे साथ मौजूद थी, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही नामी गिरामी नाम है, माँ बच्चे की सेहत के हवाले से कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। झंग से आपने, हमारे झंग स्टूडियो से हमें इस खास रेडियो पॉडकास्ट के लिए ज्वाइन किया। डॉक्टर बलोच, बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम सुनने वालों का और इस पॉडकास्ट को देखने वालों का शुक्रिया कि ये काम की बातें आपने डॉक्टर बलोच से सुनी। इन काम की बातों को दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। प्रोग्राम पैदा करो नई सोच से। अपने दोस्त, अपने मेजबान, अपने भाई तौसीक हैदर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।
2: सुनते रहिए FM 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: Muslat. रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने फ्यूल सब्सिडी से इस्तेफादा करने वाले अफराद के लिए सहूलत डेस्क कायम करने की हिदायत की है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कौमी सलामती और इस्तेहकाम मजबूत बनाने में टेक्नोलॉजी पर मबनी जिद्दत की अहमियत उजागर की है। नए कारोबार का आगाज करने वाली पाकिस्तानी कंपनियों को बैन अलाक्वामी रहनमाई और जिद्दत के आलमी निज़ाम तक रसाई फराहम करने के लिए क्वांटम वैली पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज किया गया है। अक्वामे मुत्तहिदा में एक कश्मीरी वफद ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए।
2: मूसलाधार बारिश और शदीद ज़ालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइस तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
3: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
4: हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन।
5: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अबरारुल हक और आप लोग सुन रहे हैं।

मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है, मेरा जितना चर्चा है सब उसका है। मेरी आंखें उसके नूर से रोशन है, मैंने जो कुछ देखा है सब उसका है। मैंने जो कुछ पाया था सब उसका था, मैंने जो कुछ खोया है सब उसका है। मैं जब टूटा था वो टूटा था, इधर उधर जो बिखरा है सब उसका है। मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है, मेरा जितना चर्चा है सब उसका है। रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के बराह रास्त लाहौर के स्टूडियो से प्रोग्राम नाइट थेरेपी लेकर आपका मेजबान रहमान अनवर हाजिर। कैसे मिजाज? सब खैरियत? ठीक ठाक, A1 फर्स्ट क्लास, सब ठीक है ना? बताओ मुझे। ऑलराइट, वैसे तो आप लोग वेट कर रहे हुआ करते हैं आरजे डॉक्स का, लेकिन आज के प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए मैं आ चुका हूँ, क्योंकि वो इस्लामाबाद में एंजॉयमेंट्स कर रहे हैं, एंजॉयज कर रहे हैं। मसरूफ इंसान, खूबसूरत इंसान, काबिल इंसान, बड़ी मुश्किल होती है सारे कामों को एक साथ मैनेज करना। सो आज वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, सो मैं आ गया। लेके चलेंगे प्रोग्राम को एक बेहतरीन अंदाज में, थोड़ा सा हाई पिच पर रहते हुए बात करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 2 घंटे का साथ नहीं, इसके बाद अगले 2 घंटे वो भी इंटरनेशनल स्लॉट मेरी ही है, लेकिन उसको उस अंदाज में करेंगे, इसको इस अंदाज में करेंगे। ये नाइट थेरेपी है तो इसका एहसास आपको वक्त के साथ साथ हो जाएगा। बहरहाल प्रोग्राम का पहला ट्रैक आपकी समातों की नजर करते हैं और शामिल करते हैं ब्यूटीफुल ट्रैक झोल, और इसके बाद जैसे ही वापस आएंगे तो हम फिर बहुत सारी बातें करेंगे, वो बातें जो दिल चाह रहा है ना। सवाल पूछेंगे, टॉपिक्स रखेंगे, बातें करेंगे, आज आपकी लाइव कॉल्स धड़ाधड़ भर भर भर भर के हम शामिल करेंगे, ठीक है ना। कॉल करने के लिए 0421100101, ट्रैक्स ज्यादा शामिल करेंगे और बातें भी बहुत ज्यादा करेंगे। गला बहुत ज्यादा खराब है, 4 घंटे का साथ है। पहले ये 2 घंटे ये वाले अंदाज में पिच को यहाँ पे ही रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे जाते रहेंगे, ऐसे जैसे मूड चेंज होगा। आप रुलाएंगे तो रो पड़ेंगे, आप हंसाएंगे तो हंस पड़ेंगे, या फिर हम रुलाएंगे तो आप रो पड़ेंगे। 10:12, बड़ा मजा आने वाला है। क्या क्या दिल चाह रहा है आज, किस पे बात करनी, क्या दिल चाह रहा है बताओ मुझे। मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखो 101, स्पेस देकर अपना नाम, अपना पैगाम उसे भेज दो 4471 4471। बताओ मुझे क्या दिल चाह रहा है सुनने का, ट्रैक्स बताओ मुझे, अच्छे अच्छे तेज तेज खूबसूरत से ट्रैक्स, मोर देन वेलकम। सारे ट्रैक्स आज प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, आई स्वियर मैं सारे ट्रैक्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि नहीं ये ट्रैक शामिल नहीं करेंगे, हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, नहीं आज ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होगा। आज आपकी मर्जी चलेगी, ट्रैक्स आपके चलेंगे, बातें मेरी चलेंगी, बातें हम दोनों की साथ में चलेंगी, यानी टॉपिक तो मैं लेके आऊंगा ना। अगर आप कोई सजेस्ट करना चाहें उस पर भी हम बात कर लेंगे, आज सारे मिलजुल कर सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। सारे ले आओ अपने टॉपिक्स, नहीं सर ये वाला टॉपिक मैंने इस पे बात करनी, सर एड्डा तू सर है, नहीं रहमान मुझे इस पे बात करनी, हाँ रहमान ठीक है। दिस इज रहमान अनवर, प्रोग्राम नाइट थेरेपी, ऑलराइट, टेक इट अवे वंस अगेन, एक बार फिर से यहां से सुनते हैं। ये वो देख रही है उसकी तरफ, बिल्कुल करीब आके, ये कोक स्टूडियो का भी बड़ा डिफरेंट सा फंडा है, अच्छा यार अच्छा, आजकल ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा चला रहा है, सिनेमेटोग्राफी ऑसम, ब्यूटीफुल। चार चार साथ एक के पैगाम सबसे पहले प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे हम। राइट ऑप्शन में जाकर लिखिए 101, स्पेस देकर अपना नाम, पैगाम 4471 पे सेंड कर दीजिए। facebook.com/fm101 लाहौर का ऑफिशियल फैन पेज, वहां पे पोस्ट पिन कर दी गई और जस्ट ये लिखा है नाइट थेरेपी विद आरजे रहमान। कमेंट सेक्शन में आकर भर भर के कमेंट्स करने आज, यस बहुत बहुत
सारे ट्रैक्स आज मुझसे फरमाइश कर लो। दो घंटे, ये दो घंटे का वक्त है, उसके अगले दो घंटे उस पर कोई कॉल्स नहीं। आप जानते हैं मैं अपने प्रोग्राम्स में कॉल नहीं शामिल करता, बातें करता हूँ ना आपसे, दिल की बात है। इस तरह से नहीं अभी बोलना रहमान, ये बोलना है 12 बजे

अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं ना करते। आज सिद्रा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और अनिला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। और रौनक, अच्छी लगा रहा हूँ, अच्छा ये कह रही हैं आप, अच्छा ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ अभी तो मैं गले के साथ लड़ने की कोशिश। बाय द वे, सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा, ड्यूटी ऑफिसर मेरे साथ मौजूद आदिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और एमसीआर में रिजवान भाई ऐसा मेरा साथ निभाया करते हैं, और थैंक यू वेरी मच, प्रोडक्शन इंजीनियर है। और बाकी तमाम शहरों में जहां जहां पे जो जो प्रोडक्शन इंजीनियर्स इस वक्त इस समय हमारे प्रोग्राम को अपने अपने शहर में 101 की फ्रीक्वेंसी पे ऑन एयर किए हुए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। रहमान इनवर आपका शुक्रिया अदा करता है, आपका नाम नहीं मालूम मुझे लेकिन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम की सीनियर प्रोड्यूसर हुआ करती हैं खदीजा मुराद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। एनीवे, अभी से आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का दिल चाह रहा है क्योंकि कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं, सो पहले टॉपिक शामिल करते हैं फिर उसके बाद जो है वो आपकी लाइव कॉल्स हम फौरन से प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि आज मेरा दिल चाह रहा है कि भर भर के बहुत बहुत सारी लाइव कॉल शामिल करें। बाय द वे, नूर हाशमी साहब, अब्दुल नूर हाशमी साहब, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। आई रियली मैं बिलीव नहीं करना चाहता इस बात पे जो आपने लिखा है। बाय द वे, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है कि इंसान की असलियत जो है ना वो बहुत जल्दी सामने आ जाती है। लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, आपने फिर भी कुछ रुपए खर्च करके मैसेज भेजा, थैंक यू वेरी मच। वाह, लेकिन कमाल कमाल नूर हाशमी साहब, कमाल, ये मैं आपका नाम आखिरी बार ले रहा हूं। बाय द वे, आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक हम शामिल करने वाले हैं वो बहुत बहुत डिफरेंट सा टॉपिक है, और आज डिफरेंट तरह की ऑडियंस हमें सुन रही है, बच्चे भी सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे हैं, हर तरह की, सो सबके लिए ये टॉपिक है। हम सब कभी ना कभी इस जगह से जरूर गुजरे होते हैं, बाज़ औक़ात हम किसी चीज में किसी रिश्ते में फेल हो जाते हैं, हो सकता है कि इम्तिहान में भी कभी फेल हो जाते हो, कंपार्ट आ सकती है ना, लेकिन why are we afraid of starting again? हम दोबारा से शुरू करने से अपने उस एहसास को डरते क्यों हैं? दोबारा शुरू करने से घबराते क्यों हैं? कुछ भी हो सकता है, क्या वजह है? कोई एज फैक्टर हो सकता है, फेलियर आपको तंग कर रहा होता है कि नहीं अब दोबारा से उसको शुरू नहीं करना, या हमारे आसपास में जो लोग मौजूद होते हैं डीमोटिवेट कर देते हैं, वजह क्या होती है? दोबारा से शुरू कर क्यों नहीं पाते अगर हम किसी एक जगह पर फेल हो जाते हैं? So, आज का जो टॉपिक है वो यही है, हम इस पे बात करने वाले हैं, बहुत बहुत सारी बातें करें, बहुत सारे ख्यालात जहन में आ रहे होते हैं कि यार अब मैं दोबारा से वही वाली कोशिश दोबारा से नहीं दोहराऊंगा, बस मैंने अपना टाइम देके देख लिया और मैं हार गया, फेल हो गया मैं, अब मैं दोबारा से शुरू नहीं कर सकता। हम डिफरेंट कोई भी दूसरी चीजों की तरफ भाग जाते हैं, रिश्तों में भी हम अक्सर भाग जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं। बाज़ औक़ात दिल में ये भी ख्याल आता है कि अब मेरी एज नहीं रही, अब हमने किसी ना किसी चीज को तो जस्टिफिकेशन के तौर पर हमने अपने लिए लेना ही होता है। सो क्या वजह है? पहली कोशिश अगर बुरी तरह फेल हो गई, अगर हमसे वो नहीं हो पाया, हम उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाए किसी भी चीज में, रिश्ते में, ताल्लुक में, मोहब्बत में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में,
किसी भी जगह पे हो सकता है। हम दोबारा शुरू करने से घबराते क्यों हैं? Why are we afraid of starting again? क्या वजह है? ये सवाल है आज का। अगर समझ में आया तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, वरना हम बहुत सारी बातें इस पे करने वाले हैं। By the way, अनीला साहिबा ने एक फरमाइश की है मुझसे ट्रैक की। उन्होंने कहा है कि यार ये बहुत अच्छा लगेगा रहमान, नाजिया हसन की खूबसूरत आवाज। अच्छा यार ये तो वो पुरानी फिल्मों वाला सीन लगा। वैसे तो ये वाकई 18-19 साल पुरानी यहां पे अपलोड की हुई YouTube के ऊपर ये रिकॉर्डिंग है जो मैंने प्ले की है। तो सोचे इससे पहले का ये ट्रैक होगा। वो एक शीशा सा होता था ना गोल सा, उसके ऊपर वो भविष्य देखने वाले लोग, फ्यूचर देखने वाले लोग इस तरह से वो उसके सामने खड़े होकर ये गुनगुना रही रॉकस्टार रही है, पाकिस्तान का प्राउड है, बहुत बड़ा नाम है नाजिया हसन। म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, लॉयर भी रही बाय द वे। यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी ट्रैक फरमाइश कर सकते हैं, हम जरूर हम जरूर आपके लिए प्ले करेंगे।

राइट, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम सुनने वाली खूबसूरत समातों को खुश आमदीद कहते हैं। ये नाइट थेरेपी है रहमान अनवर के साथ। बहुत सारे मैसेजेस आपके मुझे मौसूल होने लगे हैं 4471 पे। धड़ाधड़ मैसेजेस करना शुरू कर दीजिए। कुछ भी टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं या फिर फरमाइश करना चाहते हैं कोई ट्रैक, यू मोर देन

मलंग कलंदरी उस्मान टाउन 215 FSD। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? एक आरिफ लोहार का जिस तन लग गई उस तन जाने। ठीक है, मेहरबानी, मैं प्ले करता हूँ। इमरान जट हमारे साथ फ्रॉम वेब सीरीज का थीम सॉन्ग प्ले करें, मैं इसको चेक करता हूँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको जरूर प्ले करता हूँ। इमरान, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।

हम क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं दोबारा शुरू करने से, फेल होने के बाद, पहली मर्तबा फेल होने के बाद हम दूसरी बार क्यों शुरू नहीं कर सकते, ये आज का टॉपिक है। आप इसको किसी भी सेंस में यूज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ट्रिगरिंग पॉइंट होगा आपका, जहां पे ये टच हुआ होगा और फिर आप सोच रहे होंगे उस बारे में, है ना।

0: आरिफ लोहार।
1: मोहब्बत दिल चौक लेके नहीं जान दे।
0: अच्छा

0: इतने लंबे ट्रैक्स प्ले करेंगे तो टाइम जो है ना वो गुजर जाएगा। 10:47 एक और कॉल प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और आपके बहुत सारे ट्रैक्स जो है ना वो लाइन अप हो चुके हैं क्योंकि फेसबुक पे भी साथ साथ मैं फरमाइश नोट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं जी?
1: कैसे रहमान भाई?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बहुत करम बहुत एहसान। नाम बताइएगा।
1: हक नवाज फ्रॉम रावलपिंडी।
0: रावलपिंडी से हक नवाज साहब बात कर रहे हैं, खुश आमदेद कहते हैं हक नवाज भाई, क्या कहना चाहेंगे? हाँ आवाज यार गला बहुत खराब है मेरा, जुकाम भी है, कल भी मैंने किया है, आज तो 4 घंटे का मैंने प्रोग्राम करना है, सो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन है ठीक हो जाता है, कल से बहुत बेहतर है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: टॉपिक रखा आपने
0: आज बड़ा आसान सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी है। एक बार फेल होने के बाद हम दोबारा शुरू क्यों नहीं कर पा रहे होते, डर किस बात से रहे होते हैं? Why we are afraid? क्या किस चीज का हमें डर होता है, खौफ क्या होता है?
1: मैं अपना जाती एक्सपीरियंस जाऊं या किसी और की बात करूं?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, अपना जाती एक्सपीरियंस, किसी और की बात कैसे कैसे कर सकते हैं आप, उसका जवाब वो खुद ही दे देगा। हाँ बताओ मुझे।
1: मतलब ये ना रहमान भाई
0: जी, क्या मकसद है?
1: मैं अपनी अज़वाजी ज़िंदगी पे थोड़ी सी अब पुरोश नहीं डालूंगा।
0: अच्छा सही है।
1: वो यूं के मेरी शादी हुई।
0: अच्छा।
1: उसको तकरीबन 10-12 साल बहुत अच्छे गुजरे।
0: ठीक है
1: ठीक है। एकदम से कुछ ऐसा मोड आया कि मेरी जो शादी थी ना
0: हाँ।
1: वो धर्म भरम हो गई। अब उसमें से मेरे 2 बच्चे भी हैं माशाल्लाह से, उन्होंने
0: आवाज कट रही है आपकी हक नवाज भाई। हेलो
1: मैंने कहा जी मेरे हेलो
0: अभी आ रही है? अभी बिल्कुल ठीक आ रही है, अभी बिल्कुल ठीक आ रही है।
1: अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे 2 बच्चे भी हैं।
0: जी जी आपने बता दिया, हमने ये सुन लिया, बिल्कुल आगे।
1: हाँ तो उन बच्चों ने अभी नाजरा किया, तो उसकी मेरी जो पहली मिसेज है उन्होंने मेरे को वीडियो भी सेंड की है।
0: अच्छा ठीक है माशाल्लाह।
1: बच्चे कुरान पाक की सूरत पढ़ रहा था छोटे वाला, वो भी मुझे उसने।
0: वेरी नाइस वेरी गुड। हेलो दरअसल ना डिस्टॉर्शन आ रही है हक नवाज भाई, और सिग्नल का कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से ना आपकी आवाज बीच में, दोबारा कर लीजिएगा क्योंकि आप ना बीच बीच में कट कट की अब आवाज आ रही है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दीवानगी मुझसे किसी ने फरमाइश किया था अभी फेसबुक के ऊपर, facebook.com/fm101 लाहौर ऑफिशियल फैन पेज। हाँ नुमान आदिल आपने कहा था अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम कराची, कराची अच्छा है, मैंने ये पूछा है वैसे, दीवानगी वैसे अच्छा होना चाहिए, दीवानगी सॉन्ग आपने मुझसे फरमाइश किया आपके लिए। अच्छा सारे आहिस्ता आहिस्ता कम कम प्ले करते जाएंगे, आधे आधे प्ले करते जाएंगे।

अच्छा एक बड़े मजे का मैसेज है हाफिज मोहम्मद कासिम का मैसेज है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ऑलमोस्ट 17-18 सालों से, नहीं 17-18 साल के बाद एफएम शो सुन रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से आपको भी सुना है, 2-4 मिनट हुए। पिछले कुछ दिनों भी आपने लिखा है और फिर ये भी लिखा है कि 2-4 मिनट हुए। अच्छा, वो रेडियो का मजा नहीं आया जो 15-16 साल पहले था, बहुत याद आ रहे वो दिन। अब आपको सुनते हैं। हाफिज, आपने ये दूसरा मैसेज मेरे लिए टाइप करना है। आपने मुझे बताना है कि क्या मिस कर रहे हैं आप, कैसा होना चाहिए प्रोग्राम, आपका दिल किस तरह के प्रोग्राम को सुनने का चाहता है, बहुत लाउड स्पीडी रॉकिंग प्रोग्राम या फिर धीमा धीमा लहजा, बहुत आराम से बात करने वाला ठहराव के साथ। नहीं रहमान, इस प्रोग्राम में ऐसा नहीं करना, ये मैंने शर्त रखी है। वैसे हाफिज साहब, आप मुझे जरूर बताइएगा, फेसबुक पे आपने मैसेज किया, आपके मैसेज का मैं स्पेशल वेट करूंगा। हाफिज मोहम्मद कासिम। अच्छा, ये रोने धोने वाले ट्रैक्स जो है ना यार, मैंने कह तो दिया है कि फरमाइश कर लो, लेकिन ये वाले ट्रैक्स मत फरमाइश करो प्लीज।

0: राइट, एक और लाइव कॉल प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इतना ही हम ट्रैक सुन पाएंगे जिसका भी जो भी फरमाइश करेगा, क्योंकि हमने सब ट्रैक्स प्ले करने हैं आज। मैंने भर भर के आपकी कॉल्स भी लेनी है और ट्रैक्स भी शामिल करने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम सलाम
1: सर, क्या हाल है? ठीक है।
0: अल्लाह का बहुत करम बहुत एहसान। क्या नाम है आपका? कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मेरा सर, मैं मोहम्मद इकबाल बोल रहा हूँ, लाहौर से।
0: मैंने पहचान लिया। इकबाल भाई, क्या कहना चाहेंगे?
1: अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआ शुक्र।
0: आबाद रहें, खुश रहें जी।
1: टॉपिक के हवाले से थोड़ी सी बात करना।
0: जी जी, बताइएगा मुझे। हम फेल होने के बाद दोबारा शुरू क्यों नहीं कर पाते, किस चीज का डर होता है?
1: वो तो एक दुनिया के अंदर तो आपको पता है कि एक माँ के चार बेटे हैं, चारों के ज़हन में मिलते हैं। मैं अपनी एक जो सी हार्ट बीती है वो मैं बता,
0: वो सबसे अच्छी होती है जो हार्ट बीती होती है। हाँ जी जी, बताए।
1: देखे बंदे के ऊपर जो सा ना चढ़ाव चढ़ाव जिंदगी के अंदर रहता है।
0: बिल्कुल ऐसा ही है।
1: मैंने अपना काम शुरू किया, ठीक है। जिंदगी में एक शौक था कि यार मैं अपना काम करूं, मैंने किया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम था। बीच में कोरोना आ गया, कुछ हालात मुल्की ऐसे हो गए, काम खत्म हो गया, नुकसान में उसको खत्म कर दिया।
0: अब बहुत सारे लोग साथ ऐसे
1: हुए। मैं क्या करूं, मैं दोबारा फिर खड़ा हुआ हूं।
0: अच्छा,
1: नौकरी कर रहा हूँ, 60,000 रुपए तनख्वाह ले रहा हूँ, तकरीबन 60 साल की उम्र है, ठीक है जी, काम कर रहा हूँ और आगे फिर स्ट्रगल है, फिर दोबारा मौका मिलेगा तो फिर करूंगा।
0: माशाल्लाह। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने ये नहीं सोचा मैंने नहीं करना?
1: सर बंदे को जब दो से बंदे ने हिम्मत हार गई, हार भी समझ ले वो मर गया,
0: खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल,
1: बंदे को ये सोच के जीना चाहिए कि कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, समुद्र में उतर जाऊंगा। अपना जो सा उम्र जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, जज्बा।
0: अच्छा, इसका ना एक शेर मेरे जहन में आया, I'm really sorry, इधर थोड़ा सा और तरह का है तो आपने बियर करना है वो शेर, कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो राइडर हूँ, कट मार के निकल जाऊंगा। अच्छा नहीं, वो बस ऐसे ही जहन में आ गया। अच्छा बताएं बताएं, क्या कह रहे थे आप?
1: मैं सर यही कह रहा था कि बंदे को जिंदगी के अंदर जो है ना
0: हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी,
1: हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने अंदर जज्बा कायम रखना चाहिए,
0: जज्बा कायम रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब।
1: जज्बा कायम होगा तो वो कोई भी मुकाबला कर सकता है, किसी भी तरह के हालात से लड़ सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
1: जज्बा कायम होगा और वो अपने आप को यही कोशिश करे हमेशा जिंदगी के अंदर इसके हलाल कमाने की और खाने की कोशिश करे, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर कभी कोई बीमारी कोई मुसीबत नहीं आएगी। उसके ऊपर अल्लाह के ऊपर पूरा ईमान है, उसका जज्बा है कि नहीं, अल्लाह पाक जो परिंदों को और जानवरों को खाना देता है जिनको उनसे कोई मुफाद नहीं है, हम तो खाना सिर्फ मखलूकात है। हमें अपना अपने अंदर जो जज्बा है ना उसको कायम रखना चाहिए।
0: ठीक है,
1: कोई भी बंदा हो हालात से मुकाबला करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: अल्लाह पाक कब दिन फेर दे कोई पता नहीं लगता।
0: ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब, खुश रहे, आबाद रहे। आपने कॉल की, आपने इतनी खूबसूरत सी बातें हमसे शेयर की, अच्छा लगता है यार।
1: भाई आप, आपको और आपके प्रोग्राम की टीम को, जितने सुनने वाले हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम,
0: खुश रहें। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। होए होए होए, वही वाला ट्रैक बोधी जट साहब आपका, दिल की जुबानी सुनो।

0: राइट, वंस अगेन वेलकम बैक। दोस्ती वाला ट्रैक नुमान, जो तुमने मुझसे फरमाइश किया अभी दोस्ती वाला प्ले कर दे जुनैद जमशेद वाला, वो वाला ट्रैक तो मुझे मिला नहीं है, लेकिन मैंने एक और ट्रैक जुनैद जमशेद का निकाला, इसके बाद वो वाला प्ले करूंगा, ठीक है ना। टेलीफोन लाइन पे एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी कौन बात कर रहे हैं जी?
1: सर मैं लाहौर शाहजहां से मोहम्मद नवीद यूसुफ बात कर रहा
0: हूँ। नवीद क्या हाल है आपके? आप खैरियत से हो? ठीक हो?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, दम दम खुश थे,
0: हर दम खुश। अच्छा लग रहा है मुझे। बताओ यार क्या कहना चाह रहे हो आप?
1: सर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ज़िया भाई की तबीयत क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जा रही है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे।
1: आमीन आमीन आमीन इलाही आमीन, अल्लाह ताला को तंदुरुस्ती और जिंदगी अता फरमाए,
0: सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले महीने में आपके साथ होंगे इंशाल्लाह
1: इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह।
1: सर मैं तो आपको टॉपिक में कोई यही कहना चाहूंगा कि फेल होने के बाद कोशिश क्यों नहीं करता?
0: अच्छा हमें यहाँ पे नवीद एक ना न्यूज बुलेटिन की जाने बढ़ना है, हम 15 सेकंड्स बाकी रह गए हैं, सो इस्लामाबाद में अभी ट्रांसमिशन चेंज कर दी जाएगी, सो हम न्यूज बुलेटिन की जाने बढ़ेंगे। अभी आपने अगर क्या कहते हैं उसे रुकना है तो आप होल्ड पे रहिए, वरना आप बेशक कॉल डिस्कनेक्ट करके जा भी सकते हैं। मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ और डायरेक्टली हम चल रहे हैं इस्लामाबाद। अभी आपने
2: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है, शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने फ्यूल सब्सिडी से फ़ायदा उठाने वाले अफराद के लिए सहूलत डेस्क कायम करने की हिदायत की है। पाकिस्तान के खसूसी इक्तसादी जोन में भारतीय नेवी के बहरी जहाज के इश्तियाल अंगेज इकदाम पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया है। नए कारोबार शुरू करने वाली पाकिस्तानी कंपनियों को बैन अलावी रहनमाई और जिद्दत के आलमी निज़ाम तक रसाई फराम करने के लिए क्वांटम वैली पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। अक़वामे मुत्तहिदा में कश्मीरी वफ्द ने आलमी बरदारी पर जोर दिया है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। और खबरें तफसील के साथ।

0: मूसलाधार बारिश और शदीद जालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों गाड़ियों और मूसलाधार बारिश नुकसान और शदीद जालाबारी।
1: ये सच मान लो दिल ने जो कहा।
2: राइट, वंस अगेन वेलकम बैक। एक मिनट ठहरो, जरा मुझे चेक कर लेने दो नेटवर्क पे हम वापस आए या नहीं, अभी जरा चेक कर लेने दो।

उस्मान थैंक यू वेरी मच, जरूरत नहीं है तुम्हारी अभी। मैं इस चीज को जो है साइबर सिक्योरिटी का हवाला है तो इसको हम डिफरेंट तरीके से हैंडल करेंगे। सो अब्दुल नूर हाशमी साहब आपके जो मैसेजेस हैं उनके मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए, ठीक है। अच्छा एक जो है ना ट्रैक और प्ले करते हैं और बल्कि ये वाला ट्रैक कंप्लीट सुनते हैं, इसके बाद वापस आते हैं तो आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम

0: 11:11 एक और लाइव कॉल प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम रहमान अनवर साहब, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम। कौन मेरे प्यारे भाई, क्या नाम है आपका?
1: मैं मोहम्मद सलमान भाई बोल रहा हूँ लाहौर से।
0: जी सलमान भाई, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: ये दरअसल फेल होना जो ना गम की इलामत है, तो पहला गम भूलेंगे तो आगे चलेंगे ना।
0: हाँ, पहला गम भूलना जरूरी है। यस यू आर राइट।
1: मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे कुछ रकम गिर गई या किसी ने निकाल ली।
0: अच्छा।
1: तो मैं घर आया ना, तो मैं और किसी को पता नहीं चला, बड़ों को पता चल रहा। मेरे अब्बा जी कहते हैं कि यार ये चुप चुप, वो कहते हैं तू वहां जाके ना किसी बच्चे ने शरारत की थी, चुप करके खाना भी सही तरह खाता, की मसला है? मैं कोई नहीं, मैं बड़ों को क्या बताना है, मैं कोई गल नहीं, कोई ऐसा कहना नहीं यार, सारी जिंदगी कटी है, कोई गल है तू दस की गल है। और मैं क्या इतना सारा कुछ पैसे सी थे, वो यहाँ तो किसी ने कढ़ लेने थे या मेरे को दीज पैण। कहना इन्हों सोचते रहने अगे पता नहीं किन्ने लखा करोड़ा कमाने छड़ पर इन्हों दवा का, तो बड़ों की ये बात होती है। वो मैं सारा दिन परेशान रहा, उन्होंने एक मिनट में मेरी परेशानी हल कर दी। मैंने उसी वक्त झटका और आगे मेहनत की, पता नहीं कितने फिर और कमाए लाखों खाए, और उसी को सोचता रहता तो वो काम खराब था। ये है तो गम को भुलाना पड़ता है, फिर आगे इंसान तरक्की करता है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और ज़िया अंजुम साहब के लिए बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे,
0: इंशाल्लाह वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
1: आपका तीनों का जो प्रोग्राम होता है वो तो बड़ा रौनक वाला होता है, ज़िया साहब का और आरजे।
0: बस वो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए तो हम बहुत जल्द दोबारा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोबारा रौनक,
0: इसी खुशी में दोबारा स्टार्ट करेंगे, ये वादा रहा आपसे। बस वो जल्दी से ठीक हो जाए इंशाल्लाह।
1: बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जिस चीज का खदशा था वो चीज दोबारा से रिसॉल्व हो गई, लाइट आ गई। ऑलराइट।

0: नहीं उस्मान, नहीं नहीं नहीं, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, बड़ा गोश्त नहीं खाना और जो फ्रूट्स हैं वो मेरे साथ बांट के खाने हैं। वो एक अलग फ्रूट का नाम मेरे जहन में आ रहा है। ऑल राइट, एक और लाइव कॉल प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अब्दुर्रहमान भाई क्या है
0: जी? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बहुत करम बहुत एहसान। कौन बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं हाजी मुराद कोसा बात कर रहा हूँ, लियारी से।
0: जी खुश आमदेद कहते हैं। कराची का मौसम कैसा है जी? यहाँ का मौसम तो बड़ा जबरदस्त हो गया।
1: कराची में भी हल्का बारिश हो गया, फिर बंद हो गया।
0: बस यहाँ पे बारिश होने वाली है या हो रही होगी, क्योंकि मुझे अभी बताया गया कि बाहर मौसम बहुत जबरदस्त हो चुका है।
1: तकरीबन 10 मिनट तक बारिश हो गया, जमीन को थोड़ा गीला किया, फिर बारिश चले गया।
0: ठीक है, मतलब दिल खुश हुआ या नहीं हुआ?
1: बस दिल खुश हो गया, थोड़ा मौसम सही हो गया।
0: यस ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे आप प्रोग्राम में, टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि बाज़ुकात हम फेल होने के बाद किसी एक चीज में उसे दोबारा शुरू क्यों नहीं कर पाते, क्या डर होता है हमारे मन में?
1: डर हमारे को इस बात का होता है, पता नहीं दोबारा ये।
0: ओहो, कॉल कट गई। मजा आ रहा है पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से अलग अलग जगहों से कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या हाल चाल है परवीन साहिबा, आप खैरियत से हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है?
2: बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं बहुत ज्यादा ठीक हूँ आज। अच्छा। रहमान का बदला हुआ अंदाज। अरे यार क्या कहने, बहुत अच्छे लग रहे हो।
0: अच्छा,
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: ठीक है ठीक है। अब मेरे मेरे मेरे कई कई हजार रंग हैं और सारे के सारे जो है ना वो रंग सच्चे हैं। अदिल भाई लाइट आ गई है ना, सब ठीक हो गया? ठीक है।
2: आज मेहमान जिसने तुम्हारा प्रोग्राम नहीं सुना उसने समझो बहुत कुछ खो दिया, बहुत खो दिया। इसलिए अल्लाह करे कि सबकी लाइट हो, सब सुने शौक से, और बहुत सारी दुआएं वो जहाँ भी है, और तुम्हारे लिए भी बहुत सारी दुआएं। और जरा पानी पीते रहो ताकि गला सही रहे, बहुत लंबा बैठने।
0: पता ही नहीं है आपको, बॉटल पूरी भर के लाया था 1.5 लीटर वाली, वो खत्म होने वाली है।
2: और भरवा लो, और भरवा लो।
0: यस यस,
2: बहुत अच्छा शो कर रहे हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। पता है रहमान, तुम पूछ रहे हो कि नाकामी हो, एक दफा हो गई तो फिर क्या हुआ?
0: वो दोबारा शुरू करने से घबरा क्यों जाते हैं हम, वजह क्या होती
2: है? देखो हमारी कॉल नहीं मिलती ना, मगर हम मिलाए जाते हैं, मिलाए जाते हैं। कभी कभी तो मिलेगी भाई।
0: ये आपने खूबसूरत मिसाल दी है।
2: लगे रहते अगर पूरे वक्त नहीं मिली तो फिर चलो कल मिल जाएगी इंशाल्लाह।
0: हाँ, ऐसा तो है,
2: दुनिया कायम है। आज हमारा शो बहुत अच्छा हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और डॉक्टर्स के लिए बहुत सारी दुआएं, वो घूमने निकल गए, उन्हें पता चल गया बहुत बारिश हो रही है इस्लामाबाद में। अच्छा आज ना रहमान, आज खास तौर से जिया के लिए मेरी तरफ से एक सॉन्ग चला देना और जरा पूरा सुना।
0: बताएं बताएं बताएं कौन सा ट्रैक है?
2: वो है ना कि खुदा कभी ना करे गम से हमको नाराज तुझे, दुआ ये देता है दिल मेरा बार बार तुझे। तुम खास तौर से जिया का नाम लेके ना उनको कहना सुनाना, और उनके लिए मेरी बहुत ज्यादा दुआएं हैं। अल्लाह हर बड़ा आफत से बचाए और जल्द से जल्द जिया आए हमारे।
0: ये वाला ट्रैक है ना, ये जरा सुनिएगा, जरा बताइएगा।
2: हाँ हाँ प्लीज। ये बिल्कुल
0: यही। ऑलराइट ठीक है, डन।
2: आज तुम रहमान चांद हो गए।
0: अरे अरे थैंक यू वेरी मच मैडम, आप आ जाती हैं, इतनी मोहब्बतों से नवाजती हैं, अल्लाह ताला आपकी इज्जतों में हमेशा इजाफा करे।
2: आमीन, तुम्हारे लिए भी यही दुआ।
0: बहुत शुक्रिया,
2: अल्लाह हाफिज। बहुत प्यार और बहुत दुआएं। अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।

ना ना ना ना अब्दुल नूर हाशमी साहब, अब नहीं नहीं नहीं साथ चलेंगे जहां तक आप जाएंगे। राजपूत हमें मैसेज किया, राजपूत आर्मी, अच्छा ये मैंने पढ़ लिया। मेहर सर थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, ये वाला ट्रैक जो है ना ये हम पूरा सुनेंगे, ठीक है ना। मेहर कह रही है सर थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट टारजेट डॉग। सर एक रिक्वेस्ट है, खफा का ओएसटी प्ले कर दें, इट इज डेडिकेटेड टू टारजेट डॉग्स। तुम नहीं हो फिर भी हमारी महफिल में तुम्हारा नाम आ रहा है।

राइट, वंस अगेन वेलकम बैक। बहुत बहुत खूबसूरत यार, ये मुझे वाकई सुनने का बहुत मजा आया। अल्फाज मुझसे फरमाइश किया था डॉक्टर राबिया ने, कह रही हैं कि ये वाला ट्रैक प्ले कर दो। ऑलराइट, और ये वाला अंदाज तुम अच्छा लग रहा है, ये भी अंदाज तुम पे, आपने ये कहा, थैंक यू वेरी मच। लाइट फिर से चली गई। सो इस्लामाबाद वालों, स्टैंड बाय।

0: डॉक्टर सिद्रा हमारे साथ इस्लामाबाद से। बहुत खूबसूरत बोलते हैं आप, वो वाला भी अंदाज अच्छा है, ये वाला अंदाज जरा थोड़ा सा शॉकिंग था, लेकिन मजा आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता से वो मर्ज हो रहा है, तो मजा आ रहा है, दिल खुश भी हो रहा है। थैंक यू वेरी मच सिद्रा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आरजे रहमान, कैसे हैं सर? आरजे डॉक्स नहीं आए, अल्लाह पाक आप सब आरजेस को सलामत रखे, आमीन। और आप सब ऐसे ही अच्छे अच्छे शो हमारे लिए करते रहें। सर जियान जुम के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह ब्लेस यू एंड योर टीम, आमीन। थैंक यू वेरी मच उस्मा एजाज साहब, बहुत शुक्रिया। मरीना बिलाल कह रही है, साय की तरह साथ रहा तेरा तसव्वुर, तन्हाई भी हमने तन्हा ना गुजारी। टेलीफोन लाइन पे एक और कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम भाई
0: जी, कौन बात कर रही है जी?
1: जी मैं कराची से सीमा खान बात कर रही हूँ।
0: गला बहुत ज्यादा खराब है आपका भी, लेकिन मेरी तरह नहीं, मैं थोड़ा सा बेहतर हूँ, है ना?
1: सच बताओ भाई, यहाँ पे बड़ी अच्छी हुई और मैंने हमारी शादी थी कजन की, चावल खाया उसकी वजह से गला खराब है।
0: ओहो ओहो, इसलिए आपकी कम से कम तीन वॉइसेस निकल रही हैं।
1: बिल्कुल ऐसी बात
0: है। हाँ, क्या कहना चाहेंगी? लाइट फिर से आ गई, इस्लामाबाद वालों टेंशन नहीं लेनी, फिर चली गई, टेंशन ले लो। ये क्या चल रहा है? अच्छा ठीक है, बताएं बताएं क्या कहना चाहेंगी
1: जी। भाई मैंने आपकी शो दो तीन बार सुनी, तो बहुत अच्छा शो है आपका, मैंने आज कोशिश की कॉल करने की।
0: अरे बहुत शुक्रिया,
1: आपकी आवाज भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात करते हो।
0: सच में
1: जी अच्छा, भाई
0: मैं यकीन कर मैं यकीन कर लेता हूँ। अच्छा बाज़ुकात ऐसा क्या होता है कि हम एक बार किसी अगर चीज में, किसी काम में, किसी रिश्ते में फेल हो जाते हैं, तो फिर दोबारा कोशिश क्यों नहीं कर पा रहे होते हम उसी चीज को, उसी रिश्ते को, उसी ताल्लुक को, उसी काम को दोबारा करने के लिए? वजह क्या होती है, डर क्या होता है, खौफ क्या होता है?
1: भाई इतना एक बार खत्म हो जाता है उनका, दोबारा पता नहीं ऐसा हो जाएगा या नहीं। जी
0: एतबार जरूरी नहीं कि दूसरा ही, अगर आप ताल्लुक की बात कर रही हैं, रिश्ते की बात कर रही हैं, तो जरूरी नहीं कि दूसरा ही गलत करे, हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो, हम किसी के
1: सोचना भी चाहिए ये बात, शायद गलती हो जाए, आपस में सोच कर काम बात फैसला लेना चाहिए।
0: ठीक है ठीक है
1: जी भाई, और भाई मेरे लिए दुआ करना, मैं ब्लाइंड हूँ, मैं सर को भी कॉल करती हूँ, सर तो अब बहुत की दिन नहीं आया, जो रात की दिन आते हैं, उनकी भी बहुत अच्छे से, उनकी बातें भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं आप लोगों को शो सुनती हूँ, बहुत शौक से सुनती हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त नहीं है, बस मैं जब ब्लाइंड हो गई तो मेरे रिश्ता तोड़ गए सब दोस्तों से, सिर्फ मेरे माँ बाप है, मेरे बहन भाई है, और बस यही रेडियो से मेरे रिश्ता जुड़ गया।
0: ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू
1: भाई, ओके, दुआ करें बहुत अच्छे से कामयाब हो जाए,
0: खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह
1: हाफिज़,
0: अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। लाइट चली गई है, देर हो गई है, अभी आई थी फिर चली गई। अच्छा लेकिन टेंशन नहीं लेनी, मैं यहाँ पे ही मौजूद हूँ, क्योंकि मैंने अगले घंटे दो घंटे का भी ट्रांसमिशन करनी है, अगर लाइट आई तो हम ट्रांसमिशन को बरकरार रखेंगे, किसी भी वक्त हम आपसे वापस जुड़ जाएंगे, वरना इस्लामाबाद जो है वो स्टैंड बाय पे हमारे साथ रहेंगे, वहां से सॉन्ग्स प्ले होते रहेंगे बैक टू बैक, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, मैंने कहा ना टेंशन नहीं लेनी, और
2: जो कुछ मेरा है
0: सब बिग बिग गोश्त नहीं खाना, यानी बड़ा वाला बड़ा गोश्त नहीं खाना, ठीक है ना? सर मेरा ट्रैक भी प्ले कर दीजिए प्लीज, जस्ट रिक्वेस्ट, जवाद अहमद का ट्रैक। अरे अरे अरे अरे अरे, ये कैसे हो सकता है, जवाद अहमद का ट्रैक दोस्ती, ये हम कैसे ना प्ले करें?

ऑल राइट, ये वाला ट्रैक जो है ना, ये आपके लिए दोस्ती का ट्रैक, तमाम जवानों के लिए जो कि इस वक्त सरहदों पे हमारी हिफाजत पे मामूर हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। तमाम अफवाजे पाकिस्तान को मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, जी जान से, तन मन और धन से हमारी जानों की हिफाजत करने के लिए। हम बहुत गहरी नींद सोते हैं, बहुत सुकून से सोते हैं आपकी वजह से, थैंक यू वेरी मच। और सबसे ज्यादा रेडियो की लिसनरशिप जो होती है वो जवान सुन रहे होते हैं, हिस्सा नहीं ले पाते लेकिन सुन रहे होते हैं। मैं आपके साथ मौजूद हूं, ठीक है ना, आपका हम सफर बन के। वो सियाचिन में हो, बर्फ की पहाड़ियों के दरमियान में, -40 डिग्री पे, -30 डिग्री पे, -20 डिग्री पे, थैंक यू वेरी मच। जहां पे खाना जो होता है वो बिल्कुल बर्फ बन जाता है, या बलूचिस्तान में, कहीं कहीं पे भी, कहीं पे भी, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, लाइट वापस आ गई इस्लामाबाद वालों, टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं यहां पे। ये आपके लिए ट्रैक, वापस आएंगे, आधा घंटा बाकी, गला जो है ना वो बस साथ दे दे आधा घंटा, इसके बाद मैं आराम से बोलूंगा।

0: ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत हो।
1: ट्रैक है बहुत मजे का, जबरदस्त।

0: टेलीफोन लाइन पे एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन हमारे साथ?
1: वालेकुम सलाम सर, बहुत जट सर, बहुत बारिश हो रही है, तूफानी सर।
0: कहाँ कहाँ कहाँ?
1: सारे लाहौर सारे हरावी के कंडे से सर।
0: आप बोधी जट साहब गल कर रहे हैं?
1: जी जी सर जी।
0: अरे बोधी जट साहब, इधर मतलब है कि मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन मैं की करा, मैं थोड़ा साथ भी तो निभाना है ना।
1: हाँ जी हाँ जी सर, माशाल्लाह सलामत रहो। वाकई सर तुसी बारिश बड़ी इंजॉय और बहुत तूफानी बारिश हो रही सर।
0: ऑल राइट, मजा आ रहा मतलब?
1: हाँ जी जबरदस्त, शो का भी ज्यादा मजा आ रहा बॉस।
0: ऑल राइट ठीक है, फिर तो मैं कामयाब हो गया है ना।
1: हाँ जी सर,
0: तुम मेरे साथ हो तो मैं कामयाब हो गया। थैंक यू वेरी मच बोधी जट, खुश रहो, आबाद रहो।
1: खैर सर थोड़ी तो सर अर्ज डॉक्टर साहब और साडा जरूर से सर सॉन्ग तुसी लाज भी सुनाना सानू।
0: ओ केड़ा? मैं प्ले कर दिया था मैंने वो वाला ट्रैक।
1: अच्छा सर
0: हाँ।
1: डिस्ट्रक्शन बड़ी आ रही सर। अच्छा हां थोड़ी आवाज क्लियर है जी फिर।
0: अच्छा मैं फिर अगले घंटे में दोबारा प्ले करूंगा, ठीक है?
1: ओके सर, अल्लाह
0: हाफिज़। ओके ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। हाँ हो सकता है ये प्रॉब्लम, लाहौर में बहुत तूफानी बारिश हो रही है तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी पे सुनने वाले जितने भी लोग हैं लाहौर में कोई ना कोई डिस्टॉर्शन कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन डोंट वरी हम ठीक करेंगे। हमारे पास रिजवान भाई मौजूद है, अदील भाई मौजूद है हमारे पास, और अल्लाह हमारे साथ है इंशाल्लाह। इतना चीख के नहीं बोले रहमान, गला खराब है, अगला प्रोग्राम कैसे करना है? डॉक्टर राबिया टेंशन नहीं लेनी, मैंने कहा भी है नहीं लेनी टेंशन, और फ्रूट्स कभी अकेले नहीं खाना। 4471 के पैगाम आपके मुझे रिसीव हो रहे हैं, अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखिए 101 स्पेस देकर अपना नाम अपना पैगाम, उसे भेज दीजिए 4471 4471।

0: ऑलराइट बहुत बहुत कमाल का ट्रैक था ये वाला। और अब हम फरमाइश प्ले कर रहे हैं सलमा की, जिसने हमें पिशावर से मैसेज किया था 4471। करवट देखते हैं मैं कैसे बदलता हूँ, क्रिकेट की तरह रंग भी बदल लेता हूँ मैं, है ना। अब ट्रैक ये वाला आया, आवाज बात करने का स्टाइल ये वाला कर लेते हैं, कैसे बात कर लेते हैं, जैसे जैसे भी दिल चाहेगा वैसे बात कर लेंगे।
1: घरों में अपनी लड़कियों के लिए रिश्ता भेजने की औकात।
0: अच्छा, ऐसा करते हैं कि इसको देखते हैं कि

एक कॉल रिसीव करते हैं, फिर ये ट्रैक मैं जरूर सुनवाऊंगा। सलमा आपने टेंशन नहीं लेनी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज बहुत दूर से आ रही है।

0: यार मीठे में ना कुछ लेके आना चाहिए था मुझे साथ में, गलती हुई।
1: देखिए
0: अब जो है वो खांसी जो है ना वो बहुत ज्यादा हो रही है, बार बार बार बार हो रही है। अच्छा, इस ट्रैक की फरमाइश भी मुझे किसी ने की थी, खफा, और आई थिंक महर ने, यस महर ने की थी, 4471 के पैगामात में। ये मोर देन वेलकम, अगर आप भी अपने होने का हमें एहसास दिलाना चाहते हैं, किसी भी रास्ते से आना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। आप हमें मैसेज टाइप कर सकते हैं, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखिए 101 स्पेस देकर अपना नाम, अपना पैगाम, अपने मन की बात। ये आपने डेडिकेट किया आज डॉग्स को, थैंक यू सो मच सर, दिल खुश हो गया, बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह मे ब्लेस यू ऑलवेज, बिग लव, बिग रिस्पेक्ट, राजपूत नरवाल। अरे मेरे भाई, लव यू टू, थैंक यू वेरी मच।

0: तो मेरा इश्क है और इश्क भी आखिरी। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। कौन?
1: हाउ आर यू?
0: आई एम फाइन। कौन बात कर रहे हैं? क्या नाम है आपका?
1: सर माय नेम इज सलमान एंड आई एम फ्रॉम मियतनु।
0: कहां से?
1: एंड आई एम फ्रॉम मियतनु।
0: मियां चन्नू से तुम कोई सराइकी में बात करो, पंजाबी में बात करो, उर्दू में चलो रहने दो, ये इंग्लिश ही तुमने चुन ली है बात करने के लिए है। अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा।
1: सर मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मन मस्त मलंग ड्रामे का ओएसटी प्ले कर दें जरा जल्दी।
0: मन मस्त, अच्छा जल्दी जल्दी प्ले करना है, किसको डेडिकेट करूं?
1: मन मस्त मलंग।
0: हाँ मन मस्त मलंग, ठीक है। मन मस्त मलंग ये पाकिस्तानी ट्रैक है ना?
1: जी जी पाकिस्तानी।
0: ओएसटी तुमने कहा, अच्छा बस ठीक है, ओएसटी है तो फिर पाकिस्तानी ट्रैक है। डन, मैं ये वाला प्ले करता हूँ तुम्हारे लिए। ओके
1: सर।
0: ओके ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पेमेंट पहुंचा देना मुझे। Again, thanks, sir. Salute for you. Salute to you. Big love, big respect, Pakistan. Hamesha Zindabad, Rajput Narwal. Arre, love you too. Thank you, ma'am. Multan se Faryal hoon. Aapka show bahut acha hai. And pehli baar message kar rahe hain. Thank you very much, Faryal. Naam acha hai aapka. Insaan bhi achhi hi hongi aap. Ummeed hamesha achhe ki rakhni chahiye. थैंक यू वेरी मच मैसेज करने के लिए, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुमायरा हमारे साथ मौजूद, नाराज हूँ मैं। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? अच्छा होता है नाराज होना बाज़ औक़ात सेहत के लिए, है ना? यार ये ट्रैक अच्छा है, ये मैंने अगले घंटे में भी प्ले करना है। अच्छा किया मेहर तुमने मुझे इस ट्रैक की फरमाइश की। नेक्स्ट प्रोग्राम में अपने आप को डेडिकेट करूंगा मैं। बाय द वे, अच्छा अगली जो प्रोग्राम की पोस्ट है ना, वो मैं तकरीबन कोई इस प्रोग्राम से साइन आउट करूंगा मैं, यानी इस प्रोग्राम को छोड़ूंगा। साइन आउट से मुराद ये है कि अल्लाह हाफिज नहीं करने वाला। 11:55 के ऊपर मैं एक ट्रैक प्ले करूंगा, उसके बाद एक पोस्ट प्ले मैं अपलोड करूंगा। आपने जाके फौरन से उसको भी लाइक करना है और वो मेरे वाले प्रोग्राम की पोस्ट होगी। अच्छा अभी आपके एक कॉल रिसीव करते हैं, उसके बाद आपके फेसबुक के पैगाम की जाने बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है मेरे भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, जल्दी से बोलो जल्दी से।
1: कैसे आप?
0: बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक हो?
1: मैं फैसल बात कर रहा
0: हूँ। जी फैसल मेरे भाई, क्या कहना चाहोगे?
1: तो फेल होने के बाद भी हमें हिम्मत रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए।
0: अच्छा
1: तो मेरा यही है सवाल, तो फिर हम कामयाब हो जाते हैं।
0: ठीक है, फिर हम कामयाब हो जाते हैं।
1: भाई के लिए बहुत सारी दुआएं, वो उनको अल्लाह पाक सेहत याद करे।
0: आमीन।
1: आरजे डॉक्स नहीं आए?
0: आरजे डॉक्स इस्लामाबाद में मसरूफ है आज।
1: इस्लामाबाद में?
0: थैंक यू वेरी मच फैसल, अल्लाह हाफिज। एक और कॉल लेते हैं, सेकंड लास्ट कॉल इस प्रोग्राम की, नहीं उसके बाद फिर आपके मैसेज इतने ज्यादा हैं उनको भी मैंने पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम जी।

FM 101, The Sound of New Millennium. सरल संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। FM 101, The Sound of New Millennium. सरल संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

तुम्हें अगर उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। गो मेरा हाफिजा इतना अच्छा नहीं, लेकिन बचपन और लड़कपन की बहुत सारी बातें मुझे बहुत अच्छी तरह याद हैं। घर की वीरानी और अपने अकेलेपन से घबरा कर दरवाजे में आकर बैठना और गली में आते जाते लोगों के चेहरे तकते रहना बहुत सुख देता था। आज भी जब बहुत अकेला हो जाता हूं तो घर के दरवाजे में आ बैठता हूं, आते जाते लोगों के चेहरे भी तकता हूं, लेकिन बेचैनी और बढ़ जाती है। ये तो याद नहीं कि मुझे उससे मोहब्बत कब हुई। अलबत्ता ये बात मैं बड़े वसूक से कह सकता हूं कि मुझे मोहब्बत का शऊर आने से पहले मोहब्बत हो चुकी थी। आज भी मेरी आंखों के सामने है अपने अपने बड़ों की नजरों से छिपकर सर्दियों की लंबी लंबी रातें सहन में बैठे बैठे और बातें करते गुजार देना, एक दूसरे को अपनी अपनी सहेलियों और दोस्तों की बातें शरारतों के किस्से सुनाना, बहाने बहाने से एक दूसरे के हाथों से खेलना, लड़ाई झगड़ा करना और किसी के भी हार जाने पर खिल खिलाकर हंस देना गोया मामूल था। ये मामूल अब भी बरकरार है, लेकिन कुछ तब्दीलियों के साथ। अब तो ना किसी से छिपना पड़ता है और न डरना। जब भी शर्मा की लंबी रातें आती हैं, सहन में बैठा घंटों अपने आप से बातें करता रहता हूं। बेख्तियारी में अपने ही हाथों की उंगलियां मरोड़ता कहीं गुम हो जाता हूं और फिर चौंक उठता हूं जब आंखों में गर्म गर्म नमी फैलती है और रुखसार भीग जाते हैं। ऐसे में दानिस्ता और जबरदस्ती हंसने की कोशिश कितनी नाकाम और कितनी खोखली होती है, मेरे अलावा किसी और की समझ में आना मुश्किल है। एक ही शहर में रहते थे तो हजार नाराजगी के बावजूद अक्सर सरेराह मुलाकात हो जाती और अपनी अपनी अनाओं की परवाह किए बगैर आपस में बोल पड़ते। लेकिन अब तो एक मुद्दत हुई, पहले उसने शहर बदला और फिर मैंने। आज जब कभी उदासी हद से बढ़ जाती है तो दीवानावार घर से निकल पड़ता हूं, मगर सुबह से शाम तक मसरूफ और भरे पूरे रस्तों की खाक छान के जब वापस लौटता हूं तो खालीपन मजीद बढ़ जाता है और उदासी कुछ और सिवा हो जाती है। पहले जिस चीज के लिए भी दिल चाहता था, चाहे जितनी भी कीमती या अनमोल होती, हासिल कर लिया करता था, कभी जिद करके और कभी खाना ना खाने की धमकी देकर और फिर फखर किया करता। मिजाज में हठधर्मी और जिद तो अब भी वैसी ही है, लेकिन हठधर्मी सहने और जिद मानने वाला कोई नहीं। धमकी भी दे सकता हूं, लेकिन धमकी में आने वाला कोई नहीं। इसके बावजूद जो कुछ भी चाहा है जैसे तैसे हासिल किया है, और दुनिया की बेशुमार नेमतें मुयस्सर हैं, मगर वो लम्हे जो बीत गए और वो वक्त जो गुजर गया, कहां से लाऊं, किससे मांगूं।

आज के प्रोग्राम में कोई ना कोई टॉपिक जरूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और आपसे उस टॉपिक के ऊपर बहुत सी बातें शेयर करेंगे।

लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में दिल चाह रहा है कि ये ट्रैक आपके लिए शामिल करूं, इसके बाद जैसे ही लौट कर वापस आएंगे तो फिर आपसे वो बातें करेंगे जो बातें आप सुनने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, और वो सारे टॉपिक्स जो आप सुनना चाहते हैं। I'll let you know after this. दमपख्त आतश इश्क बहुत खूबसूरत ओएसटी है, इश्क ते आतश दोवे ऐन बराबर।

ऐसा है वो, गलत ही क्यों ना हो, यह हमारा मन उसमें शामिल ही क्यों ना हो, ना हो फिर भी हम कह देते हैं ना। लेकिन कभी कभी ऐसा जरूर होता है, कोई ऐसा होता है वाकई हम हमारे दिल की बात उससे कह देते हैं, हम कहते हैं मैं ठीक हूं, हालांकि हम ये सुनना चाह रहे होते हैं कि वो पूछे, अगर तो वो सामने मौजूद है तो वो जान ले हम ठीक नहीं हैं। हम कहें कि कोई मसला नहीं, हालांकि मसला बाज़ुकात बड़ा हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर कहीं बहुत कुछ टूट रहा होता है, वो कह दे क्या मसला है, क्या टूट रहा है, ठीक क्यों नहीं लग रहे मुझे, तुम्हें फ़र्क पड़ता है मैं जानता हूँ, वो कह दे। लेकिन बहरहाल

बहुत सारी बातें हैं जो मन के कैनवस के ऊपर उभर रही हैं, इधर उधर सफर कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम वाकई में झूठ नहीं बोल रहे होते, बस हम अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं, सब ठीक हो जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, जैसा भी है। इंसान आदि हो जाता है, जो होना होता है वो होकर रहता है, ये मान लेता है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें वक्त के साथ खत्म नहीं होती, वो सिर्फ खामोश हो जाती, एक पुरानी याद की तरह, एक नाम की तरह, आवाज की तरह, मुलाकात की तरह, या किसी ऐसी बात की तरह जो हमने कभी किसी से कही नहीं। लेकिन आज रात हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो किसी जल्दी में नहीं होंगी, फैसले के बगैर होंगी, बगैर उस कोशिश के कि हर एहसास को कोई बहुत खूबसूरत सा नाम दिया जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिनका नाम नहीं होता, कुछ एहसास सिर्फ एहसास होते हैं। जैसे अचानक किसी गाने की एक लाइन सुनकर किसी खास शख्स का याद आ जाना, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, याद आ जाना कि हाँ उसने गाया था। ऐसा होता है ना अक्सर, हम ऐसा सोचने लगते हैं ना, जैसे किसी पुरानी जगह से गुजरते हुए अचानक कई साल पहले उसी जगह से गुजरता हुआ वो वाला एहसास आ लेता है, मंजर उसी तरह का आंखों के सामने आ जाता है। ऐसा कई मर्तबा हमारे साथ होता है, जैसे बाज़ औक़ात फोन की स्क्रीन रोशन हो और दिल एक लम्हे के लिए ये सोचे कि ये उसका मैसेज ही होगा, ये उसी का मैसेज होना चाहिए, दिल अंदर से ये भी दुआ कर रहा होता, लेकिन फिर स्क्रीन पर किसी और का नाम देखकर खामोशी से फोन वापस रख दिया करते हैं। और कभी बहुत बहुत छोटी सी बात, बिल्कुल इतनी सी बात भी इंसान के दिल के अंदर एक पूरी कहानी खोल कर रख देती है। शायद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी जो हम दूसरों को सुनाते ही नहीं, किसी एक के सामने हम वाजे होना चाहते हैं, खुलकर अपने अंदर के एहसास को बताना चाहते हैं, वो कहानी जो हमारे अंदर चल रही होती है, कभी खामोशी से, कभी शोर से, लेकिन इस रात के पहर के अंदर ये ताकत मौजूद है कि दिल चाहता है कि वो सारी की सारी कहानियां, वो सोचें, वो ख्याल जो मन के

बस के ऊपर मुख्तलिफ रंग बिखेर रहे हैं, जुगनू की तरह टिमटिमाते हुए आ रहे हैं, याद दिला रहे हैं। वो सारी की सारी बातें कह दी जाए, चांद को बीच में लाने की कोशिश नहीं करते हम, न चांद की तरफ देखने का दिल चाह रहा होता है। बाज़ुकात दिल अजीब तरह से हो जाता है, अजीब तरह का हो जाता है। बहुत सारी महरूमियां भी बाज़ुकात हमें आड़े आ जाती हैं, ले लेती हैं अपने घेरे में। लगने लगता है कि जैसे नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी ज़ात के काबिल हूँ, ऐसा नहीं लगता मुझे। मुश्किल होता है, कुछ सच ऐसे होते हैं जिनको मान लेना चाहिए, लेकिन लेकिन दिल अंदर से ये कहता है कि ये तुम किस बुनियाद को लेकर बात कर रहे हो, किस वजह से ये बात तुम्हारे जहन में आई, तुम्हारे दिल में आई, क्यों तुमने ऐसा सोचा कि तुम डिजर्व नहीं करते। क्या दुनिया में सही और गलत के फर्क को समझा तुमने? आवाज आती है, हाँ समझ लिया। फिर आवाज आती है कि अच्छा समझ लिया, तो फिर तुमने कुछ गलत किया होगा। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ कभी। नहीं, बुरा तो किया होगा तुमने जो तुमने ये कहा कि डिजर्व नहीं करते तुम। किसी का हक मारा होगा तुमने, किसी के साथ बुरा सलूक किया होगा, किसी का फायदा उठाया होगा, किसी की मासूमियत को तोड़ दिया होगा, किसी के एहसास को रोंद दिया होगा, कुछ तो किया होगा तुमने ऐसा। आवाज आती है, नहीं नहीं नहीं नहीं, जानबूझकर या जहां तक मुझे याद है मेरी जात से ऐसी कोई चीज वाबस्ता नहीं हुई, सरजद भी नहीं हुई, सानहा भी नहीं हुआ, वाकया भी नहीं हुआ। फिर आखिर क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों दिल बार बार बार बार ये सोच रहा है? नहीं, बाज़ुकात सामने आईने में अपने आप को देख कर यह एहसास होता है कि जिस शख्स को बनाया गया था, बनाकर भेजा गया था, ये वो नहीं है, ये हमने ख़राब कर दिया, चाहे वो बॉडी वाइज हो। बाज़ुकात अपने आप को देख कर यह एहसास होता है कि अपनी केयर क्यों नहीं करते हैं। मुख्तलिफ तरह की और जस्टिफिकेशंस जो दिल के दिलासे के लिए ज़रूरी होती हैं, उनको बीच में क्यों आने देते हैं, क्यों वजह बनाते हैं किसी ऐसी बात को जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है, क्यों क्यों ऐसा करते हैं? बहरहाल जिंदगी के बहुत सारे अदवार होते हैं, बहुत सारे वाकयात होते हैं, ख्याल होते हैं जो मन के कैनवस के ऊपर ना उभर रहे होते हैं। अंदर एक जज्बा पैदा होता है, अगर सामने मौजूद इंसान ये कहे कि तुमने ये कहा है कि तुम डिजर्व नहीं करते, तो फिर इसका मतलब है कि तुमने समझा ही नहीं मुझे। मेरी आंखों से देखो कितने खूबसूरत हो तुम, मेरी आंखों से देखो कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो मुझे महसूस होती हैं, तुम्हारे अंदर कितने खूबसूरत एहसासात हैं, इज्जत कितनी करते हो तुम, तुम्हारे अंदर मोहब्बत कितनी ज़्यादा है, तुम्हारे अंदर केयर एहसासात कितने ज़्यादा हैं, कितने कॉन्शियस रहते हो तुम, कितने सेंसिटिव रहते हो तुम मेरे मामलात में, जब कभी ज़रूरत हो कभी मेरे पीछे और कभी मेरे आगे खड़े हो जाते हो तुम आकर। मेरे लिए ऐसा लगता है कि जैसे पूरे का पूरा एक ऐसा शजर हो, ऐसा दरख्त हो, जिसकी छाँव में रहते हुए मुझ पर गर्म धूप नहीं पड़ सकती और बुरी नज़र भी नहीं। अचानक इन अल्फाज के साथ दिल के अंदर यह एहसास गुदगुदाता है इंसान को कि अच्छा बस ठीक है, तो ये जो शख्स सामने आईने में नज़र आ रहा है इसको बदलना, इसके अंदर जो जो बुरा लग रहा है उसको चेंज करना है, उसको बेहतर करना है, और फिर उस काबिल बनना है कि हाँ फिर ज़माने में कोई ये ना कह सके कि साथ में मौजूद अच्छा नहीं लगता है। बहरहाल पता नहीं आज का टॉपिक क्या होने वाला है, कुछ ऐसे साथ हैं जो अंदर से निकल रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 का बराह रास्त लाहौर का स्टूडियो है और आपके साथ आपका मेज़बान रहमान अनवर मौजूद। एक ट्रैक शामिल करते हैं, गला जो है वो इतना बुरा नहीं है, बस ठीक है, बोला जा रहा है ना, बस ठीक है। एक घंटा और 18 मिनट बाकी हैं इस प्रोग्राम में, वक्त पर लगा कर उड़ेगा, पता नहीं चलेगा। अभी 12 बजे मैंने आगाज़ किया था इस प्रोग्राम का, 12:11 पे, और अभी 12:42 हो चुके हैं। नहीं पता चलेगा, मैं बता रहा हूँ, 1 घंटा और 18 मिनट कैसे गुजर जाएंगे। अगर कुछ
अंदर है जिससे मुलाकात करनी है, असल से अपने आप से मिलना है, अपने एहसास को समझने की कोशिश करनी है, जबान देना चाहते हैं, जबान देने का तरीका सीखना है, अंदाज सीखना है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप आ चुके हैं तो बिल्कुल सही जगह है। अगर कोई फरमाइश करनी है तो ये वो प्रोग्राम नहीं है। दिल की कोई बात कहना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। ज़रूरी नहीं है कि मेरे टॉपिक के ऊपर बात करें, अपने टॉपिक के ऊपर जो आप कहना चाहें, मैं वो सुनने के लिए, वो करने के लिए, उस पर बात करने के लिए तैयार हूँ। मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखिए 101 स्पेस देकर अपना नाम, अपना पैगाम और उससे भेज दीजिए 4471 4471। उधर जावेद बशीर इतना खूबसूरत ट्रैक गुनगुना रहा है, ये पूरा सुनना मुझे। मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखिए 101 स्पेस देकर अपना नाम, अपना पैगाम और उसे भेज दीजिए 4471 4471। ये वो पहर है जिसमें अंदर के एहसासात अल्फाज की जबान ओढ़ कर आते हैं, अल्फाज का लिबादा ओढ़ कर आते हैं और सारी बातें कहते हैं, कोई एक बात छुपाते नहीं है, यहाँ पे रोका नहीं जाता, इजाजत अगर मिल चुकी होती है तो जबान जारी हो जाए और उसका इनाम हो जाए तो फिर सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। इसके साथ साथ सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज facebook.com/FM101 लाहौर, वहाँ पे पोस्ट पिन कर दी गई है और आज का जो शेर है, दो अशार हैं, नए शायर हैं, नाम मेरे जहन में नहीं रहा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे ये शेर इतने पसंद आए, उनका ख्याल पसंद आया और लगा कि जैसे वाकई में ये मैंने कहीं सुना है। मेरे सामने वो फिल्म चलने लगी, 3 घंटे की मुलाकात थी और मेरी तरफ, 3 घंटे की मुलाकात थी और मेरी तरफ आखिरी 3 मिनट ध्यान किया है उसने, छोड़कर मुझको तुम्हें उसने चुना, हैरत है। छोड़कर मुझको तुम्हें उसने चुना, हैरत है, यानी नुकसान पे नुकसान किया है उसने। आइएगा इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आकर लिखिएगा अपने मन के अहवाल, बताइएगा इस पहर में कौन सी यादें हैं मेरी बातें सुनने के बाद जो वाह हुई हैं, एहसास मिला है कि हाँ कुछ कहना ज़रूरी है, अंदर कुछ ट्रिगर हुआ है, कुछ ऐसे कसक सी हुई है, कुछ बोलना ज़रूरी है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। This side, I'm waiting for you.

बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं ये, अगर हमारी जात की हकीकत से हमें कोई मिलवा दे और पूरी सच्चाई के साथ, उसे हमसे कोई मफाद ना हो लेकिन हमारा साथ उसे दरकार हो। हमें ये एहसास जब मिल जाए कि कोई इंसान इतने मुखलिस होकर हमारे साथ हमें बेहतर बनाने के लिए कोशिश में लगा हुआ है, हमारा साथ निभा रहा है, अपना वक्त हमें दे रहा है और हमें वक्त दे रहा है कि हम बदलें, हम ठीक हो जाएं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलत होते हैं। हमारा ज़मीर, हमारा एहसास हमें ये बता रहा होता है कि हाँ, यहाँ पे तुमसे गलती हुई है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कोई मसला है ना। अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो हमारी गलतियाँ हमें बता रहा हो और हमें बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हो, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होता है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने पता नहीं कभी लिखा था शायद कि पसंदीदा शख्स के दिल का हमारी ज़ात के लिए धड़कना ये अताए रब्बी है, और इससे बेहतर इस इम्तिहान गाह में कोई सवाल नहीं हो सकता कि उसने उस दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया हमारे नाम के साथ, जिसके नाम का हमारे दिल पे पहरा है, जिसके नाम से हमारे दिल की धड़कन चलती है, हमारी सांस चलती है, हमारा उठना बैठना और मामूल के मुताबिक नॉर्मल रहते हुए बात करना, वरना पागल भी तो हो सकता है इंसान, है ना। अली ज़रियून का एक शेर याद आ गया मुझे कि पागल कैसे हो जाते हैं, पता नहीं अगला मिसरा क्या है, कि मुझे देखो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे कुछ है। हमारे सारे काम खुदा करता है, तुम्हारे वैसे हो जाते हैं। वाह, अच्छा शेर है यार।

FM 101, The Sound of New Millennium. सरोर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। FM 101, The Sound of New Millennium. सरोर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

पूरे पाकिस्तान में सुने जाने वाली आवाज का नाम रहमान अनवर है। ये प्रोग्राम है अधूरी बातें और बातें चल रही हैं मेरे और आपके दरमियान में। वलीद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। वलीद कुरैशी कहते हैं, मैं जब जब भी आपका स्टेशन सुनता हूं यहां सियालकोट में सिग्नल चले जाते हैं फिर बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि सियालकोट में सिग्नल्स जो है ना वो ना जाएं। आप ऐसा करें, हमें माफ़ कर दें। खुदा का वास्ता है, इन सियालकोट वालों को बताएं कि ये स्टेशन को बंद ना करें प्लीज़। एक ही तो स्टेशन है 101 जो मज़ा कराता है सुनने में। अच्छा, वाह वाह वाह, नहीं स्टेशन बंद कैसे हो सकता है, 101 अब तो आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब तो हम पूरे पाकिस्तान में, बहुत जल्द आपको बहुत सी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, पूरे पाकिस्तान में नस्ब हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें, तो हम पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह लार्जेस्ट नेटवर्क तो है ही हम, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान में कोई एक जगह, कोई एक ज़िला, कोई एक देहात, कोई एक ऐसा कस्बा नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे हमारी आवाज़ नहीं जा रही, जहाँ पे हम आपका साथ निभाने के लिए मौजूद नहीं है। बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। बाय द वे, वाह रहमान भाई क्या अंदाज़ है आपका, आप तो छा गए हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है, मैंने आपका शो पहले क्यों नहीं सुना, प्लीज़ टाइमिंग बताइएगा अपने शो की। सलमा, सलमा एवरी ट्यूसडे वेनसडे एंड थर्सडे, हर मंगल बुध और जुमेरात की रात 12 से लेकर 2 बजे तक मैं आपका साथ निभाया करता हूँ। मंगल मैंने इसलिए रखा है कि अभी मेरे मोहतरम, मेरे प्यारे भाई, मेरे कोलीग आरजे ज़ियान जुम इस महीने में मंगल की रात को वो प्रोग्राम किया करते हैं 12 से 2, वो मौजूद नहीं है, तो इसलिए मंगल भी मैं कंडक्ट कर रहा हूँ उनका प्रोग्राम, उनकी इजाज़त के बाद या फिर उनके हुक्म के बाद। उन्होंने कहा रहमान तुमने करना है मेरा प्रोग्राम, मैंने कहा ठीक है रहमान तुमने ही करना मेरा प्रोग्राम, मैं कह रहा हूँ ना तुमने करना है। ज़िया अगर तू सुन रहा है ना, हाँ बाय द वे ठीक है, लव यू ज़िया। अच्छा, ये 3 दिन हमारी मुलाकात होती है, मंगल बुध और जुमेरात की रात 12 से लेकर 2 बजे तक। जुमेरात को अक्सर मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि अभी मैं ज़िया का प्रोग्राम कर रहा हूँ इस वजह से, लेकिन इंशाल्लाह अभी नहीं करूँगा स्किप क्योंकि उसमें हम अफसाना पढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आज इस्लामाबाद में आपका चैनल की आवाज़ नहीं आ रही है, ज़रा चेक करवा लें प्लीज़। सैयद अदील इकबाल शाह, इस्लामाबाद बड़ा प्रोमिनेंट वहाँ पे नेटवर्क है और हमारे जो प्रोडक्शन स्टाफ है, हमारे जितने भी टेक्निकल स्टाफ के मेंबर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे होते हैं। आपके सिग्नल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन हम कोशिश करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हमारी तरफ से है तो हम उसको सॉर्ट आउट करें। रिजवान भाई इस बात को सुन भी रहे हैं, लाहौर में हमें मुआवनत दरकार रहती है और हासिल रहती है मुझे, और मोहब्बत भी उनकी हासिल रहती है रिजवान भाई की, सो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नासिर अली हमारे साथ हैं, कह रहे हैं इंसान इश्क मिजाजी की इंतहा पर अपनी ज़ात खो देता है। अरे अरे अरे अरे वाह वाह वाह वाह, अच्छी खूबसूरत बात। मोहम्मद नासिर अली कह रहे हैं इश्क, इंसान इश्क के मिजाजी की इंतहा पर अपनी ज़ात खो देता है, इश्क के मिजाजी, वाह वाह वाह, लेकिन आपने मिजागी लिख दिया है, मजागी, मिजाजी लिखना है आपने, ठीक है ना, मजाज, मजाज जो वजूद में मौजूद हो उसे कहते हैं, जिसका वजूद एग्जिस्ट करता हो इस दुनिया, इस वक्त का हिस्सा हो वो भी, समझ रहे ना बात, ये इश्क मजाजी की बात है कि इंतहा पर इंसान अपनी जात खो देता है, यही इंतहाए इश्क है कि अपनी जात फना हो जाए और महबूब की जात अपनी जात लगने लगे, अपनी जात वही हो जाती है फिर, मुझे लगता है वो वही हो जाती है, हम नहीं रहते, तुम हो जाते, तुम्हें पता है ना।
अस्सलाम वालेकुम, मैं यासर पाक आर्मी से हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत सुकून है आपके लहजे में, बहुत अच्छा टाइम गुजरता है आपके साथ, वक्त का पता ही नहीं चलता। तो मेरा इश्क है तू और इश्क भी आखिरी, तू मेरा इश्क है और इश्क भी आखिरी। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी ये वाला ट्रैक मैंने शायद लगाया हुआ था, तू मेरा इश्क है, मोहब्बत उसने कहा था वैसे, लेकिन तू मेरा इश्क है और इश्क भी आखिरी। वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात। 4471 पर आपके पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं, तो जल्दी से हमारे जितने भी पैगामात आप देना चाहें, ये सबसे पहला जरिया है जिसके ज़रिए से आप हमें अपने होने का एहसास दिला सकते हैं और हम सबसे पहले यहाँ के मैसेजेस रीड आउट करते हैं। 101 लिखकर, स्पेस देकर, अपना नाम, अपना पैगाम, सवाल का जवाब, अपने मन की कोई भी खूबसूरत सी बात, कि इंसान अपनी ज़ात को कब खो देता है, कब हम अपनी ज़ात को खो बैठते हैं, ये सवाल है आज का। दूसरों को खुश करते करते अपनी असल ज़ात कहाँ छोड़ आते हैं, ये आज का सवाल है। तो जवाब देना चाहिए, मोर देन वेलकम। अच्छा जी, ठीक है, मुझे पता है मैंने कुछ पैगामात जो हैं वो पिछले प्रोग्राम के जो पोस्ट थी उसमें मैंने नहीं पढ़े, तो वो मैं पढ़ूंगा ज़रूर। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं पढ़ूं नहीं, तो परेशान मत हूँ आप सब, ठीक है ना, सारे मैसेजेस पढ़ूंगा, ठीक है। और इस प्रोग्राम के जो मैसेजेस हैं वो भी पढ़ूंगा मैं।

बहरहाल उमर बसरा हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं डीजे रॉकस्टार, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया उमर, खुश रहो आबाद रहो, हमेशा हमेशा खुश रहो, थैंक यू वेरी मच। आसिफा सिद्दीकी हमारे साथ हैं, पहली बार आपको सुना है, मैं शायरी लिखती हूं और पढ़ती भी हूं, आपका अंदाज बहुत जुदा और बहुत खूबसूरत महसूस हुआ है, तो क्या आप मुझ पर एक इनायत कर सकते हैं, मेरी लिखी हुई शायरी अगर आपकी ज़बान से अदा हो तो मुझे लगता है उसे जान मिल जाएगी। अरे बहुत बड़ी बात कही है आपने, ज़रूर भेजिएगा मुझे, मैं ज़रूर पढ़ूंगा, ठीक है ना। और आपके आगाज़ से मुझे ये महसूस हुआ कि आपको नज़मियात में ज़्यादा दिलचस्पी है, जी हाँ नज़में मुझे बहुत पसंद हैं, मैं बहुत नज़में पढ़ता हूँ, तो शायरी की ये जो सिन्फ है नज़्म, ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है ना। सो अगर आप नज़में लिखती हैं तो फिर तो बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन जेंडर की कैद से आज़ाद होकर, क्योंकि मैं कहती हुई अच्छा नहीं लगता ना यानी कि इसको आपके नाम से मैं पढ़ सकता हूँ, यानी कि आपने मुझे भेजी है तो वो नाम लेकर के, हाँ एक लड़की ने लिखी है तो वहाँ पे कह, ज़्यादातर लड़कियाँ जो हैं वो कहती लिख देती हैं क्योंकि उनकी ज़ात का हिस्सा है वो, लेकिन मुझे लगता है इसको जेंडर की कैद से आज़ाद होना चाहिए ताकि कोई भी पढ़ सके अपने, शायद वो ट्रिगर हो जाए, कोई हमारे अंदर भी वो वाला पॉइंट मौजूद हो, या हमारे अंदर भी हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी सिफ्त या ज़ात में कोई ऐसा हिस्सा ज़रूर होता है जो उस एक पॉइंट से जाकर ट्रिगर हो जाता है, हो सकता है। और एक लास्ट फरमाइश ये है सर कि अगर आप ये दो शेर जो आपने दो मरतबा पढ़े हैं एक बार और पढ़ दें, क्योंकि बहुत खूबसूरती से पढ़ते हैं आप। कौन से शेर, अच्छा ये जो मैंने लगाया स्टेटस पे, अच्छा अच्छा ठीक है, 3 घंटे की मुलाकात थी और मेरी तरफ, 3 घंटे की मुलाकात थी और मेरी तरफ, आखिरी 3 मिनट ध्यान किया है उसने, छोड़कर मुझको तुम्हें उसने चुना, हैरत है, यानी नुकसान पे नुकसान किया है उसने। आरजे नेहा हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मलिक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी हमारे साथ मौजूद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें आबाद रहें। डॉक्टर राबिया कह रही हैं ये है हमारे रहमान का अंदाज जो दिल को सुकून देता है। अच्छा हर रंग मेरा वैसे सच्चा है, राबिया ऐसे मत करो ठीक है, मेरे रंगों को तफरीक में मत डालो कि वो हर रंग, क्योंकि मैं जो भी यहाँ पे प्ले करूँगा वो कोई बनावटी नहीं होगा, वो मेरे अंदर का हिस्सा होगा, तो पिछले प्रोग्राम में जो मैंने प्ले किया वो प्ले नहीं किया वो भी मेरी ज़ात का शरारतीपन है, हिस्सा है। बहरहाल कभी कभी इंसान चीखना चिल्लाना चाहता है तो बेस्ट वे यही है कि इस तरह से चीखा चिल्लाया जाए कि लगे कि प्रोग्राम कर रहा है कोई नवीद नौशाद खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, वैसे म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर भी हैं, अच्छा गाया, हारी हारी

FM 101, The Sound of New Millennium. सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। FM 101, The Sound of New Millennium. सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

नेमल हमारे साथ हैं। नेमल कह रही हैं, जब्त कुछ इस तरह आजमाऊंगी, खुद अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। वाह, अभी एक मैसेज आया है मुझे, लिखा है कि भाई पाक आर्मी के लिए कुछ ख्यालात का इजहार प्लीज। हाय पाक आर्मी, वैसे मैं सिर्फ एक लफ्ज कहूं तब भी उसमें सब कुछ आया हो जाएगा, लेकिन एक लफ्ज नहीं, यहां पे बहुत कुछ कहूंगा मैं। पहचान, पाकिस्तान की पहचान। इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, हमारे मुल्क के पास ऐसी मजबूत पूरी यकीन काबिले एतबार और अल्लाह के, हमारे मुल्क के पास ऐसी मजबूत पूरी यकीन काबिले एतबार

और इंटेलिजेंस के वो लोग, वो दोस्त, वो अहबाब जो इतनी मोहब्बतों से 24/7 कुछ लोग हमें सुन रहे होते हैं, हर लम्हा एक एक खबर, एक एक लफ्ज़ पे नज़र होती। मैं दिल की गहराइयों से आपको सल्यूट पेश करना चाहता हूँ और दोनों हाथों से कि हम यहाँ पे आज़ादी के साथ सांस लेते हैं, बोलते हैं और आप वहाँ पे अपने सीने के ऊपर गोलियाँ भी खाते हैं, हमारे लिए शहादत के दर्जे को पाते हैं और बाज़ोकात गाजी बनकर वापस लौट आते हैं, बस चंद महीनों के लिए, कभी 15 दिनों के लिए, कभी 1 महीने के लिए, और फिर उन 15 दिनों में, 1 महीने में अपने घर की वो तमाम जिम्मेदारियाँ और तमाम खुशियाँ समेट कर वापस लौट जाते हैं अगले 11 महीनों के लिए, अगले 6 महीनों के लिए, अगले 3 महीनों के लिए, अपने अपने बॉर्डर पर, अपने अपने कामों पर वापस लौट जाते हैं। क्या कहूँ मैं आपके लिए, और जितना भी कहूँगा कम है, लेकिन आपका हिस्सा ज़्यादा है दिल के अंदर, हमेशा आपका हिस्सा बहुत ज़्यादा है। सो पाक आर्मी के तमाम जवानों को, तमाम लोगों को, वो सिर्फ जवान नहीं, जवानों से मेरा मुराद ये होता है कि हर जेंडर उसमें इक्वली आ चुका। हमारी ख़वातीन भी हैं, मरियम साहिबा का अगर नाम लूँ, पहली हमारी फाइटर पायलट जो शहादत के रुतबे को पहुँचे, और उसके बाद कितनी बेटियाँ हैं जो इस जगह पे मौजूद हैं, ऐसे फोर्सेस का हिस्सा बनती जा रही हैं। और हर जेंडर को मैंने इक्वली, मैंने बीच में टारगेट किया कि आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान अनवर दिल की गहराइयों से आपको सलाम कहता है, मोहब्बत भरा सलाम कहता है पूरी कौम की तरफ से। इस वक्त पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, और 70 से ज़ायद मुल्कों में डिश पे हमें सुना जा रहा, तो हम पूरी कौम की तरफ से आपको सल्यूट है, सलाम है। ठीक है ना? बाय द वे, एक 1:35 वक्त पर लगाकर उड़ रहा है, और टॉपिक के ऊपर मैंने अभी तक बहुत कम बात की है ना, गले की वजह भी हो सकती है, ये बातें इधर उधर भी चली जाती हैं, वो भी वजह हो सकती है, पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने अभी अभी यहाँ पे ही तो रखा था।

ठीक है। मेरा दिल चाह रहा है कि अली सीठी की खूबसूरत आवाज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊं, और इधर उधर की बातें भी होती रहेंगी, बहुत सारी बातें हो भी रही हैं वैसे, लेकिन ऐसा है कि दिल चाह रहा है ये वाला ट्रैक मुकम्मल सुने हम, और बहुत बहुत खूबसूरत ट्रैक है, लेकिन मेरा दिल ये चाह रहा है कि इस ट्रैक के साथ साथ मैं थोड़ा सा अपनी आवाज़ को रेस्ट दूँ, और फिर एक भरपूर तरह की कन्वर्सेशन जो है अगले कोई 5-10 मिनट हम एक दूसरे के साथ इस टॉपिक के ऊपर खुलकर बात करें। और आपके जो मैसेजेस हैं वो मुझे 4-4-7-1 पर मौसूल हो रहे हैं, थैंक यू वेरी मच गाइस। और facebook.com/FM101 लाहौर के ऑफिशियल फ़ैन पेज पे आपके होने का एहसास मुझे मेरे होने के एहसास से मिलवाता है। साथ में भाई

1:50 पे मैं आपके सारे मैसेजेस दोबारा से रीड करूँगा फेसबुक के, तब तक आप अपने तमाम पैगाम जो हैं वो facebook.com/fm101 लाहौर के ऑफिशियल फैन पेज पे मुझे पहुंचा सकते हैं मेरी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में। दो पोस्ट हैं, एक तो 10 से 12 वाली है और एक 12 से 2 वाली है। 12 से 2 वाली में भी कर सकते हैं, 10 से 12 वाली में भी कर सकते हैं।

0: उसका इंतज़ार कर रही हूँ।
1: थैंक गॉड शी इज़ हियर। सिस्टर मैं आपका 2 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ।
2: साजो आवाज़, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सवाल ये पूछा है आपसे कि इंसान कब खुद को खो देता है और दूसरों को खुश करते करते अपनी असल जात कहाँ छोड़ आता है। ये आपसे सवाल पूछा मैंने।

बाज़ औक़ात ऐसा है, होता है हमारे साथ कि हम सवालात के जवाब देते रहते हैं। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, नौकरी कैसी चल रही है, शादी कब कर रहे हो, ये काम क्यों नहीं करते, वो काम क्यों नहीं करते, अच्छा यार उसे क्यों छोड़ दिया तुमने, वो तो बड़ा अच्छा काम था, लोगों के साथ मिलते क्यों नहीं, इतने खामोश क्यों रहते हो, वजह क्या है, इतना सोचते क्यों रहते हो। और हम जवाब देते रहते हैं, कभी सच्चा जवाब होता है, कभी झूठा जवाब होता है, कभी आधा सच्चा होता है, कभी आधा छुपा हुआ होता है, कभी वो जवाब जो सामने वाला सुनना चाहता है, कभी वो जवाब जो हम उसे बताना नहीं चाहते, उसके अलग मफरूजे हम घड़ लेते हैं। इसी तरह बहुत आहिस्ता से, पता ही नहीं लगता हमें कि एक अजीब सी चीज़ होने लगी है, हम दूसरों को सवालों के जवाब देते देते अपने सवाल भूल जाते हैं। इस जगह से इंसान खुद को खोना शुरू कर देता है, जब अपने सवालात जो सही और असल सवालात हैं वो भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खुद को खोना किसी बहुत बड़े सानहे से शुरू होता है, वो भी सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, कभी कभी ये बहुत मामूली सी बात से शुरू हो सकता है। एक बार आपने अपनी पसंद छोड़ी किसी दूसरे की खुशी के लिए, और फिर दूसरी बार छोड़ी, फिर तीसरी बार भी छोड़ दी, फिर एक दिन अचानक आपको याद ही नहीं रहता कि आपकी पसंद क्या थी। दिस इज हाउ वी स्लोली डिसअपीयर फ्रॉम आवर ओन लाइफ, बगैर शोर के, बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी एहसास के। ये भी एहसास नहीं होता कि कुछ गलत हो रहा है, हम सिर्फ एडजस्ट करते चले जा रहे होते हैं, कंप्रोमाइज करते चले जा रहे होते हैं, कोई बात नहीं, उसे बुरा लग जाएगा यार, चलो मेरी कोई बात नहीं, मेरी बात बाद में है, वो खुश है तो सब ठीक है, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, सब यही तो करते हैं, मुझे भी यही करना चाहिए, मैं कौन सा कोई सुरखाब के पर लगा कर उतरा हूं, नहीं तुम उतरे हो, सच कह रहा हूं, है ना। इन छोटे छोटे बातों के दरमियान हम अपनी जात के कितने हिस्से पीछे छोड़ आते हैं हमें पता भी नहीं चलता। आप एक बार कोशिश तो करें अपने बचपन को याद करने की, वो बच्चा कैसा था जो बचपन में था, जैसे शायद किसी ने कभी बताया नहीं था कि बड़ा होकर उसे क्या बनना है, वो बच्चा जिसे किसी खास लिबास की फिक्र नहीं होती थी, जिसे ये नहीं सोचना पड़ता था कि तस्वीर में वो कैसा लग रहा है, जिसे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती थी। अस्सलाम वालेकुम, वसीम भाई तशरीफ ला चुके हैं, दूसरी तरफ शीशे के उस पार मुझे दिखाई दे रहे हैं खूबसूरत से इंसान, थैंक यू वेरी मच। बस सबसे तकरीबन कोई 12 मिनट के बाद आपका साथ निभाएंगे ऊंचा शौक में। उस बच्चे की बात कर रहा था, बचपन वाला बच्चा, आपके अंदर कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी ज़रूर हुई होगी, टाइम बहुत कम है हमारे पास, वो बच्चा जिसे कोई चीज़ कभी पसंद आ जाती थी तो बस पसंद आ जाती थी, उसके लिए ये मायने नहीं रखता था कि महंगी है, सस्ती है, कैसी है, बस उसे पसंद आ गई ना, चाहे उसे लाख माँ बाप ये समझाते रहें कि यार ये बहुत कम कीमत है, इतनी कोई अच्छी नहीं है इसकी क्वालिटी, लेकिन मुझे पसंद आ गई है बाबा मामा, दे दे मुझे, दिला दे मुझे, बस फिर दिलानी पड़ती थी, ये उसका अपना आप था, उसकी मर्जी थी, अपने आप को जानता था वो। और फिर अगर कोई चीज पसंद नहीं भी आती थी तो साफ कह देता था नहीं मुझे नहीं पसंद। फिर अचानक से वो बच्चा बड़ा होने लगता है, फिर उसे ये सिखाया जाता है ये अच्छा है ये बुरा है, ये इज्जत की बात है, ये लोग पसंद नहीं करेंगे, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बोलो, ऐसे कपड़े मत पहनो, लड़कियों को अक्सर ऐसा कहा जाता है, इतना मत हंसो, इतना खामोश भी मत रहो, अचानक इस तरह से तुम कैसे बैठ सकते हो, लेट कैसे सकती हो तुम, सिमट कर बैठा करो, लेटा करो, अच्छा ठीक है, कुछ बातें ठीक भी हैं,
ये कैरियर तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, ये कैरियर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये रिश्ता अच्छा है वो अच्छा नहीं है, ये शख्स तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, ये कपड़े लोग पसंद करेंगे, ये वाले पहन लो, हाँ ये बात फैमिली को अच्छी नहीं लगेगी। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, हम अपने अंदर एक छोटा सा जज पैदा कर लेते हैं। अब कोई हमें कुछ कहे या ना कहे, हम खुद को मॉनिटर करते रहते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा बोल रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या मैं काफ़ी अच्छा हूँ, क्या वो मुझसे खुश होंगे या नहीं हैं, क्या मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरूंगा या नहीं। हाँ जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, ये बाज़ औक़ात इंसान को जो है ना वो अपने आप से बाहर भी निकाल देते हैं, अपने ऊपर यकीन और एतमाद ख़त्म भी कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये यकीन दुगना भी कर देते हैं। नज़रिए की बात है, सोच की बात है, मुखलिस होने की बात है, आपके साथ कोई कितना खालिस है, आपको वो क्या तब्दील करना चाह रहा है, किस तरह से करना चाह रहा है। लेकिन जब हम ये सोच लेते हैं ना कि हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरे या नहीं उतरे, बड़ी ख़तरनाक तब्दीलियां शुरू होती हैं हमारी ज़ात के अंदर। हम अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है यकीन करें, ये जो छोटे छोटे मामलात लिए बैठे होते हैं ना, अपने दर्द अपने दुख, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम अपने अंदर समो लेते हैं, बहुत खूबसूरत है। ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करने की बजाय हम उसे परफॉर्म करने लगते हैं किसी प्ले की तरह, हम जीने से ज़्यादा अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखने लगते हैं। We stop asking what do I want? And start asking what will people think? बहुत खामोश सी कैद है, लेकिन बहुत बुरी और बहुत सख्त कैद है। इस कैद की जो दीवारें हैं बाहर नहीं होती, हमारे अंदर कहीं छुपी हुई होती हैं। हमें कोई जंजीर नजर तो नहीं आती, लेकिन हम आजाद भी नहीं होते। बहरहाल बातें बहुत लंबी हो रही हैं, प्रोग्राम का नाम है अधूरी बातें। टॉपिक मैंने बहुत लेट मैंने इसके ऊपर अपनी राय, अपना सोच, अपना ख्याल पेश किया। बहरहाल इसको आगे बढ़ाएंगे कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह। कल मैं आऊँगा इंशाल्लाह, यस पक्का कल मैं आऊँगा, सच कह रहा हूँ। कल मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा और फिर इस बात को आगे यहाँ से ही बढ़ाएंगे, हम इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कहना कि यार ये कल हमने सुना था, इसको आगे लेके चलेंगे फर्दर। वैसे तो मैं अगर कल भी इस टॉपिक को लेके आऊँ तो वो डिफरेंट तरीके से आपके सामने आएगा, क्योंकि फिलबदी होता है, पता नहीं होता क्या निकलने वाला है, क्या होने वाला है। अच्छा ठीक है, अब आपके मैसेजेस की तरफ आता हूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत कम रह गया है और मैसेजेस जो है ना बहुत सारे हैं मेरे पास। और वैसे भी आप जानते हैं दू हमारे पास पोस्ट मौजूद हैं जिनमें आपने अपने होने का हमें एहसास दिलाया। सो मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी कि कोई भी एक मैसेज भी जो है वो आपका छूटे या फिर मैं वो देख ना पाऊँ, मेरी नज़र से गुजरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो हम ऐसा करते हैं कि ये वाला जो ट्रैक है ना इसको हम रखते हैं बैकग्राउंड पे और उसके साथ साथ फिर हम आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ना ये वाला ट्रैक मुझे लड़ा हुआ है मुझे। यस ये वाला ट्रैक महर ने मुझसे ये फरमाइश किया था। महर थैंक यू वेरी मच यार, तुमने अच्छा ट्रैक मुझे तजवीज़ किया, अच्छा है यार, मज़े का है, पसंद आया मुझे। चलो तुम्हारे मैसेजेस की तरफ आता हूँ। सबसे पहले वो मैसेजेस जो आपने मुझे दिए मेरी दूसरी पोस्ट के ऊपर, जो कि 12 से 2 वाली पोस्ट है जिस पे शेयर मैंने लिखे हुए हैं, अधूरी बातों वाली पोस्ट। तो कमेंट किया सबसे पहले मरीना बिलाल ने, अस्सलाम वालेकुम अर्जुन रहमान, वेलकम मरीना फ्रॉम लाहौर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैं मरीना बिलाल हमेशा कह देता हूँ, पहले ये बिलाल हुआ करती थी मरीना बिलाल, अब जो है वो बिलाल इसने निकाल दिया, ए लगा दिया। बहरहाल मरीना थैंक यू वेरी मच। हिरा फातिमा हमारे साथ हैं, अभी आपका शो सुन रही हूँ सर, रहमान अनवर, थैंक यू वेरी मच हिरा। जब आपके मिजाज के इंसान नहीं मिले आपको, जब आपके मिजाज का इंसान नहीं मिले आपको, तब ही आप अपने आप को खुद खो देते हैं। अगर मिजाज मिल भी जाए तो वो तुम्हें ख़राब, वो टाइम ख़राब होता है। यार हिरा खूबसूरत बात, हिरा कह रही है एक ब्यूटीफुल, एक वफ़ादार
जीत वफादार होते ब्यूटीफुल की शादी हो जाती है। एक ब्यूटीफुल, एक वफादार। जीत वफादार होते ब्यूटीफुल की, अच्छा ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, हैरा दोबारा बताना मुझे। जुगनू जूनियर हमारे साथ हैं, अनिला आपी, हमीद गुल, फरिया आपी, रजा चौधरी, सजाद अली लाडला, मरियश मारिया शहजादी, मोहम्मद शहजाद, तारिक भाई और दोनों तारिक, शमीम आपी, अब्दुल हमीद बर्फी वाले, लियाकत भाई, बूदी जट, नज़ीर खोसो, फरजाना रिमशा लाहौर से, उस्मान मुगल, अमारा बेग, हनीफ ड्राइवर, सलीम दर्जी, मरीना, ये देखो मरीना बिलाल इसने लिखा हुआ, रियाज भट्टी, किंजा उस्मान और तमाम खूबसूरत समातों की खदमत में मोहम्मद इकबाल मुग़ल का आजाना सलाम पेश है, कबूल फरमाए। मोहम्मद इकबाल मुग़ल, जुगनू जूनियर, अंदरून लोहारी गेट, लाहौर। थैंक यू वेरी मच। उज़्मा एजाज़ कह रही है अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ रहमान, वेलकम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने गज़ल भेजी, टाइम कम है नहीं पढ़ पाऊँगा। जुगनू जूनियर ने भी गज़लें भेजी, कल के प्रोग्राम में पढ़ेंगे, सारी पढ़ेंगे। साइम तबस्सुम कह रहे हैं बर्देश में बैठे हैं दिल पाकिस्तान में, रहमान अनवर की आवाज़ का अपना ही एक जहां है, प्रोग्राम बहुत खूबसूरत, अंदाज भी लाजवाब, नवाजिश अली तबस्सुम पेरिस फ्रांस से, नवाजिश, अच्छा लाजवाब, नवाजिश अली तबस्सुम या नवाजिश अली तबस्सुम, समझ नहीं आ रहा मुझे, पेरिस फैसला फ्रांस से। साइम थैंक यू वेरी मच, खूबसूरत लफ्ज़ बोले तुमने मेरे लिए। उज़्मा एजाज़ ने एक और गज़ल भेजी, नहीं पढ़ पाऊँगा टाइम कम है। उज़्मा एजाज़ के बहुत सारे मैसेजेस हैं, हार्ट्स भेजे हैं आपने, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये कुछ आपके पैगाम थे, यहाँ के जो नाम है वो पहले ले लेता हूँ फिर उसके बाद दूसरे लूँगा। किंजा उस्मान हमारे साथ, जुगनू जूनियर, मरीना, हेरा फातिमा, रुखसार अली, फैसल अब्बास, उज़्मा एजाज़, थैंक यू वेरी मच। जब मैं ठीक पढ़ रहा हूँ मुझे बता देना कि मैंने कोई मैसेज मैंने कोई छोड़ तो नहीं दिया ना। चार मिनट बाकी, वक्त बहुत कम है, मुकाबला सख्त है, सो लेकर इसी तरह से चलते हैं। नहीं यहाँ से नहीं छूटा, अब चलें जी दूसरे वाले पोस्ट के मैसेजेस जो है ना वो दोबारा से एक बार कम्प्लीटली पढ़ते हैं और एक भी मैसेज हमसे छूटने नहीं पाए, 37 मैसेजेस हैं, चलें देखते हैं, ट्राई करते हैं, इनमें से दो तीन तो मैंने जो पोस्ट पे किए वो अलग है। अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अर्ज रहमान, वेलकम, मरीना फ्रॉम लाहौर, थैंक यू वेरी मच। नुमान आदिल, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम कराची, कराची अच्छा है, दीवानगी सॉन्ग प्ले कर दिया मैंने, अच्छा। नुमान आदिल, घबराता इसलिए है हम कि आगे बढ़ना नहीं चाहते, माजी में खुश रहें, अच्छा ये पढ़ लिया था मैंने। जब आपको अपनी मिजाज का इंसान मिले तब, हेरा फातिमा कह रही है, ठीक है। हेरा के बहुत सारे मैसेजेस हैं, साजिदा जहूर कह रही हैं हेलो आर्श, थैंक यू वेरी मच। उस्मा एजाज़ का ये मैसेज मैंने पढ़ लिया था। किंसा उस्मान कह रही हैं अस्सलामुअलैकुम, गाना लगा दें, माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, अभी वो वाला प्रोग्राम ख़त्म हो गया, आई एम रियली सॉरी, मैंने देर से पढ़ा किंसा तुम्हारा मैसेज। हेरा फातिमा कह रही हैं डिड नॉट लिसन टू द शो एंड सर असद इब्रार हेयर योर टॉपिक, अच्छा डिडेंट लिसन टू द शो ऑफ असद इब्रार बट हैड योर टॉपिक, ठीक है। तो वो वाला प्रोग्राम, उसका प्रोग्राम है ही नहीं ना, डॉक्स आज प्रोग्राम नहीं कर पाए, आज वो बिजी थे वहाँ पे, इस्लामाबाद में गए हुए, तो आज मैं प्रोग्राम उनका कंडक्ट कर रहा था। नुमान आदिल कह रहे हैं कल की पोस्ट में बबलू लग रहे थे, आज कमज़ोर लग रहे हैं पोस्ट में, पुरानी पोस्ट है यार ये, नाइट थेरेपी की कोई पोस्ट डिज़ाइन नहीं थी क्योंकि ये प्रोग्राम आज डॉक्स का है तो मैं क्यों डिज़ाइन करवाऊँगा, तो मैंने एक पिक्चर जस्ट लगा दी थी, ठीक है। हमदुल्ला मला खैल हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमदुल्ला मला खैल फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स सॉन्ग के लिए। नुमान आदिल ने कहा ठीक है। रहमान अनवर साहब एक खूबसूरत सी फरमाइश, पेरिस फ्रांस से, मेरी तरफ से मेहदी हसन की गज़ल रंजिश ही सही, यार मैं कुछ नई ट्रैक प्ले कर पाया ना, ये गज़ल मेरे दिल के बहुत करीब है, इसके अल्फाज और मेहदी हसन साहब की आवाज़ का अंदाज़ ही कुछ ऐसा है कि बार बार सुनने को दिल चाहता है। नवाज़िश अली तबस्सुम आपका नाम है, ठीक है, पेरिस फ्रांस से, कल के प्रोग्राम में प्ले करूँगा, ठीक है ना, डन। नज़ीर खोसो हमारे साथ, किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो, अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं बल्कि वो ज़रूरत का पुजारी है, ठीक है, तुम्हारी अपनी सोच।
اکثر زیادہ باتیں زیادہ وضاحتیں انسان کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتے ہیں. اچھی بات. 10 بجے رات سے ساتھ ہوں, اللہ حافظ. کنزا عثمان کہہ رہے ہیں اللہ حافظ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. سائم کہہ رہے ہیں رحمان اور صاحب آج بس اتنا کہنا ہے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے, اس لیے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رکھیں, جو اپنے ہیں انہیں وقت دیں, جو دور ہیں انہیں دعا دیں, اور جو ساتھ ہیں ان کی قدر کریں, شاید یہی زندگی کی اصل خوبصورتی ہے. نوازش علی, تبسم, تھینک یو ویری مچ. عظمیٰ کہہ رہی ہیں محبت کیا ہے, سمجھو تو احساس, دیکھو تو رشتہ, کہو تو لفظ, چاہو تو زندگی, کرو تو عبادت, نبھاؤ تو وعدہ, اور مل جائے تو جنت. ٹھیک ہے, سپر ڈوپر شو, ویل ڈن, تھینک یو ویری مچ. ایک سانگ لگا دیں سر, نادیہ حسن کی خوبصورت آواز, دوستی, میں نہیں پلے کر پاؤں گا, سوری, کل کے پروگرام. زندگی میں اگر بلندیاں چھونی ہیں, عزت و رتبہ پانا ہے, یا قدرت کے چھپے ہوئے رازوں اور حکمتوں کو سمجھنا ہے, تو سب سے پہلے اپنے دل کے اندر کے دائرے کو وسیع کرنا پڑتا ہے. تنگ نظری اور چھوٹی سوچ انسان کو وہیں جکڑ لیتی ہے جہاں وہ ہے. ظرف کی وسعت کے بغیر نہ تو رزق کی فراوانی راس آتی ہے اور نہ ہی دلوں میں محبت اترتی ہے. اپنے ظرف کو سمندر جیسا بنائیے, پھر دیکھیے کہ رحمتیں کیسے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہیں. وسیم صاحب تشریف لا چکے ہیں, باقی سارے میسیجز کل کے پروگرام میں پڑھوں گا, وعدہ کرتا ہوں آپ سے, وعدہ کرتا ہوں. یہاں سے عظمیٰ اعجاز کا اگلا میسیج ہے, ضرور پڑھوں گا. سر ہمارے اندر کا ڈر ہوتا ہے, یہاں سے پڑھوں گا, ٹھیک ہے نا. سو غنچہ شوق لے کر وسیم صاحب تشریف لا چکے ہیں, ٹریک آپ کے لیے ایک پلے کرتا جا رہا ہوں کاوش کی خوبصورت آواز میں, فاصلے. کوئی بات بری لگی ہو تو طفل مکتب سمجھ کر یہ سوچ کر کے ابھی سیکھنے کے عمل میں ہوں درگزر کر دیجیے گا یا پھر معاف کر دیجیے گا, بڑے لوگ ہیں آپ. لیکن اگر کوئی ایک بات کسی ایک انسان کے لیے ابھی مشعل راہ ہو گئی, یہاں پہ آنے کا پروگرام کرنے کا مقصد پورا ہو جاتا. میں زمین سے ایک دن آسماں کو آؤں گا, تم پہلے آسماں پہ میرا انتظار کرنا. اللہ ناصر.

0: moving. Hot Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
2: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.
3: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: palm olive nat.
1: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا.

चार अगर ऐ दिले बेताब कहाँ आते हैं, चार अगर ऐ दिले बेताब कहाँ आते हैं, मुझको खुश रहने के आदाब कहाँ आते हैं। मैं तो यकमुश्त उसे सौंप दूं सब कुछ, लेकिन एक मुट्ठी में मेरे ख्वाब कहाँ आते हैं। मुद्दतों बाद उसे देख के दिल भर आया, मुद्दतों बाद उसे देख के दिल भर आया, वरना सहराओं में सैलाब कहाँ आते हैं। मेरी बेदर्द निगाहों में अगर भूले से, मेरी बेदर्द निगाहों में अगर भूले से नींद आती भी है तो अब ख्वाब कहाँ आते हैं। मेरी बेदर्द निगाहों में अगर भूले से नींद आई भी तो अब ख्वाब कहाँ आते हैं। तन्हा रहता हूं मैं दिन भर तेरी दुनिया में कतील, दिन बुरे हो तो अहबाब कहाँ आते हैं। चार अगर दिले बेताब कहाँ आते हैं, मुझको खुश रहने के आदाब कहाँ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामईन, 101 FM पाकिस्तान के लाहौर स्टेशन से ये आवाज है आपके अपने आरजे वसीम अहमद की, अपने मेजबान वसीम अहमद की। मेरा आपका साथ है जनाब आपसे लेके सुबह के 4 बजे तक। प्रोग्राम आपका जाना पहचाना गुंचाए शौक, ढेर सारी शायरी और खूबसूरत मौसीकी आपके लिए लेके आपकी खिदमत में इस वक्त हाजिर होता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरे प्रोग्राम को सुनने के लिए जाग रहे होंगे, अपने रेडियो सेट के पास पास होंगे, और यकीनन आज के प्रोग्राम को भी आप जरूर कामयाब बनाएंगे मेरे साथ मिलके, अपने खूबसूरत कमेंट्स के साथ, अपनी खूबसूरत बातों के साथ, अपनी खूबसूरत शायरी के साथ। और जनाब लाहौर का मौसम बहुत बेहतर हो गया, रात के 10-11 बजे तक तो, हाँ 10 बजे तक तो बिल्कुल ठीक था, मतलब ठीक से मुराद ये कि अब बहुत ठीक है, मगर ड्राई था और कोई ऐसा मसला नहीं था। मगर उसके बाद एकदम से तेज हवा चली, आंधी चली, बारिश भी हुई। अभी भी जब मैं घर से निकलने लगा था स्टूडियो के लिए तो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो रही थी, और दरमियान में फिर काम हो गई, फिर बंद हो गई, और ये सिलसिला जारी है बारिश का। तो सर्दियों की पहली बारिश आपको मुबारक हो। अब सर्दियों का सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, और बहुत सारी जो बीमारियाँ लाहक थी मुख्तलिफ लोगों को, खांसी वगैरह, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, आजकल कुछ ये फैला भी हुआ है, तो इसका भी सदेबाप हो जाएगा। जब बारिश होती है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। सबसे पहली बात यह है कि जनाब आपके लिए सबसे पहले खुशखबरी ये है कि पेट्रोल में आपको जो सब्सिडी दी जा रही है, जो रिलीफ दिया जा रहा है वज़ीर आज़म की खसूसी रिलीफ स्कीम, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा कि आपको पेट्रोल 100 रुपये फी लीटर सस्ता मिल सकता है, मिल रहा है। मशरिक वस्ता में जंग के 22 पेट्रोल की कीमतों में होशरबा जो इजाफा हुआ है उसके बोझ को कम करने के लिए महंगे पेट्रोल से निजात का ये तारीखी कदम उठाया गया है। तो इसमें आपने क्या करना है कि आप अगर आपके पास मोटरसाइकिल है या आपके पास चिंची है, चिंची रिक्शा है, या 3 पहियों वाली कोई सवारी है, ठीक है ना, और इसके साथ साथ अगर 800 सीसी तक की गाड़ी के आप मालिक हैं तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड लिखकर, REG लिखकर आपने स्पेस देके और साथ साथ दूसरी इंफॉर्मेशन देनी है, यानी आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर उसमें डालना है, उसके बाद आपने बगैर स्पेस के नंबर प्लेट जो है आपकी गाड़ी की, मोटरबाइक की, वो लिखनी है, फिर जिस सूबे से आपका ताल्लुक है सूबे का पहला हर्फ आपने लिखना है इंग्लिश में, और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है बमा महीना और साल वो भी आपने टाइप करनी है, उस पर लिखनी है, और चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ एक ही मैसेज में लिखकर 9771 पर SMS आपने करनी है। दोबारा से सुन लीजिए कि आपने REG लिखना है और उसके बाद आपने स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड डालना है, उसके बाद आपने स्पेस बगैर स्पेस के नंबर प्लेट लिखनी है, सूबे के नाम का पहला हरफ जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है वो लिखना है, पंजाब है या सिंध है या जो भी सूबा है, उसके बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख बमा महीना और साल आपने लिखनी है,
और आपने इसको चारों तफसीलात को स्पेसेस के साथ एक ही मैसेज में लिखकर 9771 यानी 9771 पर एसएमएस करना है। तो जैसे कि पहला अगर इस्लामाबाद आता है, उसके बाद स्पेस आएगी आज़ाद जम्मू कश्मीर आ सकता है, इस्लामाबाद का आई आएगा, आज़ाद जम्मू कश्मीर का ए आएगा, गिलगित बल्तिस्तान का जी आएगा, सिंध का एस आएगा, पंजाब का पी आएगा और खैबर पख्तूनख्वा का के आएगा और बलूचिस्तान का बी आएगा। रहती पेट्रोल का हसूल आपको जो है वो टोकन जो है वो आप पेट्रोल पंप पे दिखा सकते हैं और रहती की मतलब पेट्रोल हासिल कर सकते हैं। टोकन लेने का तरीका मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन के बाद पेट्रोल रिलीफ हासिल करने के लिए पेट्रोल पंप पर जाने से पहले आपने TOK यानी टोकन लिखकर, टोकन नहीं लिखना TOK लिखना है और उसके बाद आपने उसको SMS करना है 9771 पर। जब आप 9771 पे इसको भेज देंगे तो आपको एक मैसेज मौसूल होगा, वो मैसेज, उस मैसेज में टोकन नंबर, गाड़ी का नंबर और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, पेट्रोल की मिकदार जो आपको मिलेगी और टोकन इस्तेमाल करने की मुद्दत दर्ज होगी। ये टोकन आपने पेट्रोल पंप पे जाके दिखाना है और आपने रियायती कीमत पे पेट्रोल को हासिल करना है। ठीक हो गया जनाब। और इस तरह से क्या होगा कि आप मोटरसाइकिल, चिंची रिक्शा और तीन पहियों वाली सवारियां जो चलाने वाले लोग हैं वो हफ्ते में यकमुश्त 5 लीटर पेट्रोल पर रिलीफ हासिल कर सकते हैं और इसी तरह जबकि महाना मजमूई तौर पर 20 लीटर पेट्रोल रियायती निरखों पर हासिल कर सकते हैं। तो अगर पूरे महीने में जो आपको पेट्रोल मिलेगा वो 20 लीटर तक मिलेगा और इसके साथ साथ 800 सीसी तक की जो गाड़ियों के मालकान हैं वो भी इसमें शामिल हैं और 10 दिन में एक मर्तबा यकमुश्त 10 लीटर पेट्रोल हासिल कर सकते हैं और महाना मजमूई तौर पर 30 लीटर पेट्रोल रियायती निरखों पर हासिल कर सकते हैं। और जनाब इसमें जो रिलीफ है वो इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी है और मुल्क भर बशमूल आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पेट्रोल पर रिलीफ हासिल किया जा सकता है, यानी आज किया जा सकता है। आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और वज़ीर आज़म ने आवाम के लिए खिदमत का एक और जो रास्ता है वो अपनाया है। तो यकीनन जहां पे महंगे पेट्रोल की प्रॉब्लम सभी लोगों को है और वहां पे जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं ख़ास तौर पर और जो 800 सीसी से कम गाड़ियाँ रखने वाले या 800 सीसी की गाड़ी रखने वाले लोग हैं वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं और रिलीफ हासिल कर सकते हैं। तो पेट्रोल 100 रुपये फी लीटर सस्ता मिल सकता है। वज़ीर आज़म की खसूसी रिलीफ स्कीम से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाइए। अगर आपने कोई सवाल करना हो इस सिलसिले में तो आप कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

भुला भी दे उसे जो बात हो गई प्यारे, भुला भी दे उसे जो बात हो गई प्यारे, नई चिराग जला रात हो गई प्यारे, तेरी निगाहें पशिमाओं को कैसे देखूंगा कभी जो तुझसे मुलाकात हो गई प्यारे, न तेरी याद न दुनिया का गम न अपना ख्याल, अजीब सूरत हालात हो गई प्यारे, उदास उदास है शमे बुझे बुझे सागर, ये कैसी शाम खराबात हो गई प्यारे, वफा का नाम ना लेगा कोई जमाने में, हम अहले दिल को अगर मात हो गई प्यारे, तुम्हें तो नाज बहुत दोस्तों पे था जालिब, अलग थलग से हो क्या बात हो गई प्यारे। 101 FM पाकिस्तान का लाहौर स्टूडियो नेटवर्क पे आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो भी आप इंजॉय कर रहे हैं। अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन में रेडियो पाकिस्तान का ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो आप उसको फौरी तौर पर इंस्टॉल कर सकते हैं, और दुनिया में कहीं भी बैठ के आप हमारे प्रोग्राम्स को, हमारे चैनल्स को, रेडियो पाकिस्तान के चैनल्स को सुन सकते हैं। उसके साथ साथ आप हमारी लाइव ट्रांसमिशन को सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाके www.radio.gov.pk पर जाके, और इसके साथ साथ आपके इलाके के जो रेडियो स्टेशन हैं वहाँ पे भी मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, यानी इस्लामाबाद ले लीजिए, सियालकोट ले लीजिए, फैसलाबाद की बात कीजिए, कराची की बात कीजिए, और इसी तरह से आप जहाँ जहाँ अभी 101 FM की नशरियात आप तक पहुँचती हैं वहाँ पे नेटवर्क पे आज मेरा आपका साथ मौजूद है, और मैं अपने तमाम इंजीनियर्स का बहुत मशकूर हूँ जिनके तावन से, जिनकी अनथक मेहनत से मेरा प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा है। तो तमाम सुनने वालों को एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से मैं कहूँगा वेलकम टू FM 101। गुंचे शौक आपका जाना पहचाना प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ नहीं ज़्यादातर हम पोइट्री शामिल करते हैं, और कुछ आपसे गपशप भी होती है, कुछ एक आधा सवाल भी हम रखते हैं, और कुछ आपके लिए नायाब किस्म के गीत भी प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब आप प्रोग्राम में आएँ, हमारे वेब फेसबुक पे आएँ, तो अपनी खूबसूरत शायरी वहाँ पे ज़रूर लेके आएँ, और उसके साथ साथ अगर पूरी गज़ल नहीं लिख सकते तो आप एक शेर भेज सकते हैं, कथा भेज सकते हैं, एक मिसरा भी भेज सकते हैं, हम उसे भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे तो प्रोग्राम खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि एक माहौल है शायरी का, एक माहौल है रात का, ये खूबसूरत पहर है आपके हमारे दरमियान। कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, कुछ लोग हैं जिनकी नींद उड़ी रहती है, कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं जिनको बहुत नींद आ रही होती है, जब वो सोने के लिए लेटते हैं तो उनकी नींद उड़ जाती है, बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारी बातें जो हैं वो दिमाग में आ जाती हैं, और बहुत सारी बातें जो हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं दिमाग के अंदर, और कभी किसी चीज़ का ख्याल आता है, कभी किसी चीज़ का ख्याल आता है, और ख़ास तौर पर उन लोगों का बहुत ख्याल आता है जो हमारे दिल के नहा खाने में मौजूद होते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे दूरी हो चुकी है, जो हमसे दूर जा चुके हैं, उनसे, उनको हम मिस भी करते हैं और उनको अपने ज़िंदगी में शामिल करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। तो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं फेसबुक के थ्रू, जिसका फेसबुक के थ्रू आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, जिसका पता है www.facebook.com/FM101 लाहौर। दोबारा सुन लीजिए www.facebook.com/FM101 लाहौर, और इससे आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपनी खूबसूरत पोइट्री हम तक पहुंचा सकते हैं। ख्वाब होते हैं देखने के लिए, ख्वाब होते हैं देखने के लिए, उनमें जाकर मगर रहा ना करो, कुछ ना होगा गिला भी करने से, जालिमों से गिला किया ना करो, उनसे निकली हिकायतें शायद हर्फ लिखकर मिटा दिया ना करो, अपने रुतबे का कुछ लिहाज मुनीर यार सबको बना लिया ना करो। अच्छा, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत ही हंसमुख होते हैं, बहुत अच्छे दिल के मालिक होते हैं, बहुत अच्छे जज्बात होते हैं उनके, पॉजिटिविटी उनमें कूट कूट के भरी होती है, मस्बत हर चीज़ के बारे में मस्बत अपना पहलू रखते हैं, मस्बत सोच रखते हैं,
मगर ऐसे लोगों के साथ आम तौर पे ऐसा होता है कि बहुत सारी नेगेटिव किस्म के लोग उनसे आन मिलते हैं, आके जुड़ जाते हैं, तो उनकी पॉजिटिविटी धरी की धरी रह जाती है। इसलिए कहते हैं कि आप इतने भी मीठे ना बने कि दूसरा शख्स आपको खा ही जाए, और इतने भी कड़वे ना बने कि वो आपको चखे भी ना, मतलब आपको अपने मुँह से निकाल दे, मतलब आपसे दोस्ती ख़त्म कर दे। तो दरमियानी जो लेवल होता है ना, वो ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका होता है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, बहुत अच्छा मस्बत उनका रवैया होता है, मस्बत अंदाज़ ज़िंदगी होता है, मगर इसके बावजूद वो मुख्तलिफ़ लोगों से ज़ख्म लेते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से धोखे खाते रहते हैं। तो क्या पॉजिटिव होने का मतलब धोखा खाना है? ऐसा तो नहीं हो सकता। आप अच्छाई की तरफ जा रहे हैं तो अच्छाई तो हमेशा अच्छाई को ही अट्रैक्ट करती है, बुराई उससे दूर भागती है। तो पॉजिटिव होना, मस्बत होना एक अच्छाई है, एक अच्छा एक्ट है। तो फिर भी हम इससे दोचार हो जाते हैं बुराई से, और बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारा दिल टूट जाता है, हम बिल्कुल लाचार हो जाते हैं, हम बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर सब्र की बारी आती है। सब्र जिंदगी की खूबसूरत तरीन चीज़ है। अगर हम इसे दौड़ कहेंगे तो वो भी हम उसे कह सकते हैं, और अगर हम इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को संवारने की बात करते हैं तो जनाब सब्र से बढ़ के तो और कोई चीज़ है ही नहीं। और अगर हमें सब्र करना, हमें सब्र करना आता है तो यकीन मानिए हम बहुत कामयाब लोगों में शामिल हो जाते हैं। सब्र जिंदगी की खूबसूरत डोर है, जिसने संभाल ली तो उसको सब मिल गया। ये जिंदगी की डोर है, एक धागा है, एक लड़ी है, उसको पकड़ लिया अगर जिसने तो सब कुछ उसको मिल गया, और जिसने छोड़ दी तो सब हाथ से निकल गया। तो अपने रब पे भरोसा करना चाहिए, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि सब्र से काम लो। जब हम सब्र से काम लेते हैं तो हम पुरसकून भी हो जाते हैं, और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देते हैं तो फिर सब कुछ ठीक भी हो जाता है। तो आज के प्रोग्राम में हम सब्र के हवाले से बातचीत करेंगे, पॉजिटिविटी के हवाले से बातचीत करेंगे, और आपके लिए ढेर सारी शायरी, बातें कम, शायरी पोइट्री ज़्यादा, आपके मैसेजेस भी ज़्यादा। और आपको पता है कि जब आप हमें मैसेज करते हैं, हमें कमेंट करते हैं, तो आपके कमेंट्स जो होते हैं वो मुझे बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे आसमान पे सितारे चमक रहे हैं। चांद तो चमकता ही है, और जब अंधेरी रातें होती हैं तो सितारे जो हैं वो आसमान को और ज़्यादा खूबसूरत मुज़य्यन कर देते हैं, सजा देते हैं। उसी तरह से आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो मैसेजेस हैं, वो प्रोग्राम को खूबसूरत कर देते हैं, सजा देते हैं, मज़ेयन कर देते हैं। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, उन्हीं से प्रोग्राम खूबसूरत होता है, और आपकी बातें प्रोग्राम को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। तो आपके लिए कुछ और पोइट्री मेरे पास मौजूद है, उसे प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। मुस्कुराकर खताब करते हो, मुस्कुराकर खताब करते हो, आदतें क्यों खराब करते हो? मार दो मुझको रहम दिल होकर, मार दो मुझको रहम दिल होकर, क्या ये कारे सवाब करते हो? मुफलसी और किसको कहते हैं, दौलतों का हिसाब करते हो? सिर्फ एक इल्तिजा है छोटी सी, क्या इसे मारियाब करते हो? हम तो तुमको पसंद कर बैठे, तुम किसे इंतखाब करते हो? सिर्फ एक इल्तिजा है छोटी सी, क्या इसे मारियाब करते हो? हम तो तुमको पसंद कर बैठे,

अब आप करते हो। हो चुका जो हिसाब होना था और अब क्या हिसाब करते हो। एक दिन ए अदम ना पी तो क्या, रोज शगले शराब करते हो। कितने बेरहम हो अदम तुम भी, सिकरे अहदे शबाब करते हो। हो किसी की खुशी गर इसमें अदम, जुर्म का इर्तकाब करते हो। मुस्कुराकर खताब करते हो, आदतें क्यों खराब करते हो। वरुण एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैम स्टेशन, और जनाब आपके लिए बहुत सारी पोइट्री शायरी मेरे पास मौजूद है। ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, हमारे दिल में समा जाते हैं, हमारे जज्बात जो हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत अच्छी सोच हम उनके लिए रखते हैं। और कुछ लोग पहली नज़र में हमारे दिल के नहां खाने में आन मौजूद होते हैं और कभी उनको हम भुला नहीं पाते। तो जनाब ऐसे लोग जो हमें हमारी ज़िंदगी में इस तरह से आते हैं, जो जिनको हम समझते हैं कि ये कहीं भी नहीं जा सकते हमारे दिल से, और वाकई वो कभी भी हमारे दिल से कहीं नहीं जा सकते, मगर फिर भी वो हमसे दूर रहते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि जो शख्स हमें बहुत अच्छा लगे, जिस शख्स से हम मोहब्बत करें, वो हमेशा हमसे दूर ही रहे। कभी कभी हम किसी से अपने जज्बात शेयर नहीं कर पाते हैं, नहीं बता सकते उन्हें, अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकते, मगर उन्हें पता होता है कि हम उन्हें चाहते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, मगर अपने जज्बात उनसे शेयर नहीं कर पाते कि हम उन्हें कितना याद करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितनी उनकी याद हमें सताती है, कितना हम उनसे मिलना चाहते हैं, कितना हम उनको याद करते हैं, कितनी बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं उनकी याद की वजह से। तो हम क्यों अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते, क्यों हम उनसे अपने जज्बात शेयर नहीं कर पाते? इसकी वजह ईगो नहीं है, क्या ख्याल है? ईगो है या कोई और बात है जो हम समझते हैं अपने लिए? नहीं, बस अपने जज्बात की बेकदरी से डरते हैं। हम डरते हैं इस बात से कि अगर हमने उन्हें ये बता दें कि हम उन्हें बहुत चाहते हैं, हम उन्हें बहुत याद करते हैं, हम उनकी याद में परेशान फिरते रहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे जज्बात की बेकदरी कर दें और हमारी जो बात है वो दरमियान में ही रह जाए, हम अकेले रह जाएं, हम तन्हा रह जाएं, हम उदास रह जाएं। इस बात से डरते हुए हम अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते और दूसरे शख्स को इसका पता भी नहीं होता कि हम उसको कितना मिस करते हैं, कितना याद करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना चाहते हैं। हमारे पास अल्फाज भी होते हैं, हम बोलना भी चाहते हैं, हम बोल नहीं पाते, हम कहना भी चाहते हैं, हम कह नहीं पाते, और वो लम्हे जो हम जीना चाहते हैं हम उनको जी नहीं पाते। कोई ऐसा लम्हा जिसे आप दोबारा से फिर से जीना चाहें, वो कौन सा लम्हा है? आपने कभी सोचा इसके बारे में? बहुत सारे लोग इस बात का जवाब मुझे ये देते हैं कि जनाब हमारा बचपन का जमाना जो है ना, हम उस पर जीना चाहते हैं, मगर मैं कहता हूं कि वो लम्हा जो है, जमाने और लम्हे में फर्क है। हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी, जमाने में और लम्हे में फ़र्क है, मगर लम्हा वो होता है जो कि हमारे दिल में समा जाता है किसी की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए। हमारा दिल चाहता है कि वो मुस्कुराहट दोबारा से देखें, किसी का एक लम्हे में हमें ये कहना कि हम उसे बहुत अच्छे लगते हैं, उसे हमसे मोहब्बत है। किसी शख्स का हमारी मुस्कुराहट के जवाब में मुस्कुरा देना, ऐसा कौन सा लम्हा है जिसको हम याद करते हैं और दोबारा दिल चाहता है कि हम उसी लम्हे में गुम हो जाएं? ऐसे लम्हे होते हैं ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में भी होंगे, कभी सोचें आपने इस बारे में। यकीन मानिए बहुत दिल उदास हो, बहुत दिल परेशान हो, और उसमें अगर हमें वो खूबसूरत याद आ जाए उस एक लम्हे की, तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, हम अकेले में मुस्कुरा देते हैं, देखने वाले देखते रह जाते हैं, और हम हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं उसे एक लम्हे में जिसमें सारा वक्त थम जाता है, और एक लम्हे के अंदर सदियों का फासला तय हो जाता है।

आपकी आंख से गहरा है मेरी रूह का जख्म, आपकी आंख से गहरा है मेरी रूह का जख्म, आप क्या सोच सकेंगे मेरी तन्हाई को। आपकी आंख से गहरा है मेरी रूह का जख्म, आप क्या सोच सकेंगे मेरी तन्हाई को। मैं तो दम तोड़ रहा था मगर अफसुरदा हयात खुद चली आई मेरी हौसला अफजाई को। लज्जत गम के सिवा तेरी निगाहों के बगैर, लज्जत गम के सिवा तेरी निगाहों के बगैर कौन समझा है मेरे जख्म की गहराई को। मैं बढ़ाऊंगा तेरी शोहरत खुशबू का निखार, तू दुआ दे मेरे अफसाना रुसवाई को। वो तो यूं कहिए कि एक कौसे कजा फैल गई, वो तो यूं कहिए कि कौसे कजा फैल गई, वरना मैं भूल गया था तेरी अगड़ाई को। आपकी आंख से गहरा है मेरी रूह का जख्म, आप क्या सोच सकेंगे मेरी तन्हाई को। 101 FM पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन। और जनाब आपके लिए बहुत सारी शायरी, आपके पैगाम हम तक पहुंच रहे हैं। और सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए मोहम्मद शहजाद, शाद मार्ग से प्रेम को पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी खूबसूरत आगाज़, और पेट्रोल के रिलीफ के हवाले से इन्होंने कहा कि जी जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया आपका। और कह रहे हैं कि जी मैं लाइव कॉल करने की कोशिश करूंगा, आपसे बात भी करूंगा, बहुत शुक्रिया आपका, आप ज़रूर कॉल कीजिएगा, आपकी कॉल का मुझे इंतज़ार रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग हमारे बहुत करीब होते हैं, हमारे साथ ज़िंदगी के बहुत सारे टाइम को बिता रहे होते हैं, बिता चुके होते हैं, हमारे साथ चले होते हैं, हमारे साथ चल भी रहे होते हैं, मगर फिर भी वो जो जिस तरह नदी के दो किनारे होते हैं ना, उसी तरह से ज़िंदगी बसर हो रही होती है उनके साथ। और फिर बंदे को एहसास होता है कि ये जो मोहब्बतें थी, ये जो चाहते थी, ये भी सारी झूठी थी, वो कस्में वो वादे भी झूठे थे, वो आंखों ही आंखों में जो दिल की बातें कही जाती थी वो भी झूठी थी, ये चाहते ये पज़ीराइयां भी झूठी हैं, ये उम्र भर की शनासाइयां भी झूठी हैं, मेरे जुनून की हकीकत भी सर बसर झूठी। मेरे जुनू की हकीकत भी सरबसर झूठी, तेरे जमाल की रानाइयां भी झूठी हैं, खुली जो आंख तो देखा कि शहर रे फुरकत में, खुली जो आंख तो देखा, खुली जो आंख तो देखा कि शहर रे फुरकत में, तेरी महक तेरी परछाइयां भी झूठी हैं, तेरे फराक का भी यकीन नहीं आता, ये रच गए मेरी तन्हाइयां भी झूठी हैं, तेरे फराक का भी यकीन नहीं आता, ये रज़्गे मेरी तन्हाइयां भी झूठी हैं, फरेबकार हैं इजहार के वसीले भी, फरेबकार हैं इजहार के वसीले भी, ख्याल व फिक्र की गहराइयां भी झूठी हैं, उसे ये दुख कि मैं रुसवा हुआ हूँ उसके लिए, उसे ये दुख कि मैं रुसवा हुआ हूँ उसके लिए, मुझे ये दुख है कि रुसवाइयाँ भी झूठी हैं, तमाम लफ्ज़ो मानी भी झूठ हैं साजिद, तमाम लफ्ज़ो मानी भी झूठ हैं साजिद, हमारे अहद की सच्चाइयाँ भी झूठी हैं, ये चाहते हैं ये पज़ीराइयाँ भी झूठी हैं, ये उम्र भर की शनासाइयाँ भी झूठी हैं, ये उम्र भर की शनासाइयां भी झूठी हैं।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: listening to FM 101, Abalebale Oshawa Shawa.
1: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
3: ओके डियर लिसनर्स, एक दफ़ा फिर आपको दिल की गहराइयों से वेलकम कहता हूँ। आपके पैगाम तो कुछ मुझ तक पहुँचे हैं, बहुत थोड़े से हैं, मगर कोई बात नहीं। अब जाहिर है रात का ये पहर है और आज ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। लाहौर का मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है और बारिश भी हुई है। अभी भी शायद मे भी बूंदाबांदी हो रही हो, तो अभी बोधी जट का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा जी हम बाहर बैठे हैं या छत पर हैं पता नहीं, बहरहाल ठंडी ठंडी हवा को इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ आपके प्रोग्राम को भी सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका बोधिजट प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सीमा जी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, तमाम सुनने वालों को इनका सलाम पहुंचे। सीमा जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम को हमेशा सुनती हैं और रात के इस पहर में आप जाग भी रही होती हैं हमारे प्रोग्राम को सुनने के लिए, इसके लिए भी आपका बहुत सारा शुक्रिया। और इसी तरह से मोहम्मद शहजाद हमारे साथ मौजूद है, अनिला जी हमारे साथ मौजूद है, तमाम सुनने वालों को सलाम। वन FM पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन, और जनाब आपके SMS भी हम तक पहुंच रहे हैं, जैसे ही वो भी हम तक डाउनलोड हो जाएंगे तो हम उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और अभी हम बढ़ेंगे फेसबुक की जानिब, तो फेसबुक पे भी आपके थोड़े से पैगाम हम तक पहुंचे हैं अभी, तो देखते हैं कि उनमें कितना इजाफा होता है, तो आप कितनी मोहब्बत के साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं ये तो मुझे अंदाज़ा है। प्रोग्राम को लाइक किया है मरीना ने, और मरीना ए लिखा इन्होंने, ताहिरा मसूद हैं, रियाज भट्टी हैं, और इसी तरह से हमीद गुल साहब हैं, हमारे बहुत अच्छे सुनने वाले, बहुत प्यार करने वाले, बहुत पाए के शायर हैं। हमीद गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने के लिए और इस वक्त जागने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए, आपके लिए बहुत सारी दुआएं और आपका बहुत सारा शुक्रिया। तमाम दोस्तों का, तमाम बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया कि वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपके कमेंट्स प्रोग्राम में शामिल करता हूँ, मगर आप भी अगर फेसबुक यूज़ कर रही हैं और आपके पास सहूलत है मैसेज करने की, कमेंट करने की, तो ज़रूर कीजिएगा। मरीना ए ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम RJ वसीम, वेलकम मरीना बिलाल। अच्छा ऊपर मरीना ए, अच्छा इनका नाम जो है ना वो ID मरीना ऐसे है, मरीना बिलाल है। तो मरीना बिलाल आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपको दिल की गहराइयों से वेलकम कहता हूँ। ताहिरा मसूद हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई है, इन्होंने पोइट्री भी भेजी, उससे भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मरीना बिलाल कहते हैं कि ज़माना कब समझता था शबे आशूर से पहले चिरागों के बुझाने से उजाला और होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत आला। हमीद गुल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहें, हमेशा खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहें हमेशा, और उसके बाद इन्होंने खुश आमदीद कहा है कि ज़िंदगी मुस्कुरा के रोज़ गुजर जाती है, हाथ मिलाने की नौबत ही नहीं आती है। वाह वाह वाह, ऐसे ही है जनाब, आपने तो बड़ी खूबसूरत बात कर दी हमारे टॉपिक के हवाले से जो हमने दो चार बातें इकट्ठी की थी। ताहिरा मसूद ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम रियाज भट्टी, हमारे भाई जान हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। रियाज भट्टी वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ताहिरा मसूद आपका बहुत शुक्रिया, मरीना बिलाल आपका बहुत शुक्रिया, हमीद गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया, ताहिरा मसूद साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। इन्होंने लिखा है कि दर्द को हद से ज़्यादा कभी बढ़ने ना दिया, दर्द को हद से ज़्यादा कभी बढ़ने ना दिया, गुले उम्मीद कभी हमने बिखरने ना दिया, गैर तो आए थे हर बार तसल्ली देने, अपने प्यारों ने कभी जख्म को भरने ना दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। गैर तो आए थे हर बार तसल्ली देने, अपने प्यारों ने कभी जख्म को भरने ना दिया, कोई मौसम कोई खुशबू कोई हमदम कोई दोस्त, जीने वालों को इस उम्मीद पे इस उम्मीद ने मरने ना दिया। वाह, मोड़ लेते हैं सदा दिल की तरफ अशकों को, इन सितारों को कभी आंख से गिरने ना दिया, गम में हंसने ना दिया, याद में रोने ना दिया। आहा, गम में हंसने ना दिया, याद में रोने ना दिया, ढंग का एक काम भी इस हिजर ने करने ना दिया। काम मुश्किल ही सही, हम भी तो आखिर हम थे, तेरे लहजे के किसी जख्म को भरने ना दिया। उम्र गुजरी तो है लड़ते हुए तारीकी से, रब की रहमत थी वो जिसने कभी डरने ना दिया। बहुत शुक्रिया, खूबसूरत इजाफा किया आपने हमारे प्रोग्राम में। आप भी अपनी खूबसूरत पोइट्री हमें भेजिए ताकि हम उसे प्रोग्राम में शामिल करें। तो ताहिरा मसूद आपका एक और कलाम हम तक पहुँचे, हम कोशिश करेंगे कि उसे भी प्रोग्राम में ज़रूर पढ़ें। और मलक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी, बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम जनाब वसीम, मलक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को और आपको सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। और इन्होंने कहा कि बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। रियाज बटी, रमज़ान गुजर, गुल यासिन नाज, मोहम्मद हफीज़ुररहमान बकर वाले, वो इन्होंने सलाम भेजा है। बहुत शुक्रिया जनाब, प्रोग्राम में आपके कमेंट शामिल हो रहे हैं और इजाफा हो रहा है जैसे जैसे आपके कमेंट्स हम तक पहुंचेंगे। कोशिश कीजिए कि आप उनके अंदर अपने एक आधा शेर, अपने दिल की बात, टॉपिक के हवाले से अगर कोई बात करना चाहें तो वो भी करें ताकि प्रोग्राम जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत तर होता चले जाए। कुछ लोग बहुत ही मोहब्बत के साथ ऐसी बात कर जाते हैं कि वो बात भी कह देते हैं, दिल को भी चीर देते हैं, दिल को भी सी देते हैं। रखिए ज़रा संभाल कर नश्तर हरूफ के, रखिए ज़रा संभाल कर नश्तर हरूफ के, अपना जिगर तो आपके लहजे से कट गया। मैं ही गरा था आपको, मैं ही था नागवार, मैं ही गरा था आपको, मैं ही था नागवार, लीजिए ये संगे राह भी रस्ते से हट गया। रखिए जरा संभाल कर नश्तर हरूफ के, अपना जिगर तो आपके लहजे से कट गया। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ रवैये ऐसे होते हैं जो कि जहर की तरह, जहर के अंदर बुझे हुए होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि टॉक्सिक पीकल पीपल्स जो होते हैं वो हमारे सामने मौजूद होते हैं, हमारे लिए जहरीले लोग। उनका हंसना भी जहरीला होता है, उनकी मोहब्बत भी जहर से भरी हुई होती है। ऐसे लोगों से हमेशा इज्तनाब करना चाहिए, बच के रहना चाहिए। क्या ख्याल है आपके? नौशी गिलानी कहती है कि आंखें भी वही हैं, दरीचा भी वही है, आंखें भी वही हैं, दरीचा भी वही है, और सोच के आंगन में उतरता भी वही है। जिसने मेरे जज्बों की सदाकत को न जाना, अब मेरी रफाकत को तरसता भी वही है। जो कुछ भी कहा था मेरी तन्हाई ने तुझसे, इस शहर की दीवार पे लिखा भी वही है। वो जिसने दिए मुझको मोहब्बत के खजाने, बादल की तरह आंख से बरसता भी वही है। जो लोग मोहब्बत देते हैं वो साथ आंसू क्यों देते हैं, इस बात की कभी समझ आई आपको? एक तो आप मोहब्बत करते हैं, अपना प्यार निछावर करते हैं, अपनी दिल की हर चीज, अपने जज्बात सब कुछ उसके कदमों में ढेर कर देते हैं, इसके बावजूद आपकी आंखों में आंसू क्यों आते हैं, क्यों आते हैं? शायद मोहब्बत इसी को कहते हैं। हमारे दरमियां अहदे शबे महताब जिंदा है, हवा चुपके से कहती है अभी एक ख्वाब जिंदा है। ये किसकी नर्म खुशबू है मेरी शब की हवेली में, ये कैसा रक्स से मस्ती, ऐ दिले बेताब जिंदा है। कहां वो सांवली शामें, कहां वो रेशमी बातें, मगर एक लम्स हैरान का अभी जरनाब जिंदा है। अभी तक पानियों पे सुरमई साए उतरते हैं, अभी तक धड़कनों में दर्द की मिजराब जिंदा है। सिराते इश्क है और हिजर की तरह मुसाफित है, वही है तिश्नगी फिर भी फरेबे आप जिंदा है। हमारे दरमियां अहदे शबे महताब जिंदा है। हवा चुपके से कहती है अभी एक ख्वाब जिंदा है, अभी एक ख्वाब जिंदा है।

0: साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सागर रोए लहरें शोर मचाए, याद पिया किया ए नैना भराए। मैडम अलके तरन्नम नूर जहां की आवाज। लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं लाइन पे कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
1: वालेकुम अस्सलाम। हमीद गुल साहब को हम वेलकम कहते हैं। हमीद गुल साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
2: आपको भी वेलकम कहते हैं। आज नींद का बड़ा गलबा था।
1: अच्छा, वाह वाह वाह। उसके बावजूद आप माशाल्लाह जाग रहे हैं हमारे प्रोग्राम के लिए, बड़ी मेहरबानी आपकी।
2: नहीं, कभी कभी अब नींद आ भी जाती है।
1: हाँ, ये तो है, ये तो है, नींद तो आ जाती है। सही है,
2: नींद का आना भी एक अल्हम्दुलिल्लाह।
1: बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी नेमत है।
2: बड़ी नेमत है, शुक्र है हमें आ जाती है।
1: सही बात है, सही बात है।
2: वो मैं आपको एक कत्ता एक गजल सुनाता हूँ
1: जी,
2: उसके बाद अपनी एक नज़्म छोटी सी आपके साथ शेयर कर देंगे
1: जी।
2: महशर अफरीदी का एक कथा है
1: जी,
2: के दिलो दिमाग पे गलबा किसी ख्याल का था।
1: वाह क्या बात।
2: दिलो दिमाग पे गलबा किसी ख्याल का था, तभी जवान हुआ था मैं 20 साल का था। दिलो दिमाग पे गलबा किसी ख्याल का था, तभी जवान हुआ था मैं 20 साल का था। और शेर देखिएगा कि न फेसबुक थी न व्हाट्सएप के जो मुहिल होते हैं। देखिए लम्हे की आप बात की आज फिर आपने, कि न फेसबुक थी न व्हाट्सएप के जो मुहिल होते, वो पहले इश्क का जो हिजर था कमाल का था।
1: वाह वाह वाह वाह वाह। वो पहले इश्क का जो हिजर था कमाल का था,
2: कमाल का था। मैं आपके साथ एक गजल शेयर कर रहा हूँ
1: जी,
2: डॉक्टर शकील कतासी
1: जी,
2: मुझे बड़ी पसंद आई, बड़े खूबसूरत इसके काफी हैं। कहते हैं कि कोई ख्वाहिश जब तक पूरी होती है।
1: वाह।
2: कोई ख्वाहिश जब तक पूरी होती है, दिल के कोने में धक धक होती है।
1: वाह।
2: दिल के कोने में धक धक होती है। और शेर देखिए कि इस सलामत लेकिन इतना ध्यान रहे। इश्क सलामत लेकिन इतना ध्यान रहे, इस धंधे में मौत अचानक होती है।
1: ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: इस धंधे में मौत अचानक होती है, और खुददारी का ऐसा रोग लगा है मुझको, खुददारी का ऐसा रोग लगा है मुझको, अपने घर जाऊं तो हत्तक होती है।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।
2: अपने घर जाऊं तो हद तक होती है, और धोखा नफरत कीना बोझ अदावत झूठ। धोखा नफरत कीना बोझ अदावत झूठ, हर चेहरे की अपनी कालक होती
1: है। हर चेहरे की अपनी कालक होती है। वाह वाह वाह।
2: हर चेहरे की अपनी कालक होती है, और सारा दिन कुछ सपने शोर मचाते हैं, सारा दिन कुछ सपने शोर मचाते हैं, रात को नींद में भी, रात को नींद में भी ये बकबक होती है।
1: ओहो।
2: बड़ा गहरा शेर है।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
2: सारा दिन कुछ सपने शोर मचाते हैं, रात को नींद में भी ये बकबक होती है, और जिसने आना होता है वो आता है। शायद मैं आपको माजी की तरफ ले जाऊं, कि जिसने आना होता है वो आता है, डरना हो तो दीवार पे दस्तक होती
1: है। डरना हो तो दीवार पे दस्तक होती है। वाह जी वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: हाँ, बड़ी मेहरबानी। डरना हो तो दीवार पे दस्तक होती है, और तूने आकर ऐन से इश्क सिखाया है। क्या अजीब अलमिया है। तूने आकर ऐन से इश्क सिखाया है, हमने पढ़ा था ऐन से ऐनक होती है।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
2: हमने पढ़ा था
1: ऐन से ऐनक होती है,
2: और बूढ़ा बाप भी घर में रह सकता है अब। क्या अलमिया जी, कि बूढ़ा बाप भी घर में रह सकता है अब, हर घर में छोटी सी बैठक होती है।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है।
2: हर घर में छोटी सी बैठक होती है और लोगों को ये बात जरा समझाओ शकील, लोगों को मकता है कि लोगों को ये बात जरा समझाओ शकील, बेटी भी आंखों की ठंडक हो।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत बढ़िया।
2: मैं आपको एक नज़्म सुनाता हूँ अपनी, उसका उन्वान है पुरानी यादें।
1: जी,
2: उससे पहले दो शेर भी आपको सुनाता हूँ कि मेरे अपने कथा है कि तू जिसे प्यार समझ बैठा है, आज का लम्हे कि तू जिसे प्यार समझ बैठा है वो कोई खेल भी हो सकता है।
1: वाह,
2: तू जिसे प्यार समझ बैठा है वो कोई खेल भी हो सकता है, इश्क के इम्तिहान में मेरी जान, इश्क के इम्तिहान में मेरी जान, कोई इश्क के इम्तिहान में मेरी जान, आदमी फेल भी
1: हो सकता है। बहुत
2: आजकल के तो फेल ही हो, नज़्म को अनुमान है पुरानी यादें।
1: जी,
2: नज़्म कुछ यूँ है कि चलो चल कर, शायद आपको यादें भी ताज़ा हो जाएं, कि चलो चल कर पुरानी यादें ताज़ा करते हैं।
1: सही,
2: चलो चल कर पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, फिर से एक दूजे पे मरते हैं। माजी के उन अधूरे खानों में मोहब्बतों के वही रंग भरते हैं जो हम उजलत में शायद कहीं छोड़ आए थे, करके वादे सभी तोड़ आए थे। करके वादे सभी तोड़ आए थे, चलो चल कर वहीं बैठते हैं। वसीम भाई, चलो चल कर वहीं बैठते हैं जहां हम बैठा करते थे, चाय पिया करते थे। चलो चल कर वहीं बैठते हैं जहां हम बैठा करते थे, चाय पिया करते थे, हाय कभी हम भी जिया करते थे।
1: बहुत अच्छे।
2: हाय कभी हम भी जिया करते थे, वहां आरामो सुकून से वो सारी बातें वो सारे गिले शिकवे करेंगे। जो हुए हैं चालान मोहब्बतों में उन सब के जुर्माने भरेंगे। जो हुए हैं चालान मोहब्बतों में उन सब के जुर्माने भरेंगे, वो सारे अनसिले जख्म रफू करेंगे, इत्मीनान से गुफ्तगू करेंगे।
1: वाह वाह वाह,
2: इत्मीनान से गुफ्तगू करेंगे, कुछ तुम कहना कुछ मैं कहूँगा, शायद ये मौका फिर कभी हाथ ना आए, शायद ये मौका फिर कभी हाथ ना आए, चलो चल कर पुरानी यादें ताज़ा करते हैं।
1: बहुत बढ़िया,
2: देते मरते हैं।
1: बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया हमीद गुल साहब, थैंक यू वेरी मच।
2: थैंक यू सर,
1: बहुत अच्छे शायरी से आपने हमें नवाजा, जीते रहिए। थैंक यू वेरी
2: मच,
1: थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, हमीद गुल साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। जिस तरफ बज़्म में वो आँख उठा देते हैं, दिले उशाक में हलचल सी मचा देते हैं, जामो मीना ही पे मौकूफ नहीं उनका करम, जामो मीना ही पे मौकूफ नहीं उनका करम, मौज में आए तो आँखों से पिला देते हैं। यही बात जो है ना वो हमीद गुल साहब के लिए ही है, मौज में आए तो खूबसूरत अशआर सुना देते हैं। 04-2111-0101 हमारा टेलीफोन नंबर है। अभी हमने बात की थी कि सब्र जिंदगी की खूबसूरत डोर है, जिसने संभाल ली तो उसको सब मिल गया, और जिसने छोड़ दी तो सब कुछ हाथ से निकल गया। अगर हम सब्र से काम लें, अगर हम हौसले से काम लें, तो ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं और सुकून कर सकते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो हमें सब्र का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। कभी ये दावा कि वो मेरा है फकत मेरा, कभी ये डर कि वो मुझसे जुदा तो नहीं। देखिए, ये मुस्लिम किस्म के जो वहम होते हैं वो पढ़ते रहते हैं, वहां में ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया। खास तौर पे जिससे मोहब्बत करते हैं उसके बारे में बहुत सारे ख्यालात आते हैं। कभी ये दावा कि वो मेरा है फकत मेरा, परवीन शाकिर का कलाम सुना रहा हूँ आपको। कभी ये दावा कि वो मेरा है फकत मेरा, कभी ये डर के वो मुझसे जुदा तो नहीं, कभी ये दुआ के उसे मिल जाए सारे जहां की खुशियां, कभी ये खौफ कि खुश वो मेरे बिना तो नहीं। कभी ये तमन्ना कि बस जाऊं उसकी निगाहों में, कभी ये डर कि उसकी आंखों को किसी ने देखा तो नहीं। कभी ये ख्वाहिश के जमाना हो मुंतजर उसका, कभी ये वहम कि वो किसी से मिला तो नहीं। कभी ये आरजू कि वो जो मांगे मिल जाए उसे, कभी ये वसवसे कि उसने मेरे सिवा कुछ मांगा तो नहीं। कभी ये तमन्ना के बस जाऊं उसकी आंखों में, कभी ये डर के उसकी आंखों को किसी ने देखा तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज कम आ रही है बहुत।
3: अस्सलाम वालेकुम
1: जी, कौन बोल रही है?
3: ये लाहौर से इरम बात कर रही
1: हूं। इरम थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी आप?
3: इरम लाहौर से। भाई क्या हाल है आपका?
1: जी शुक्र अल्लाह का। कैसी इरम आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं?
3: अल्लाह का करम, दुआएं आपकी और माशाल्लाह आला प्रोग्राम और सब सुनने वालों को भी। अस्सलाम वालेकुम।
1: बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी, कुछ सुनाएंगी?
3: जी जी, दो तीन शेर है
1: जी।
3: सबसे पहले जो दिन का है कि वो कहता है कि मैं बुरा नहीं हूँ, मेरी भी कुछ कहानी है।
1: वाह।
3: ये जो बदला बदला का लगता हूँ, सब अपने की मेहरबानी है। मैं बुरा नहीं हूँ, मेरी भी कुछ कहानी है। ये जो बदला बदला सा लगता हूँ, सब अपनों की मेहरबानी है। गैर तो गैर है, गैरों से गिला भी क्या। गैर तो गैर है, गैरों से गिला भी क्या। अपने तो अपने हैं, अपनों से मिला भी क्या।
1: वाह।
3: और एक फराज अहमद क्या वो कहता है कि ये भी क्या कम है कि दोनों का भरम कायम है। ये भी क्या कम है कि दोनों का भरम कायम है। उसने बख्शिश की और हमने गुजारिश की।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया
3: जी। एक आखिरी शेर सर लाओ।
1: जी जी बोलिए।
3: आखिरी शेर है कि बड़ा इश्क इश्क तू करदा है, कदे इश्क दा गुंजल खोल दे सही, तेनु मिट्टी दे विच रोल देवे, दो प्यार दे बोल बोल दे सही।
1: बहुत अच्छी।
3: रुख कट के दर्द हजार मिले, कदे इश्क नु थकड़ी तोल दे सही, तेरी हस दी अख वी भिज जावे, कदी सानू अंदरों खोल दे
1: सही, कदी सानू अंदरों खोल दे सही। बहुत शुक्रिया इरम, बहुत बढ़िया।
3: सलामत रहे, खुश रहे और अनिला पी को सलाम।
1: बहुत शुक्रिया इरम, बहुत बढ़िया आपने सुनाया, बहुत शुक्रिया, जीती रहिए, अल्लाह हाफिज़। ओके जी। मनोन एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैम स्टेशन। आज की शब तो किसी तौर गुजर जाएगी, आज की शब तो किसी तौर गुजर जाएगी, रात गहरी है मगर चांद चमकता है अभी, मेरे माथे पे तेरा प्यार धमकता है अभी, मेरी सांसों में तेरा लम्स महकता है अभी, मेरे सीने में तेरा नाम धड़कता है अभी, जीस्त करने को मेरे पास बहुत कुछ है अभी, तेरी आवाज का जादू है अभी मेरे लिए, तेरे मलबूस की खुशबू है अभी मेरे लिए, तेरी बाहें तेरा पहलू है अभी मेरे लिए, सबसे बढ़कर मेरी जान तू है अभी मेरे लिए, जीस्त करने को मेरे पास बहुत कुछ है अभी, आज की शब तो किसी तौर गुजर जाएगी, आज के बाद मगर रंगे वफा क्या होगा, इश्क हैरान है सरे शहर सबा क्या होगा, मेरे कातिल तेरा अंदाजे जफा क्या होगा, आज की शब तो बहुत कुछ है मगर कल के लिए, आज की शब तो बहुत कुछ है मगर कल के लिए, एक अंदेशा है बेनाम है और कुछ भी नहीं, देखना ये है कि कल तुझसे मुलाकात के बाद रंगे उम्मीद खिलेगा कि बिखर जाएगा, वक्त परवाज करेगा कि ठहर जाएगा, जीत हो जाएगी या खेल बिगड़ जाएगा, ख्वाब का शहर रहेगा कि उजड़ जाएगा, आज की शब तो किसी तौर गुजर जाएगी, रात गहरी है मगर चांद चमकता है अभी। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात।
1: जी कौन हमारे साथ?
4: असद अली लाहौर से मुखातिब।
1: जी असद अली कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं
4: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। सर आपकी दुआएं, आप सुनाइए।
1: जी शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। क्या सुनाएंगे असद अली आज हमें?
4: आपको एक दो शायर सुनाऊंगा।
1: जी
4: एक एक पंजाबी का शेर है और एक उर्दू का।
1: जी सुनाइए सुनाइए।
4: फुल्लां दा तू अत्र बना, फुल्लां दा तू अत्र बना, अत्रां दा फिर कट दरिया, दरिया विच फिर तू रज गए ना, मछलियां वांग तारी ला, फिर भी तेरी बू नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका।
1: बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
4: चलते चलते दिल ने पूछा, जख्मी पाँव के छालों से, वसीम भाई कितनी दूर बसाली बस्ती आप लोगों ने दिल में रहने वालों ने।
1: जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
4: एक शेर आपकी नजर हो रहा है कि ये मत सोचना वसीम भाई हम भूल गए हैं आपको, ये पिछले शो में मैंने आपको सुनाया था, ये मत सोचना कि वसीम भाई हम भूल गए हैं आपको, सुबह की पहली और रात की आखिरी सोच हो तुम।
1: बड़ी बात है यार, बहुत शुक्रिया असद भाई, बहुत
4: अहमद फराज का कलाम मुझे सुना दीजिए और मेरा प्यारा सा भाई बोधी जाट, मेरी प्यारी सी बहन लीना आपकी को अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम उनकी तरफ,
4: तमाम सुनने वालों का अस्सलाम वालेकुम।
1: बहुत शुक्रिया असद भाई, थैंक यू थैंक यू, अल्लाह
4: हाफिज़।
1: ओके जी, मरून एफ एम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन। और जनाब हमारे प्रोग्राम में कुछ और पैगाम पहुँचे, उन्हें प्रोग्राम में हम शामिल कर लें। आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला भी जारी है, आपकी तरफ से खूबसूरत पोइट्री की मुझे उम्मीद होती है, जो बहुत खूबसूरत होती है। और ताहिरा मसूद कहते हैं कि दर्द को हद से ज़्यादा कभी बढ़ने ना दिया, गुले उम्मीद कभी हमने बिखरने ना दिया, गैर तो आए थे हर बार तसल्ली देने, अपने प्यारों ने कभी ज़ख्म को भरने ना दिया। ये मैंने थोड़ी देर पहले, मेरा ख्याल है कि आपका ये मैंने पढ़ दिया है। और मरीना हमारे ज़माने हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। ज़माना कब समझता था शबे, अच्छा ये भी इनका शेर मैं पढ़ चुका हूँ पहले। मलक वसीम अवान हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, हमीद गुल साहब, ताहिरा मसूद, रियाज भट्टी, और रियाज भट्टी ने कहा नाइस, और ताहिरा मसूद ने कहा कि अच्छा हुआ मैं दश्ते गुमा से निकल गया, थी कह देता हयात जहाँ से निकल गया, भाया ना फिर किसी को मेरा बोलना, वहाँ दिल में दबाया सच जो जुबान से निकल गया, दिल को करेगा चार यकीनी ये बात है, ये तीर बेरुखी का कमां से निकल गया, मत सोग मनाओ के बहुत खुश हूँ मैं यहाँ, जब से मैं ज़िंदगी के फगान से निकल गया, वाह चलता रहेगा कारे जहाँ, जानता हूँ मैं क्या फ़र्क मैं जो तेरे मकान से निकल गया, पूरा था एतबार बहारों पे इसलिए यादों को तेरी लेके खिजां से निकल गया। ये बात कब थी दोस्तों, एक मौजदे से कम मैं इश्क में किसी भी जयां से निकल गया, छोड़ा था जानबूझ के पालेगा वो सुराग, रख कर सुहेल पाँव निशां से गुजर गया। बहुत शुक्रिया। और मुंडा सियालकोटी वसीम मलक अवान हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को जो हमारे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं वो लोग, उनमें आतिफ अली हैं, मलक वसीम अवान हैं, मरीना बिलाल, ताहिरा मसूद, रियाज भट्टी और हमीद गुल साहब। आपके पैगाम का मुझे शिद्दत से इंतज़ार, और आपके SMS का भी मुझे शिद्दत से इंतज़ार। अब्दुलनूर हाशमी ने हमें SMS किया रिवाज गार्डन लाहौर से, कहते हैं कि डियर वसीम जी आदाब जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुलनूर हाशमी, आप हमारे प्रोग्राम में हमेशा शामिल होते हैं, जब 10 बजे मैं करता था तब भी, और अब भी रात के 2 बजे 3 बजे भी आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है आपका आना। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम वसीम भाई, कैसे हैं आप?
1: जी शुक्रिया अल्लाह का बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हैं तारिक भाई?
5: जी अल्हम्दुलिल्लाह वसीम भाई। आप सुबह 6 बजे भी आएंगे ना, फिर भी आएंगे
1: सुबह 6 बजे? बिल्कुल ठीक है, सुबह सुबह दे 6 बजे, शाम दे 6 बजे, दोपहर दे 3 बजे, सुबह दोपहर दे 1 बजे।
5: आपसे मोहब्बत हो गई है।
1: सही बात
5: है, आपने फिर हमें आशिक बना दिए।
1: कौन से वाले आशिक?
5: पुराने
1: पाकिस्तान की पुरानी फिल्मों वाले आशिक जो होते हीरो?
5: नहीं, 10-12 साल पहले भूल गए थे हम, फिर जागना शुरू कर दिए।
1: अच्छा, ओए होए होए होए होए, सही हो गया सही हो गया।
5: सही सही रात जागना। और वसीम भाई सबको सलाम, जितने भी हमारे कॉलर आते हैं, महबूब साहब, रीला आपकी, साहिदा, राशिदा, जो भी हैं,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
5: शेर सुना आपको?
1: जरूर सुनाइए।
5: भूल सकते हो भूल जाओ, इजाजत है तुम्हें, ना भूल पाओ तो लौट आना, एक और इजाजत है तुम्हें।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात। भड़काए मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, भड़काए मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, सहरा मेरा चेहरा है समंदर तेरी आंखें, फिर कौन भला दादे तबस्सुम इन्हें देगा, रोएंगी बहुत मुझसे बिछड़ कर तेरी आंखें। काली जो हुई शामे गरीबा की हथेली, क्या क्या ना लुटाती रही गौहर तेरी आंखें, भोजन नजर आती हैं बजाहर मुझे, लेकिन खुलती हैं बहुत दिल में उतर कर तेरी आंखें। अब तक मेरी यादों से मिटाए नहीं मिटता, भीगी हुई एक शाम का मंजर तेरी आंखें। मुमकिन होते कि ताज़ा गज़ल और भी कह लूँ, फिर ओढ़ न ले ख्वाब की चादर तेरी आंखें। यूँ देखते रहना उसे अच्छा नहीं मोहसिन, वो कांच का पैकर है तो पत्थर तेरी आंखें। पाकिस्तान आपके साथ साथ, आवाज़ आप तक पहुँच रही है आपके अपने आरजे, आपके अपने मेज़बान आरजे वसीम अहमद की। ओके जी, आरजे वसीम अहमद की आवाज़ रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियोज से आप हमारे प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं। हेलो
6: हेलो, अस्सलाम
1: वालेकुम
6: साहब,
1: अब्दुल हमीद
6: का
1: बात है। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल हमीद, क्या
6: हाल चाल भाई? ने क्या पा रहे सुबह 6 बजे ब्याह ते असि इंशाल्लाह जिन्होंने जागना उन्होंने जागना ही, उन्होंने सुनना ही सुनना है।
1: आपकी
6: मोहब्बत है, साढ़े 3 बजे
1: है, तुम्हारी मोहब्बत है, तुम्हारा प्यार है, बहुत शुक्रिया
6: वसीम साहब, तुम्हारी मोहब्बत है, यकीन कर तुम प्यार कर देंगे सानू आंदा जाना ते कोई नहीं गुनाहगार जे है पिछले प्रोग्राम एक माई का किरदार किया, मैं ना क्या बात है, जिवें 120 साल की माई ना, माशाल्लाह बोलिया, एक मैं बोलूंगा जले ना छे तोड़ मरोड़ के ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਲਾ ਫੇਰ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
1: ਫਰਾਕ ਸੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਉਸੇ ਵੀ ਥੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੀ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸੇ ਵੀ ਥੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੀ ਪੋਇਟਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾ ਸਕੂੰ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਸਕੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁੰਜਾ ਸ਼ੌਕ, ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਗੁੰਜਾ ਸ਼ੌਕ ਮੇਂ ਜੋ ਸਭਸੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੋ ਪੋਇਟਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਬੇ ਫਰਾਕ ਸੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਉਸੇ ਵੀ ਥੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੀ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸੇ ਵੀ ਥੀ, ਮੁਝਕੋ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਥਾ ਨਏ ਚਿਹਰੋਂ ਕੀ ਦੀਦ ਕਾ, रास्ता बदल के चलने की आदत उसे भी थी, उस रात देर तक वो रहा महवे गुफ्तगू, मसरूफ मैं भी कम था फरागत उसे भी थी, मुझसे बिछड़ के शहर में घुल मिल गया वो शख्स, हालांकि शहर भर से अदावत उसे भी थी, वो मुझसे बढ़ के जब्त का आदि था जी गया, वो मुझसे बढ़ के जब्त का आदि था जी गया, वरना हर एक सांस क्यामत उसे भी थी, सुनता था वो भी सबसे पुरानी कहानियां, सुनता था वो भी सबसे पुरानी कहानियां, शायद रफाकतों की जरूरत उसे भी थी, تنہا ہوا سفر میں تو مجھ پہ کھلا یہ بھید، تنہا ہوا سفر میں تو مجھ پہ کھلا یہ بید، سائے سے پیار دھوپ سے نفرت اس سے بھی تھی، محسن میں اس سے کہہ نہ سکا یوں بھی حال دل، درپیش ایک تازہ مصیبت اسے بھی تھی، اس رات دیر تک وہ رہا محو گفتگو، مصروف میں بھی کم تھا فراغت اسے بھی تھی۔ 04-2111-0101 ہمارا ڈائل فون نمبر۔ ہلو،
7: حسن والوں کی اداؤں پہلا مرنا یارو، عشق دھوکھا ہے کبھی عشق نہ کرنا یارو۔ سر جی السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام، کون
7: سر؟ بودھی جٹ سر۔
1: بودھی جٹ، کیا بات ہے بودھی جٹ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، بڑا پیارا شعر سنایا آپ نے
7: سر۔ بس اسی کی شعر سر سنانا، اسی تے ان پڑھ دے بندے ہیں سر، تے تہاڈے نال محبت ہے سر۔ اے ویکھو نا، اسی چھت تے بیٹھ کے تہاڈا پروگرام سن رہے ہیں سر، تے کیا بات ہے،
1: اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لے رہے ہیں۔
7: ہاں جی سر، بہت پیاری ہوا چل رہی ہے سر تہاڈی طرح۔ ہاں سر، اے ساڈے اسد بھائی ہے، ساڈا امیر بھائی نے مینوں فون کیتا سر، میں کہا سر اسی جاگ رہے ہیں۔
1: اچھا، واہ واہ واہ، کیا بات۔
7: تمام سننا سر، سڈا خصوصی السلام علیکم سر۔ سر تہاڈی نظر ایک چھوٹا یا کلام ہے سر، وہ اسی بیان کراں گے سر۔
1: جی جی، بولو بولو، سناؤ۔
7: سر کہنے لے کہ گھر سے نکلا تھا بازار سے وفا لے لے، وفا تو بازار سے نہ ملی، بازار سے کتا خرید لائے۔ سر سلامت رہو،
1: بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت
7: پاک تو تندرستی سے داری لمبی زندگی عطا کرے سر۔ ساڈے ضیاء انجم واسطے بہت دعاواں، اللہ پاک انہاں نوں تندرستی سے یافتہ کرے، تے انہاں دی آواز سنن نوں بہت بے چین ہے سر۔
1: بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
7: پاکستان زندہ
1: باد، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ اوکے جی، بودھی جٹ بہت شکریہ، اتنی مدت بعد ملے ہو، کن سوچوں میں گم پھرتے ہو، اتنے خائف کیوں رہتے ہو، ہر آہٹ سے ڈر جاتے ہو، تیز ہوا نے مجھ سے پوچھا ریت پہ کیا لکھتے رہتے ہو، کاش کوئی ہم سے بھی پوچھے رات گئے تک کیوں جاگے ہو، میں دریا سے بھی ڈرتا ہوں تم دریا سے بھی گہرے ہو، میں دریا سے بھی ڈرتا ہوں تم دریا سے بھی گہرے ہو، کون سی بات ہے تم میں ایسی، اتنے اچھے کیوں لگتے ہو، پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا، پتھر بن کر کیا تکتے ہو، پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا، پتھر بن کر کیا تکتے ہو، جاؤ جیت کا جشن مناؤ، میں جھوٹا ہوں تم سچے ہو، اپنے شہر کی سب لوگوں سے میری خاطر کیوں الجھے ہو، کہنے کو رہتے ہو دل میں پھر بھی کتنے دور کھڑے ہو، رات ہمیں کچھ یاد نہیں تھا، رات ہمیں کچھ یاد نہیں تھا، رات بہت ہی یاد آئے ہو، رات ہمیں کچھ یاد نہیں تھا، رات بہت ہی یاد آئے ہو، ہم سے نہ پوچھو ہجر کے قصے، اپنے کو ہو اب تم کیسے ہو، موسم تم بدنام بہت ہو، جیسے ہو پھر بھی اچھے ہو، جیسے ہو پھر بھی اچھے ہو۔ السلام علیکم
8: جی، بسم اللہ کران، وعلیکم السلام جی، کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک
1: جی، محمد شہزاد کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا ٹھیک ہیں، آپ سنائیں، ٹھیک ہیں؟
8: آپ کی دعائیں، ماشاء اللہ نیند نہیں آتی ہمیں۔
1: اچھا،
8: جب ناک لگتی ہے تو وسیم صاحب کا خیال آتا ہے، پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔
1: صحیح بات ہے، صحیح بات ہے،
8: اللہ بہت اچھا آپ کا موضوع، بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے، یقین مانے تو اتنی چاہت، اتنی محبت کے بعد کچھ نہ پوچھے، تو ایک شعر میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے، ہمیں شاعری نہیں آتی، हमें शायरी नहीं आती, हमें शायरी आती होती तो आप फूल मांगते हो, हम गुलदस्ता ही ले आते आपसे।
1: बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
8: अल्लाह ताला सबको जिंदगी तंदुरुस्ती रखे, सबको मेरा सलाम। नीला भी आ जाए, आज तो बहुत लेट हो गई, चलो बहुत रौनक है, हमारी जान है प्रोग्राम की जी। तो उनको बहुत बहुत सलाम, अब्दुल मीर बर्फी लाया उनको भी सलाम, आपको भी दिल से सलाम सलूट पेश करता हूँ जनाब।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह। ओके जी, मोहम्मद शहजाद हमारे प्रोग्राम में शादबाग से शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब आपके लिए हमारे पास बहुत खूबसूरत पोइट्री मौजूद है, उसे भी हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। और आपकी जो खूबसूरत कॉल्स आ रही हैं वो भी बहुत बढ़िया आप बातें हमारे साथ कर रहे हैं। कुछ हम बात की है कि कोई ऐसा लम्हा जिसे आप फिर से जीना चाहते हों, उसके बारे में भी बात हो रही है, सब्र के बारे में बात हो रही है, मोहब्बत के बारे में बात हो रही है, कुछ कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो कि कही नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। जैसे कि हम मोहब्बत को महसूस कर सकते हैं, हम उसको मापने तोलने के लिए बैठ जाएँ तो उसको नहीं हम किसी भी तरह से मैयर कर सकते, किसी भी तरह से तोल नहीं सकते, उसका वज़न नहीं कर सकते, उसको माप नहीं सकते, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। महसूसात के आले जो होते हैं वो किसी इजहार के मोहताज नहीं होते हैं। मोहब्बतों में कुछ ऐसे भी हाल होते हैं, खफा हो जिनसे उन्हीं के ख्याल होते हैं, बचलते रहते हैं जहनों में वसवसों की तरह, हसीन लोग भी जांका वबाल होते हैं। तेरी तरह मैं दिल के जख्म छुपाऊं कैसे, कि तेरे पास तो लफ्ज़ों के जाल होते हैं, बस एक तू ही सबब तो नहीं उदासी का, तरह तरह के दिलों को मलाल होते हैं। सियाह रात में जलते हैं जुगनुओं की तरह, सियाह रात में जलते हैं जुगनुओं की तरह, दिलों के जख्म भी मोहसिन, सबब तो नहीं उदासी का, तरह तरह के दिलों को मलाल होते हैं। सियाह रात में जलते हैं जुगनुओं की तरह,

0: अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन?
1: जी शफीक बोल रहा हूँ, रावलपिंडी से।
0: जी शफीक साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अरसे से ये ख्वाहिश थी कि कहीं आपसे बात हो जाए।
0: बहुत शुक्रिया,
1: तो आज अल्लाह ताला ने ये मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया।
0: चलिए, शुक्र है अल्लाह का। मेरे मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपकी कॉल आई। पहली दफा आपकी कॉल आई है ऐसे ही ना जी? आज मतलब पहले अवैस भाई थे आपसे, पहले वो भी रावलपिंडी से थे। पहली दफा आपने भी पहली दफा कॉल की है। वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया।
1: तो इस वक्त थोड़ा सा रश कम होता है, तो मेरे ख्याल में कॉल लगी है। तो बहुत दफा जो थोड़ा पहला टाइम होता है ना आपका,
0: जी जी,
1: उसमें कॉल मिलाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है।
0: हाँ ये भी है, मगर ये कि वो बारह लग जाती है कॉल, कई दफा नहीं भी लगती क्योंकि कॉल तो माशाल्लाह से कंटिन्यूअसली आप लोगों की आती रहती है ना, तो उसमें वक्फा नहीं आता बिल्कुल भी।
1: जी जी, तो सबसे पहले तो दुआ गो हैं अपने जिया भाई के लिए, अल्लाह ताला उन्हें बहुत जल्द से तैयार करे।
0: जी जी जी,
1: तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे, तो बहुत जल्द हमारे दरमियान में इसी तरह जब आप कम्बाइन शो करते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, तो यकीन करें बड़ी खुशी होती है।
0: बहुत बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही कहा।
1: तो यादू के वाले से है कि मैं बचपन में जब अपने वाले साहब के साथ कहीं जाया करता था, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक जगह पे ये जो हमारा किरदाई अड्डा है जो
0: जी,
1: वो छोटी उम्र की बात है कि मैं यहाँ उनके साथ जब आया, तो अब उनको दुनिया से गए हुए काफ़ी अच्छा हो गया। तो एक दिन वैसे ही उधर जाना हुआ मेरा।
0: जी जी,
1: तो यकीन करें जब मैं उस जगह पे पहुँचा हूँ, तो ऐसे मेरा एक दफ़ा सर चकराया कि वो याद आई है मुझे। तो अचानक मुझे ऐसा,
0: कौन सी जगह थी? कौन सी जगह थी?
1: पिरदाई अड्डा जो है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: रावलपिंडी का।
0: जी जी जी जी जी जी जी।
1: तो यहाँ से वो किसी सिलसिले में आए थे, तो वापस हम घर जा रहे थे। तो वो जगह मुझे थोड़ी सी याद है कि मुझे उस वक्त मेरी तकरीबन 6 साल उम्र हुई होगी मेरी। तो लेकिन ध्यान में वो कुछ चीजें नक्श हो जाती हैं।
0: बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही है।
1: तो वहाँ मुझे उन्होंने कुछ चीजें लेके दी, कोई फ्रूट वगैरह लेके दिया, कहते हैं कि बेटा और जो कुछ चीज आपको चाहिए ठीक है, आप यहाँ से आप जो है ना वो जो लेना चाहते हैं वो ले लें।
0: सही,
1: तो उन्होंने जो कुछ लेके दिया, मैंने बोला मेरे लिए सब कुछ बहुत है, बस सही है। लेकिन उन्होंने बार बार वो इशरार कर रहे थे कि शायद घर जाए तो किसी चीज के अंदर इसकी ख्वाहिश न रह जाए कि मुझे ये चीज वाला साहब ने लेके नहीं दी, या मैं ले नहीं सका।
0: देखिए माँ बाप का प्यार कितना जबरदस्त होता है ना, आपको वो एक लम्हा, उन्होंने सारी जिंदगी आपसे प्यार किया होगा, सारी जिंदगी करेंगे, मगर वो जो एक लम्हा था वो एक आपके दिमाग के अंदर नक्श हो के रह गया है ना,
1: नक्श हो के रह गया।
0: चलिए बहुत शुक्रिया जनाब, यादें जो जिंदगी का सरमाया होती है, मगर हमें यादों का होके नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना?
1: आप ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये भी एक याद है, ये भी एक कल के लिए बहुत बड़ी याद बन जाएगी। और यकीन करें कि हम आने वाले जो बच्चे ना आप सुन रहे हैं ना, वो याद किया करेंगे कि यहाँ ये प्रोग्राम होता था, ये बंदा आया करता था, ये प्रोग्राम
0: ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही।
1: तो आगो हूँ आप सबके लिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको मान में रखे, और सेहत के साथ, दायमी सेहत के साथ जो है ना, जो उम्र है आपकी, अल्लाह ताला उसमें बहुत आसानी,
0: आपके लिए भी सेम जी, बिल्कुल यही दुआ है आपके लिए भी। बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया,
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जी, कदरा भी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार। अवैस भाई, आपके लिए, आपकी पसंद पे हमने ये गाना प्ले कर दिया। वैसे आमतौर पे हम फरमाइश काम ही प्ले करते हैं, मगर जब यादों की बात हो गई और उसके बाद लाहौर की बात हो गई और रावी की बात हो गई। अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम सलाम वसीम भाई, मैं महबूब अली बोल रहा हूँ।
0: महबूब भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं।
2: मैं ऑफर बोल रहा हूँ।
0: नहीं नहीं, आप ऑन एयर हैं, ऑन एयर हैं, आप ऑन एयर हैं,
2: ऑन एयर हैं, वेरी गुड भाई। वो ऐसा है कि आज लाइट गई थी 11 बजे की और बड़ी दुश्वारी हो रही है और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। तारक साहब आए थे, हमीद गुल साहब आए थे, तो अच्छा लगा। आपका जो प्रोग्राम है ना यादों के
3: यादों का एक सिलसिला चल पड़ा है, अदरवाइज प्रोग्राम यादों के ऊपर नहीं है, वो हम मोहब्बत पे बात कर रहे थे, कुछ उस लम्हे की बात कर रहे थे कि जो हम दोबारा से जिसमें जाना चाहते हैं उसके ऊपर भी बात कर रहे थे, कुछ हम सबर पे बात कर रहे थे, तो मतलब मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक साथ साथ चल रहे हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उस पर बात कर सकते हैं।
2: सबर सबर भी मैं करता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने आपको दे दिया है आप उसके ऊपर सबर करें, पर
3: सही बात है, सही बात है,
2: क्योंकि वो साबरीन है, सबर देने वाला है, और इसके अलावा जो हम
3: और सबर का फल बहुत मीठा होता है, सबर का फल जरूर मिलता है, और जब बंदा सबर कर लेता है तो उसको सुकून में असर आ जाता है अल्लाह की तरफ से। बहुत शुक्रिया महबूब भाई, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए
2: भाई, अनिला बहन जी सब आएंगे ना,
3: जी जी,
2: तो मेरी तरफ से आप उन्हें सलाम कहिएगा,
3: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, रात के इस पहर में भी आप इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तरस रहा हूँ मगर तू नजर नहीं आता, कुछ लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो नजर नहीं आते, पता नहीं क्यों। एक दफा जो बिछड़ गया सो बिछड़ गया, लाख कोशिश करो, लाख पीछा करो, लाख ढूंढो, दोबारा नजर ही नहीं आता। तरस रहा हूं मगर तू नजर नहीं आता, अहमद फराज का कलाम है। तरस रहा हूं मगर तू नजर ना आ मुझको, तरस रहा हूं मगर तू नजर ना आ मुझको, कि खुद जुदा है तू मुझसे न कर जुदा मुझको। वो कप कपाते हुए होंठ मेरे शाने पर, वो खाब सांप की मानिंद डस गया मुझको। चटक उठा हूं सुलगती चटान की सूरत, पुकार अब तो मेरे देराशना मुझको। ये और बात कि अक्सर दमक उठा चेहरा, कभी कभी यही शोला बुझा गया मुझको। ये कुर्बतें ही तवज्जो, ये उर्बतें ही तो वजह फराक ठहरी हैं, बहुत अजीज हैं यारान बेवफा मुझको। सितम तो ये है कि जालिम सुखन शनास नहीं, सितम तो ये है कि जालिम सुखन शनास नहीं, वो एक शख्स के शायर बना गया मुझको। उसे फराज अगर दुख न था बिछड़ने का, उसे फराज अगर दुख न था बिछड़ने का, तो क्यों वो दूर तलक देखता रहा मुझको, तो क्यों वो दूर तलक देखता रहा मुझको।

मैंने तो जख्मों को अब शुमार किया, मैं ये समझता रहा उसने एक वार किया, फिर एतबार किया, फिर से एतबार किया, ये काम उसके लिए हमने बार बार किया। कसूर उसका नहीं है, कसूर मेरा है यार, मैंने उसे प्यार बेशुमार किया।

आंख ने रात जब एक चांद मुकम्मल देखा, फिर समंदर को भी होते हुए पागल देखा। रात फिर देर तलक की तेरी बातें खुद से, रात फिर सामने चेहरा तेरा पल पल देखा। आज यादों की गटार टूट के बरसी दिल पर, आज हमने भी बरसता हुआ बादल देखा।

0: चार घड़ी यादों का मेला फिर खामोशी, पहरों तन्हा बैठ के रोना फिर खामोशी। इससे तो हम सोए ही रहते, सुबह न होती, नींद उड़ाकर उड़ गई चिड़िया फिर खामोशी। कितने आम से हैं हम ना, कितने आम से हैं ना हम, देख तुझे याद भी नहीं आते, देख तुझे याद भी नहीं आते। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। यकीनन आज के प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा। आपकी कॉल्स का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। कुछ हमने यादों की बात की, कुछ हमने जज्बात की बात की, कुछ मोहब्बत की बात की, कुछ सब्र की बात की, कुछ महसूस करने की बात की, मोहब्बतों को महसूस करने की बात की, और कुछ आपकी खूबसूरत बातें हम तक पहुंची जो आपने शायरी की सूरत में भी की और वैसे भी की। आखिरी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी वसीम भाई, क्या हाल है?
0: जी शुक्र अल्लाह, ठीक है। कौन?
1: असद अली बात कर रहा हूँ। अच्छा वसीम भाई,
0: टाइम नहीं है, बस अपना नाम ही बताएं आप।
1: जी मेरा नाम असद अली, मैंने आपसे मुखातिब किया, असद अली नाम है
0: जी।
1: मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो आपके शो के खत्म होने के बाद कुरान मजीद की तिलावत लगती है, ये लाइव होती है?
0: ये इस्लामाबाद स्टूडियो से आपके लिए नशर की जाती है, उसके बारे में डिटेल्स मेरे पास नहीं है।
1: ठीक होगा, ठीक होगा। 5 मिनट से ना लाइन खाली पड़ी थी आपके, तो सोचे थे लेकिन मैं सवाल पूछ लूं वसीम भाई से।
0: चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जी, आबिद अली जापा कहते कि मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी जुबान मेरी, सो हकीकतन भी वही हुआ, मेरी बात बीच में रहेगी। वाह जी वाह, क्या बात है। महजबी, अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई, वालेकुम अस्सलाम। आबिद अली आपका बहुत शुक्रिया। ताहरा मसूद आपका बहुत शुक्रिया। हमीद गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया। मरीना बिलाल आपका बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से मुंडा सियालकोटी ताहिरा मसूद ने सलाम भेजा। हमीद गुल साहब कहते हैं कि उसको डर है, को ना जाऊं कहीं, मैं किसी और का हो ना जाऊं कहीं, मैं किसी और का हो ना जाऊं कहीं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। और जनाब उसके बाद महजूबी कहते हैं कि आपकी आंख से गहरा है मेरी रूह का जख्म, आप क्या सोच सकेंगे मेरी तन्हाई को। और जनाब मैं तो दम तोड़ रहा था मगर अफसरदा हयात खुद चली आई मेरी हौसला अफजाई को। वक्त ख़त्म हो रहा है, आपका बहुत शुक्रिया। ताहिरा मसूद महजूबी, करते नहीं है इश्क में महबूब से सवाल, जब कह दिया है झूम तो बस झूमते रहो, सीधा नहीं है रास्ता, दार भी हैं और ये तो मदार यार है, बस घूमते रहो। ओके जी, बहुत शुक्रिया। ताहिरा मसूद आपका बहुत शुक्रिया। सैम तबस्सुम आपका बहुत शुक्रिया। वसीम अहमद के नाम, रात की खामोशी में जब आपकी आवाज़ आती है दिल को जैसे दूर वतन की खुशबू आती है। पेरिस में बैठा हूँ, याद पाकिस्तान लिए आपकी महफिल में अपनों की सदा आती है। बहुत शुक्रिया, लफ्ज़ आपके दिल को छूकर सुकून देते हैं, आपकी बातों से मोहब्बत की अदा आती है। बहुत शुक्रिया वसीम अहमद साहब, आपको दिल दिल से सलामती और सलाम और ढेरों दुआएं और बहुत सी मोहब्बतें। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, इज्जत कामयाबी अता फरमाए। आपकी आवाज़ यूं ही दिलों को खुशियां देती रहे। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अली नवादश अली तबस्सम पेरिस फ्रांस से हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी दुआएं लेके शामिल हुए। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और यकीनन आप अपना भी बहुत सारा ख्याल रखेंगे और अपने दोस्तों का, घर वालों का भी बहुत सारा ख्याल रखेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बल्कि हमेशा अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।

आज आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101 सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

मूसा वहां से डरते डरते निकल खड़े हुए कि देखें क्या होता है, और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार मुझे जालिम लोगों से निजात दे।

उन्होंने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूं अपनी इन दो बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूं, इस अहद पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान है और मैं तुम पर तकलीफ डालनी नहीं चाहता, तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे।